0: मामलों में फास्ट ट्रैक अदालत बनाने और सख्त सजा के लिए एक मसौदा विधेयक को मंजूरी दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में संसद भवन परिसर में मंत्रिमंडल की बैठक में इस मसौदे को स्वीकृति दी गई। ये विधेयक अगले सप्ताह संसद में पेश किया जा सकता है। प्रधानमंत्री ने बृहस्पतिवार को एक वीडियो संदेश में पेपर लीक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के प्रावधानों वाला विधेयक संसद में पेश करने की घोषणा की थी। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि सरकार विद्यार्थियों के भविष्य के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठा रही है।
1: सोमवार को बिल तो हम लोग तो तैयारी कर रहे हैं। हम तो प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि छात्रों को लेकर के जो हम बिल ला रहे हैं तो उसमें कोई विलंब नहीं होना चाहिए, और जो प्रधानमंत्री जी ने कहा है इसमें कोई रुकावट पैदा करने के लिए कोई हठगंडे अपनाना ठीक नहीं होगा।
2: अब इसको राजनीतिकरण करके फायदा नहीं, हम लोगों को ठोस कदम कैसे उठाना चाहिए छात्रों का भविष्य के लिए, इस पे ध्यान देना चाहिए।
0: सरकार ने सख्त रुख अपनाते हुए राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए के 47 अधिकारियों को बर्खास्त कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक इनमें से कुछ अधिकारियों के खिलाफ कानूनी और आपराधिक कार्रवाई भी की जाएगी। एनटीए ने महाप्रबंधक स्तर पर वरिष्ठ पेशेवर पदों की नियुक्ति के लिए विज्ञापन जारी किए हैं। संघ लोक सेवा आयोग के प्रतिभा सेतु पोर्टल द्वारा 16 युवा पेशेवरों की भर्ती प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। एनटीए ने बताया कि ये उपाय एजेंसी के संस्थागत पुनर्निर्माण की दिशा में पहला ठोस कदम है, जिसे प्रोफेसर के राधाकृष्णन की अध्यक्षता वाली उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों के अनुरूप लागू किया जा रहा है। एनटीए ने संविदा आधार पर महाप्रबंधक के 4 पदों के लिए अधिसूचना जारी की है। इनमें से प्रत्येक की प्रारंभिक अवधि 3 वर्ष की होगी। केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा और जितेंद्र सिंह ने कल नई दिल्ली में कॉकरोच जनता पार्टी सीजेपी के प्रतिनिधिमंडल से वार्ता की। श्री नड्डा ने बताया कि बैठक में परीक्षा प्रणाली में सुधार संबंधी मांगों को ध्यानपूर्वक सुना गया। प्रतिनिधिमंडल में शामिल सीजेपी के प्रवक्ता आशुतोष राका ने दावा किया कि सरकार ने सैद्धांतिक रूप से उनकी 2 मांगों पर सहमति दे दी है। दिल्ली पुलिस ने परीक्षा संबंधी पेपर लीक और अन्य अपराधों की जांच के लिए एक विशेष कार्यबल एसटीएफ का गठन किया है। ये कार्यबल लोक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 2024 के अंतर्गत आता है। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही, नीट परीक्षा पेपर लीक और विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन पर लगातार हंगामे के कारण सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने वीडियो पर मिली प्रतिक्रिया और सुझावों के लिए युवाओं को धन्यवाद दिया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने युवाओं के अपार समर्थन के लिए उनका आभार व्यक्त किया है। वीडियो को अब तक 30 करोड़ 30 लाख से अधिक बार देखा जा चुका है। मंत्रिमंडल की आर्थिक मामले की समिति ने कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में बल्लारी गुंटक्कल खंड की तीसरी और चौथी रेल लाइन को 1,264 करोड़ रुपए की कुल लागत से मंजूरी दी है। इससे भारतीय रेलवे का मौजूदा नेटवर्क लगभग 46 किलोमीटर बढ़ जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को रोमानिया की बुखारेस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ इकोनॉमिक स्टडीज ने डॉक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित किया। ये सम्मान उन्हें विशिष्ट सार्वजनिक सेवा, शिक्षा और सामाजिक समावेश के प्रति प्रतिबद्धता और भारत रोमानिया संबंधों को मजबूत करने में उनके योगदान के लिए दिया गया। राष्ट्रपति ने सम्मान स्वीकार करते हुए इसे भारत की जनता को समर्पित किया। उन्होंने कहा कि ये सम्मान दोनों देशों के लोगों के बीच अटूट मित्रता को दर्शाता है। ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों में भारत ने अपना पहला पदक जीत लिया है। झंडू कुमार ने पैरा भारोत्तोलन की पुरुष हैवीवेट स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। उन्होंने 190 किलो भार उठाकर तीसरा स्थान हासिल किया। और भारत और जिम्बाब्वे के बीच दूसरा T20 मैच आज शाम 4:30 बजे से हरारे में खेला जाएगा। भारत 3 मैचों की श्रृंखला में 1-0 से आगे है। टीम ने पहले मैच में 7 विकेट से जीत दर्ज की थी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: भारत ने काला सागर में वाणिज्यिक जहाज एमवी ओमर्फी पर हुए हमले की कड़ी निंदा की। हमले में एक भारतीय नाविक की मौत। मौसम विभाग ने गुजरात, कोंकण, गोवा और उड़ीसा के कुछ हिस्सों में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया। और ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों में भारत को पहला पदक मिला। झंडू कुमार वेट पैरा भारोत्तोलन में कांस्य पदक जीता। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पेपर लीक और परीक्षा में गड़बड़ी के मामलों में फास्ट ट्रैक अदालतें बनाने और कड़ी सजा के लिए एक मसौदा विधेयक को मंजूरी दे दी है। संसद भवन परिसर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में इसे मंजूरी दी गई। इस विधेयक को अगले सप्ताह संसद में पेश किए जाने की संभावना है। श्री मोदी ने बृहस्पतिवार को एक वीडियो संदेश में पेपर लीक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के प्रावधानों वाला विधेयक संसद में पेश करने की घोषणा की थी। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि सरकार विद्यार्थियों के भविष्य के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठा रही है।
1: सोमवार को बिल तो हम लोग तो तैयारी कर रहे हैं। हम तो प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि छात्रों को लेकर के जो हम बिल ला रहे हैं तो उसमें कोई विलंब नहीं होना चाहिए, और जो प्रधानमंत्री जी ने कहा है इसमें कोई रुकावट पैदा करने के लिए कोई हठगंडे अपनाना ठीक नहीं होगा।
2: अब इसको राजनीतिकरण करके फायदा नहीं है। हम लोगों को ठोस कदम कैसे उठाना चाहिए छात्रों का भविष्य के लिए, इस पे ध्यान देना चाहिए।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने वीडियो पर मिली प्रतिक्रिया और सुझावों के लिए देश के युवाओं को धन्यवाद दिया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने युवाओं के जबरदस्त समर्थन के लिए आभार व्यक्त किया।
3: थैंक यू फ्रेंड्स, मेरे जो वीडियो पोस्ट किया था उसको जिस प्रकार से आपने रिस्पॉन्ड किया, सकारात्मक सुझाव दिए, थैंक्स टू एवरीबॉडी। ये आपका प्यार बना रहेगा, हमारा नाता और अधिक सक्रियता से जुड़ता रहेगा। थैंक यू।
0: वीडियो को अब तक 30 करोड़ 30 लाख से अधिक बार देखा जा चुका है। ये पहले 24 घंटों में सबसे अधिक देखा जाने वाला वीडियो है। सरकार परीक्षा प्रणाली में सुधार और पेपर लीक रोकने के उपायों से जुड़ी मांगों को लेकर कांग्रेस जनता पार्टी सीजेपी के प्रतिनिधिमंडल के साथ आज एक और दौर की बातचीत करेगी। इससे पहले कल भी नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और डॉ जितेंद्र सिंह ने सीजेपी प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठक की थी, जिसके बाद श्री नड्डा ने बताया कि बैठक में परीक्षा प्रणाली में सुधार को लेकर सीजेपी की मांगों को ध्यानपूर्वक सुना गया है। उन्होंने बताया कि सीजेपी ने 3 प्रमुख मांगे रखी हैं और पेपर लीक रोकने के लिए कुछ सुझाव भी दिए हैं।
4: बातें सौहार्दपूर्ण वातावरण में हुई और कई दृष्टि से उन सारी बातों पर हर तरीके से चर्चा। उनकी मुख्यतः 3 डिमांड थी और 5 सुझाव हुए।
0: दिल्ली पुलिस ने पेपर लीक और परीक्षा संबंधी अन्य अपराधों की जांच के लिए एक विशेष कार्यबल एसटीएफ का गठन किया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये कार्यबल लोक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 2024 के अंतर्गत आता है।
5: दिल्ली पुलिस ने कहा है कि अलग अलग प्राधिकारियों की ओर से आयोजित होने वाली पब्लिक परीक्षाओं से जुड़े अपराधों की जांच तेजी से और पेशेवर तरीके से विशेष कार्यबल द्वारा की जाएगी। इनमें संघ लोक सेवा आयोग, कर्मचारी चयन आयोग, रेलवे भर्ती बोर्ड, बैंकिंग कार्मिक चयन संस्थान, राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी के साथ साथ केंद्रीय सरकार के मंत्रालय या विभाग और स्टाफ के भर्ती के लिए उनसे जुड़े हुए और अधीनस्थ कार्यालय शामिल है। जांच के अलावा विशेष कार्यबल मुकदमा चलाने वाली एजेंसियों के साथ बेहतर तालमेल भी बनाए रखेगी, ताकि तेजी से मुकदमा चलाया जा सके और ये पक्का किया जा सके कि ऐसे मामलों में सुनवाई रोजाना हो। शिवा मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: सरकार ने सख्त रुख अपनाते हुए राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के 47 अधिकारियों को बर्खास्त कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक इनमें से कुछ अधिकारियों के खिलाफ कानूनी और आपराधिक कार्रवाई भी की जाएगी। एनटीए ने महाप्रबंधक स्तर के वरिष्ठ पेशेवर पदों पर नियुक्ति के लिए विज्ञापन प्रकाशित किए हैं। संघ लोक सेवा आयोग के प्रतिभा सेतु पोर्टल द्वारा 16 युवा पेशेवरों की भर्ती प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट परीक्षा पेपर लीक और विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन पर लगातार हंगामे के कारण सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने बताया है कि सुरक्षा कारणों से आज सुबह 7:30 बजे से अगले आदेश तक 18 स्टेशन बंद हैं। हालांकि राजीव चौक, मंडी हाउस और केंद्रीय सचिवालय में इंटरचेंज सुविधा उपलब्ध रहेगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल

0: मीडिया हैंडल @ihrnewshindi को फॉलो कर सकते हैं।
1: भारतीय वायु सेना में अग्निवीर वायु और एयरमैन मेडिकल असिस्टेंट बनने के लिए जल्दी रजिस्टर करें। रजिस्ट्रेशन 26 जुलाई 2026 को बंद हो जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए www.iefrecruitment.edcil.co.in पर जाएं।
2: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीब

0: भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। रोमानिया के बुखारेस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ इकोनॉमिक स्टडीज ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को उनकी विशिष्ट सार्वजनिक सेवा, शिक्षा और सामाजिक समावेश के प्रति प्रतिबद्धता तथा भारत रोमानिया संबंधों को मजबूत करने में उनके योगदान के लिए डॉक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित किया। राष्ट्रपति ने सम्मान स्वीकार करते हुए इसे भारत की जनता को समर्पित किया और कहा कि ये दोनों देशों के लोगों के बीच अटूट मित्रता को दर्शाता है। राष्ट्रपति ने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और तकनीकी परिवर्तन के इस युग में विश्वविद्यालयों की जिम्मेदारी है कि वे ये सुनिश्चित करें कि ज्ञान का मार्गदर्शन विवेक, नैतिकता और करुणा द्वारा किया जाए।
2: टुडे एज द वर्ल्ड इज बीइंग रिशेप्ड बाय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिजिटल टेक्नोलॉजीज एंड अदर रैपिड साइंटिफिक एडवांसेस, यूनिवर्सिटीज लाइक दिस हैज गिवन ग्रेटर रेस्पॉन्सिबिलिटी टू एंश्योर दैट नॉलेज इज गाइडेड बाय विजडम, ethics and compassion. India's national education policy reflects this vision by promoting innovation, research, creativity and international academic collaboration.
1: भारत सरकार ने कहा है कि सिंधु जल संधि तब तक स्थगित रहेगी जब तक पाकिस्तान सीमा पार आतंकवाद को समर्थन देना बंद नहीं करता। नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने पाकिस्तान के उन मीडिया दावों को खारिज किया जिनमें भारत पर जानबूझकर बाढ़ लाने का आरोप लगाया गया था।
3: The recent increase in flows,
4: चेनाब नदी में जल प्रवाह में हालिया वृद्धि, 20 से 23 जुलाई के दौरान जम्मू और आसपास के जलग्रहण क्षेत्रों में मूसलाधार बारिश का परिणाम है। नदी के जल प्रवाह में वृद्धि एक प्राकृतिक जल वैज्ञानिक प्रतिक्रिया है और ये भारत द्वारा जानबूझकर किए गए किसी भी प्रयास का परिणाम नहीं है।
1: भारत ने काला सागर में वाणिज्यिक पोत एमवी ओमोश्री पर हुए हमलों की कड़ी निंदा की है। हमले को अस्वीकार्य बताते हुए भारत ने सभी संबंधित पक्षों से समुद्री नौवहन और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की सुरक्षा सुनिश्चित करने का आह्वान किया। विदेश मंत्रालय ने बताया कि 18 जुलाई को काला सागर से गुजरते समय पोत पर हमला हुआ। हमले में एक भारतीय नाविक की मृत्यु हो गई। पोत पर 3 भारतीय नागरिकों सहित चालक दल के 10 सदस्य सवार थे, अन्य 2 भारतीय नागरिक सुरक्षित हैं। तेहरान स्थित भारतीय दूतावास ने आज पुष्टि की कि मोजाम्बिक ध्वज वाले एलपीजी टैंकर दिशा पर ईरानी जल क्षेत्र में हुए हमले के बाद जहाज पर सवार भारतीय चालक दल के सभी 28 सदस्य सुरक्षित हैं। दूतावास ने आधिकारिक बयान में एलपीजी टैंकर से जुड़ी घटना की पुष्टि की और कहा कि चालक दल की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए वो स्थानीय अधिकारियों के संपर्क में हैं। लद्दाख के द्रास में स्थित करगिल युद्ध स्मारक ऑपरेशन विजय में भारत की जीत की स्मृति में मनाए जाने वाले 27वें करगिल विजय दिवस के भव्य समारोहों की मेजबानी के लिए पूरी तरह से तैयार है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
5: द्रास का कारगिल वॉर मेमोरियल 27वें कारगिल विजय दिवस समारोह के लिए पूरी तरह से तैयार है। शहीदों की याद में बनाए गए इस स्मारक को विशेष रूप से सजाया गया है। 2 दिवसीय समारोह का आगाज आज युद्ध संस्मरण, गौरव में संस्कृति और शौर्य संध्या जैसे कार्यक्रमों के साथ हो रहा है। कल 26 जुलाई को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मुख्य अतिथि के रूप में श्रद्धांजलि समारोह में शामिल होंगे। द्रास कारगिल से आकाशवाणी समाचार के लिए मैं इनायत अली।
1: मौसम विभाग ने गुजरात, कोंकण और गोवा, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा और राजस्थान के कुछ हिस्सों में आज बहुत तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। पूर्वोत्तर भारत, तटीय कर्नाटक, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, दक्षिण आंध्र कर्नाटक और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में भी आज मध्यम से तेज बारिश की संभावना है। असम में बाढ़ की स्थिति अब भी गंभीर बनी हुई है। राज्य में 1,15,000 से अधिक लोगों ने राहत शिविरों में शरण ली है। राज्य में बाढ़ से मरने वालों की कुल संख्या 61 हो गई है। ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों में भारत ने अपना पहला पदक जीत लिया है। जंडू कुमार ने पैरा भारोत्तोलन की पुरुष हैवीवेट स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। भारत और जिम्बाब्वे के बीच दूसरा T20 मैच आज शाम 4:30 बजे से हरारे में खेला जाएगा। भारत के स्क्वाश खिलाड़ी अनाहत सिंह ने कनाडा के ओंटारियो में विश्व जूनियर स्क्वाश चैंपियनशिप के महिला सिंगल्स फाइनल में पहुंचकर इतिहास रच दिया है। सेमीफाइनल में अनाहत ने मिस्र के बाब सामे को 3-1 से हराया। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ है मुकेश कुमार बल।
6: धन्यवाद कनक। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA के 47 अधिकारियों को बर्खास्त किए जाने की खबर आज के अखबारों की पहली सुर्खी है। हिंदुस्तान ने इसे नीट को लेकर सरकार की बड़ी कार्रवाई बताया है। अमर उजाला लिखता है आक्रोश का असर, NTA से 47 अफसर बर्खास्त। नवभारत टाइम्स की हेडलाइन है पेपर लीक पर होगा 10 करोड़ रूपए जुर्माना, 10 साल की सजा। संशोधन बिल को कैबिनेट की मंजूरी, कड़ी सजा का प्रस्ताव। दैनिक जागरण कहता है कानून बदला कार्रवाई हुई फिर भी CJP टस से मस नहीं। शिक्षा मंत्री के इस्तीफे पर अटकी बात, दैनिक भास्कर ने लिखा है कानून में संशोधन को केंद्रीय कैबिनेट से मंजूरी, NTA में बदलाव की तैयारी। राजस्थान पत्रिका ने इसे बवाल थामने का प्रयास बताया है। नवभारत टाइम्स ने NTA पेपर लीक बिल में संशोधन पर अपने संपादकीय में लिखा है सरकार तेजी से निर्णय लेकर छात्रों को यकीन दिलाने का प्रयास कर रही है कि उनकी आवाज अनसुनी नहीं रह गई है। पत्र लिखता है केंद्र द्वारा नीट में किए जा रहे सुधारों की सर्वोच्च न्यायालय लगातार निगरानी करेगा। छात्र अब मूलभूत बदलाव चाहते हैं और शीर्ष अदालत की निगरानी से इसमें मदद मिलेगी। सोशल मीडिया प्रसारण को लेकर सर्वोच्च न्यायालय का फैसला जनसत्ता में सबसे ऊपर है। अनुमति के बिना कार्यवाही को पोस्ट करने पर रोक, लोकसत्य लिखता है सोशल मीडिया पर नहीं डाल पाएंगे कोर्ट की वीडियो। कक्षा 6 से 8 में कौशल शिक्षा अनिवार्य करने के केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के निर्देश को भी पत्र ने स्थान दिया है। अमरीका द्वारा भारत से आयातित वस्तुओं पर 10% शुल्क लगाए जाने को राजस्थान पत्रिका ने ट्रंप का नया दांव बताया है।
1: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकार ने पेपर लीक रोकने और कड़ी सजा के प्रावधान वाले मसौदा विधेयक को मंजूरी दी। संसद में अगले सप्ताह विधेयक पेश किए जाने की संभावना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेपर लीक रोकने के लिए प्रस्तावित सुधारों पर अपने वीडियो पर युवाओं से मिले सुझावों के लिए उन्हें धन्यवाद दिया। सरकार और CJP के प्रतिनिधियों के बीच आज नई दिल्ली में तीसरे दौर की वार्ता होगी। और ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों में भारत को पहला पदक मिला। जंडू कुमार ने पुरुषों के हैवीवेट पैरा भारोत्तोलन में कांस्य पदक जीता। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
7: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I am Abhishek Mukhopadhyay. The headlines. Government approves NTA paper leaks draft bill for stricter punishment. Legislation likely to be introduced in Parliament next week. Prime Minister Narendra Modi thanks youngsters for the suggestions to his video on proposed reforms against paper leaks issue. Says relations will continue with more bonding. Government and CJP to hold third round of talks today. President Draupadi Munmu conferred Dr. Honoris Causa in Romania for a distinguished public service. New Delhi strongly condemns attack on commercial vessel in the Black Sea, claiming life of an Indian seafarer. Heavy rainfall expected in parts of Gujarat, Konkan, Goa and Odisha. And in Commonwealth Games, Jhandu Kumar clinches bronze medal for India in the men's heavyweight para powerlifting. President Draupadi Munmu was conferred the honorary title of Doctor Honoris Causa by the Bucharest University of Economic Studies in Romania in recognition of a distinguished public service, commitment to education and social inclusion, and contribution to strengthening India-Romania relations. The Union Cabinet has approved a draft bill to set up fast-track courts and to ensure stricter punishment in cases of paper leaks and exam malpractices. The Cabinet meeting chaired by Prime Minister Narendra Modi at the Parliament House complex approved the draft bill. Sources told Akashvani News that the proposed legislation is expected to be introduced in the Parliament next week. The National Testing Agency NTA has issued advertisements for a set of senior professional appointments at the level of general manager. It has also opened the engagement of 16 young professionals through the Pratibha Setu portal of the Union Public Service Commission. The NTA in a statement said that these measures represent the first concrete step in the institutional rebuild of the agency that has been implemented in line with the recommendations of the higher level committee of experts chaired by Professor K. Radhakrishnan. NTA has notified four positions for general manager on contract, each for an initial term of 3 years. It said that the engagement of young professionals has been undertaken for the first time. Prime Minister Narendra Modi thanked everyone for the responses and positive suggestions received to his video where he announced the government's decision to bring a strict law to punish those involved in paper leaks. In the video message, Modi said that the new bill incorporating provisions for strong action against paper leaks will be introduced in the ongoing session of Parliament next week. The draft bill, as announced by the Prime Minister in the Instagram video shared by him, was approved by the Union Cabinet yesterday. In a fresh video message released through his Instagram handle yesterday, Mr. Modi said the relations will continue with more bonding.
8: थैंक यू फ्रेंड्स, मैंने जो वीडियो पोस्ट किया था उसको जिस प्रकार से आपने रिस्पॉन्ड किया, सकारात्मक सुझाव दिए, थैंक्स टू एवरीबॉडी। ये आपका प्यार बना रहेगा, हमारा नाता और अधिक सक्रियता से जुड़ता रहेगा।
7: Mr. Modi created a new world record with the most views on a reel in 24 hours, garnering 303 million views as of now. The earlier record was 300 million views. Delhi Police has constituted a special task force, STF, to investigate offences relating to paper leaks and other examination-related offences under the Public Examinations Prevention of Unfair Means Act 2024. Our correspondent has the details.
9: Delhi Police in a statement said that the task force will be responsible for conducting prompt, professional and comprehensive investigations into offences pertaining to public examinations conducted by different authorities. These include Union Public Service Commission, Staff Selection Commission, Railway Recruitment Boards, Institute of Banking Personnel Selection, National Testing Agency, as well as ministries or departments of the central government and their attached and subordinate offices for recruitment of staff. In addition to investigation, the special task force will also ensure effective coordination with the prosecuting agencies to facilitate expedition prosecution to ensure that trials in such cases are conducted on a day-to-day basis. Vedanath Kumar, Shivang Mishra, Akashwani News, Delhi.
7: The government will hold another round of discussions with the CJP delegation today on its demands for reforms in the examination system and measures to prevent examination paper leaks. Union Ministers JP Nadda and Dr. Jitendra Singh met the CJP delegation in New Delhi yesterday. Talking to media after the meeting, Mr. Nadda said that during the meeting they gave a patient hearing to the demands of the CJP regarding reforms in the examination system.
10: The meeting lasted for nearly 2 hours. I, along with Union Minister Jitendra Singh, participated in the discussion. The discussions were held in a cordial atmosphere and various issues were discussed from every perspective. Their proposal was also discussed.
7: Delhi Metro Rail Corporation has informed that 18 stations have been closed from 7:30 this morning till further instructions due to security reasons in the national capital. These include Rajiv Chowk, Patel Chowk, New Delhi, Central Secretariat, ITO, Mandi House, Supreme Court and others. However, DMRC noted that interchange facility shall remain available at Rajiv Chowk, Mandi House and Central Secretariat. This is Akashwani giving you the news for quick news updates around the clock. Follow us on X handle at AIR News Alerts. And for details of stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and download News on AIR app. President Draupadi Munmu was conferred the honorary title of Doctor Honoris Causa by the Bucharest University of Economic Studies in Romania in recognition of a distinguished public service, commitment to education and social inclusion and contribution to strengthening India-Romania relations. Accepting the honor, the President dedicated the award to the 1.4 billion people of India.

0: দিন ভুলি কই ভাগে
1: নহ মজুনু কিংবা চুলি আসিদার।

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबंधित प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात।
1: কাহিনী পঢ়ি আপুনি নিশ্চয় ভাল পায়, উপন্যাস বা গল্পৰ প্ৰতি আপোনাৰ নিশ্চয় আগ্ৰহ আছে। বিবিধ ভাৰতী।

0: এয়া আকাশবাণী গুৱাহাটীৰ প্ৰাগজ্যোতিষপুৰ। এতিয়া 12 বজাৰ পৰা হিন্দীত বাতৰি, 12:05 পৰা ইংৰাজীত বাতৰি আৰু 12:10 পৰা সৈন্যবাহিনীৰ উদ্দেশ্যে প্ৰচাৰিত অনুষ্ঠান।
1: নমস্কাৰ, আকাশবাণী সমাচাৰ কে সাথ মই ফৰহত নাজ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने वीडियो पर मिली प्रतिक्रिया और सुझावों के लिए देश के युवाओं को धन्यवाद दिया है। श्री मोदी ने युवाओं के जबरदस्त समर्थन के लिए आभार व्यक्त किया।
2: थैंक यू फ्रेंड्स, मेरे जो वीडियो पोस्ट किया था उसको जिस प्रकार से आपने रिस्पॉन्ड किया, सकारात्मक सुझाव दिए, थैंक्स टू एवरीबॉडी। ये आपका प्यार बना रहेगा, हमारा नाता और अधिक सक्रियता से जुड़ता रहेगा। थैंक यू।
1: वीडियो को अब तक 30 करोड़ 30 लाख से अधिक बार देखा जा चुका है। ये पहले 24 घंटों में सबसे अधिक देखा जाने वाला वीडियो है। प्रधानमंत्री ने कहा कि पेपर लीक जैसी घटनाओं पर रोक लगाने और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के लिए नया विधेयक संसद के मौजूदा सत्र में अगले सप्ताह पेश किया जाएगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पेपर लीक और परीक्षा में गड़बड़ी के मामलों में फास्ट ट्रैक अदालत बनाने और कड़ी सजा के लिए एक मसौदा विधेयक को मंजूरी दी। संसद भवन परिसर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में इसे मंजूरी दी गई। इस विधेयक को अगले सप्ताह संसद में पेश किए जाने की संभावना है। श्री मोदी ने बृहस्पतिवार को एक वीडियो संदेश में पेपर लीक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के प्रावधानों वाला विधेयक संसद में पेश करने की घोषणा की थी। सरकार ने सख्त रुख अपनाते हुए राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के 47 अधिकारियों को बर्खास्त कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक इनमें से कुछ अधिकारियों के खिलाफ कानूनी और आपराधिक कार्रवाई की जा सकती है। सरकार परीक्षा प्रणाली में सुधार और पेपर लीक रोकने के उपायों से जुड़ी मांगों को लेकर कांग्रेस जनता पार्टी सीजेपी के प्रतिनिधिमंडल के साथ आज एक और दौर की बातचीत करेगी। इससे पहले कल भी नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और डॉ जितेंद्र सिंह ने सीजेपी प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठक की थी। श्री नड्डा ने बैठक को सकारात्मक बताया। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि संसद के बाहर मीडिया को दिए गए बयान के साथ एआई का दुरुपयोग कर छेड़छाड़ की गई और एक डीप फेक वीडियो तैयार कर उसे गलत सूचना फैलाने के उद्देश्य से प्रसारित किया गया। सोशल मीडिया पर साझा किए गए पोस्ट में श्री गोयल ने बताया कि इस मामले में आज सुबह चाणक्यपुरी पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज की गई है। उन्होंने कहा कि फर्जी वीडियो बनाने, प्रसारित करने या उसे बढ़ावा देने में शामिल सभी लोगों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सरकार ने सोशल मीडिया पर चल रहे उस वीडियो का खंडन किया है जिसमें दावा किया जा रहा है कि प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल एनएस राजा सुब्रमण्यम ने कहा है कि नई दिल्ली के जंतर मंतर पर हो रहे प्रदर्शनों के कारण 30,000 सेना के जवानों ने इस्तीफा दे दिया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने स्पष्ट किया है कि ये वीडियो फर्जी और एआई से तैयार किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल शाम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विकसित वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम 2026 के प्रतिभागियों से बातचीत करेंगे। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करने वाले 400 से अधिक युवा प्रतिभागी प्रधानमंत्री से बातचीत करेंगे। भारत ने काला सागर में वाणिज्यिक पोत एमवी ओमोरफिम पर हुए हमले की कड़ी निंदा की है। हमले को अस्वीकार्य बताते हुए भारत ने सभी संबंधित पक्षों से समुद्री नौवहन और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की सुरक्षा सुनिश्चित करने का आह्वान किया। ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों में भारत ने अपना पहला पदक जीत लिया है। झंडू कुमार ने पैरा भारोत्तोलन की पुरुष हैवीवेट स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। उन्होंने 190 किलोग्राम भार उठाकर तीसरा स्थान हासिल किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एथलीट झंडू कुमार को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कुमार के प्रदर्शन को शानदार बताया और कहा कि ये उपलब्धि उनकी अदम्य शक्ति, अटूट दृढ़ संकल्प और वर्षों के अनुशासित प्रयासों का सशक्त उदाहरण है। जम्मू कश्मीर में खराब मौसम के कारण 6 दिनों तक स्थगित रहने के बाद वार्षिक श्री अमरनाथ यात्रा आज से दोबारा शुरू हो गई है। कश्मीर के संभागीय आयुक्त अंशुल गर्ग ने आकाशवाणी समाचार को ये जानकारी दी। वहीं असम में बाढ़ की स्थिति अब भी गंभीर बनी हुई

सैनिक भाइयों, आज के इस प्रसारण में मैं सीमा रावत आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूं। आज के संगीत में सफर में आगे बढ़ने से पहले आइए एक नजर डाल लेते हैं आज के कार्यक्रमों पर।

सैनी भाइयों, आपसे थोड़ी देर बाद इस प्रसारण का पहला कार्यक्रम सुन सकेंगे फिल्म संगीत। 12:30 पर दैनिक कार्यक्रम आज का गीत और 12:38 पर एक और अनेक कार्यक्रम। दिन के 1:05 पर अंग्रेजी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा।

दिन के 1:40 पर प्रादेशिक संगीत कार्यक्रम, दिन के 2 और 2:15 पर बारी बारी से सुन पाएंगे अंग्रेजी और हिंदी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। समाचार के तुरंत बाद हम एक बार फिर लौटेंगे दिन के 2:30 पर नजराना कार्यक्रम को लेकर।

अब प्रस्तुत है इस प्रसारण का पहला कार्यक्रम फिल्म संगीत। जुड़वा फिल्म से सुनते हैं ये पहला गीत पूर्णिमा और अनु मलिक की आवाजों में।

ये आकाशवाणी गुवाहाटी केंद्र का प्राग्ज्योतिष ज्योतिषपुर है। मीडियम वेव 289 मीटर 1035 किलोहर्ट्ज और डीआरएम फ्रीक्वेंसी 1026 किलोहर्ट्ज पर। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम आज का गीत। फिल्म का नाम है क्रिश, आवाजें हैं सोनू निगम और श्रेया घोषाल की। इस फिल्म को संगीत से सजाया है राजेश रोशन ने, गीतकार है नासिर फरहाज। तो आइए सुनते हैं आज का गीत। फिल्म है क्रिश।

इसी गीत के साथ आज का गीत कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। अगला कार्यक्रम है एक और अनेक, पर उस कार्यक्रम को सुनने से पहले आइए एक नजर डाल लेते हैं कल के कार्यक्रमों पर। हमेशा की तरह हमारा प्रसारण आरंभ होता है दिन के 12:10 पर। पहला कार्यक्रम सुन सकेंगे 12:12 पर फिल्म संगीत,

बारह बजकर 30 मिनट पर दैनिक कार्यक्रम आज का गीत, 12 बजकर 38 मिनट पर सब रंग कार्यक्रम और दिन के 1 बजकर 5 मिनट पर अंग्रेजी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा।

समाचार के तुरंत बाद हम एक बार फिर लौटेंगे, यानी कि दिन के 1:10 पर विशेष कार्यक्रम को लेकर कारगिल विजय दिवस के उपलक्ष्य पर। दिन के 1:40 पर शीर्षक संगीत कार्यक्रम, दिन के 2:00 और 2:15 पर अंग्रेजी और हिंदी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा। समाचार के तुरंत बाद हम एक बार फिर हाजिर होंगे दिन के 2:30 पर गीत अपना धुन पराई कार्यक्रम को लेकर।

गीत अपना धुनपराय कार्यक्रम के साथ ही कल का प्रसारण समाप्त होगा दिन के 3 बजे। तो ये थी कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रम की अग्रिम जानकारी।

अब प्रस्तुत है कार्यक्रम एक और अनेक। स्वागत है आप सभी का आपके पसंदीदा कार्यक्रम एक और अनेक में। आज हम बात करेंगे मेलोडी के बेताज बादशाह कुमार शानू की 90

के दशक में अपनी मखमली आवाज से हर दिल पर राज करने वाले कुमार शानू ने लगातार 5 साल फिल्म फेयर अवार्ड जीतकर एक अटूट रिकॉर्ड बनाया है। किशोर कुमार जी से प्रेरित होकर अपना सफर शुरू करने वाले कुमार शानू ने संगीत की दुनिया को एक ऐसे बढ़कर एक सदाबहार नगमे दिए हैं। लेकिन जैसा कि हमारे कार्यक्रम का नाम है एक और अनेक, आज हम कुमार शानू के वो खूबसूरत संगीत में रिश्ते सुनेंगे जो उन्होंने अलका याग्निक, उदित नारायण, सोनू निगम जैसे दिग्गज कलाकारों के साथ मिलकर बनाए हैं। शुरुआत करते हैं फिल्म दिल का रिश्ता के शीर्षक गीत से, जिसे कुमार शानू के साथ गाया है अलका याग्निक और उदित नारायण ने।

क्या बात है, रिश्तों के बाद अब बात करते हैं दोस्ती के उस मोड़ की, जहां कभी कभी गलतियां हो जाती है पर सच्चे यार हमेशा कहते हैं आ अब लौट चले। फिल्म से सुनते हैं ये गीत, आवाज है उदित नारायण और अलका याग्निक की।

दोस्त में थोड़ा मजाक और छेड़छाड़ भी जरूरी है, तो अगला गाना है उनके लिए जो थोड़े खास है। इक्का राजा रानी फिल्म से कुमार शानू, अलका याग्निक और उदित नारायण की आवाजों में।

कुमार शानू को किंग ऑफ रोमांस भी कहा जाता है क्योंकि जब वो प्यार के नगमे गाते हैं तो जादू बिखर जाता है। चलिए तकरार को छोड़ते हैं और लौटते हैं सच्ची दोस्ती पर। कहते हैं ना कि सच्चे यार कभी ऐसी वैसी बातें नहीं करते। फिल्म आरजू से कुमार शानू और अलका याग्निक की आवाजों में सुनते हैं अगला गीत।

सैनिक भाइयों, इस समय आप सुन रहे हैं गुंजन कार्यक्रम। बढ़ते हैं अगले गीत की ओर। राजा और रंग फिल्म से सुनते हैं यह अगला गीत मोहम्मद रफी की आवाज में।

अगला गीत आइए सुनते हैं। आरंभ फिल्म से आरती मुखर्जी की आवाज में।

ये आकाशवाणी गुवाहाटी केंद्र का प्राग ज्योतिषपुर है। मीडियम वेव 289 मीटर 1035 किलोहर्ट्ज और डीआरएम फ्रीक्वेंसी 1026 किलोहर्ट्ज पर। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम प्रादेशिक संगीत। यह है इस कार्यक्रम का पहला गीत।

अभी आपने सुना इस प्रादी संगीत को आवाज थी दमयंती और साथियों की। अगला प्रादी संगीत आइए सुनते हैं महेश कुमार और रामेश बोरा की आवाजों में।

0: in the house, debates, discussions and even disturbances, it must be always lead to a final decision. Without decision, no country can move forward. Without decision, no government can function. So decision is required. If you delay also, the right decision also becomes sometimes wrong decision, or that becomes no decision. This is where we need to have knowledge of the rules and procedures of the house towards contributing effectively through debates.
1: Lok Sabha Speaker Om Birla today paid floral tributes to former Lok Sabha Speaker Somnath Chatterjee on his birth anniversary. On the occasion, members of parliament, former members of parliament and other dignitaries also paid floral tributes to Somnath Chatterjee. Prime Minister Narendra Modi will interact with the participants of Viksit Vibrant Village Programme 2026 tomorrow through video conferencing. Over 400 youth participants representing every state and union territory will interact with the Prime Minister. The sacred city of Puri in Odisha is set to witness one of the most magnificent rituals of the annual Rath Yatra this evening, as Lord Jagannath, Lord Balbhadra and Devi Subhadra will be adorned in the resplendent Suna Besha or golden attire. Lakhs of devotees from the country and abroad are expected to gather along the grand road to witness this magnificent spiritual spectacle. We have a report.
2: The holy city of Puri is immersed in an atmosphere of profound devotion and festivity as the revered Suna Besha or the golden attire of Lord Jagannath, Lord Balabhadra and Devi Subhadra will be ceremonially observed this evening atop their majestic chariots stationed on the grand road. During this time honored ritual, the Shivling deities will be adorned with around 208 kilograms of traditional ornaments comprising gold and other precious materials symbolizing divine majesty, prosperity and universal benevolence. Elaborate security arrangements and extensive pilgrim facilitation measures have been put in place to ensure the smooth conduct of the occasion, which is expected to draw millions of devotees from across India and abroad. Prakash Das for Akashvani News.
1: Dev Shayani Ashadhi Ekadashi, one of the most sacred observances dedicated to Lord Vishnu, is being observed today. Prime Minister Narendra Modi extended his greetings to the citizens on the sacred occasion. On to sports. In men's cricket, India will take on hosts Zimbabwe in the second T20 international of this three-match series at Harare today. The match will begin at 4:30 p.m. in the afternoon. The visitors took 1-0 lead in the game after a dominant 7-wicket win in the opening match on Thursday. In squash, India's Anahat Singh created history by reaching the women's singles final of the World Junior Championships after defeating Egypt's Barb Same 3-1 in the semi-final at Ontario in Canada. The 18-year-old became the second Indian player to enter the final of the prestigious junior tournament after veteran Joshna Chinnappa achieved the feat in 2005. Anahat will now face Egypt's Rukaiya Salem in the title clash at the same venue tonight. The match is expected to begin at around 10:30 p.m. Indian Standard Time. India opened its medal tally at the 2026 Commonwealth Games in Glasgow last night after a para-athlete, Jandu Kumar, clenched the bronze medal in the men's heavyweight para-powerlifting. Prime Minister Narendra Modi congratulated the para-athlete on the feat. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Flood situation in Assam remains critical as death toll reaches 61. Over 1 lakh people take shelter in relief camps. Prime Minister Narendra Modi assures all possible assistance. Rescue and relief operations in full swing in rain-hit Gujarat. Over 40,000 people evacuated. Sri Amarnath Yatra and Sri Mata Vaishno Devi Yatra in Jammu and Kashmir resume after remaining suspended for 6 days due to inclement weather. Government to hold third round of talks with CJP delegation on exam reforms and paper leak prevention measures this afternoon. Madhya Pradesh High Court designates 4 special fast-track courts for trial of cases relating to paper leak and related irregularities. And in men's cricket, India to take on hosts Zimbabwe in second T20 at Harare this afternoon. And with that, we end the midday news.
3: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं फरहत नाज। असम में बाढ़ की स्थिति गंभीर, मरने वालों की संख्या 61 हुई, 1,00,000 से अधिक लोगों ने राहत शिविरों में शरण ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हर संभव सहायता का आश्वासन। वर्षा प्रभावित गुजरात में बचाव और राहत कार्य जोरों पर, 40,000 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। जम्मू कश्मीर में खराब मौसम के कारण 6 दिन तक स्थगित रहने के बाद श्री अमरनाथ यात्रा और श्री माता वैष्णो देवी यात्रा फिर से शुरू। सरकार और सीजेपी के बीच परीक्षा प्रणाली में सुधार और पेपर लीक रोकने के उपायों पर आज तीसरे दौर की बातचीत। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने पेपर लीक और उससे जुड़ी अनियमितताओं के मामलों की सुनवाई के लिए 4 विशेष फास्ट ट्रैक अदालत गठित की। स्क्वैश में भारत के अनाहत सिंह विश्व जूनियर चैंपियनशिप के महिला सिंगल्स के फाइनल में पहुंची। और क्रिकेट में भारत और जिम्बाब्वे के बीच दूसरा मुकाबला आज हरारे में खेला जाएगा। अब समाचार विस्तार से। असम में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है, 1,00,000 से अधिक लोग राहत शिविरों में शरण लिए हुए हैं। सबसे ज्यादा प्रभावित जिले शिवसागर, चराईदेव और जोरहाट हैं। ताजा रिपोर्ट के अनुसार बाढ़ से संबंधित मामलों में 14 और लोगों की मौत हुई। इनमें चराईदेव में 7, शिवसागर में 6 और जोरहाट में 1 व्यक्ति की मृत्यु हुई है। एक रिपोर्ट।
4: राज्य में बाढ़ से मरने वालों की कुल संख्या बढ़कर 61 हो गई है। प्रमुख नदियां दीखो, दिसंग और धनसरी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। इससे ऊपरी असम में बाढ़ की स्थिति और भी गंभीर हो गई है। प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव अभियान जारी है। आपदा मोचन बल, जिला प्रशासन और अन्य एजेंसियां राहत सामग्री उपलब्ध कराने, फंसे हुए लोगों को निकालने और बाढ़ प्रभावित परिवारों को सहायता प्रदान करने में लगी हुई है। अधिकारी स्थिति पर कड़ी नजर रख रहे हैं और प्रभावित जिलों में राहत उपायों को तेज कर दिया गया है। गुवाहाटी से राकेश टोले की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा से टेलीफोन पर बातचीत कर बाढ़ की स्थिति की समीक्षा की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शर्मा ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें राहत पुनर्वास और पुनर्निर्माण कार्यों में केंद्र सरकार की ओर से हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। श्री शर्मा ने कहा कि असम के लोग इस कठिन समय में प्रधानमंत्री द्वारा दिए गए आश्वासन और अटूट समर्थन के लिए उनके प्रति अत्यंत आभारी हैं। इस बीच गुजरात में मॉनसून की स्थिति गंभीर बनी हुई है। राज्य के कई हिस्सों में तेज बारिश हो रही है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव अभियान युद्ध स्तर पर जारी है।
5: जर्फ की 32 प्लांटून और सेना की 6 टुकड़ियां भी विभिन्न जिलों में तैनात की गई है। लगातार हो रही बारिश से राज्य के जलाशयों में जलस्तर भी तेजी से बढ़ रहा है। सरदार सरोवर नर्मदा बांध में जल भंडारण क्षमता का लगभग 69% पानी भर चुका है, जबकि राज्य के 21 बांधों के लिए हाई अलर्ट जारी किया गया है। जल भराव के कारण यातायात और विद्युत सेवाएं भी प्रभावित हुई है। 34 स्टेट हाईवे समेत राज्य के 600 से अधिक सड़कें एहतियातन बंद कर दी गई है। वहीं मौसम विभाग ने राज्य के विभिन्न जिलों के लिए भारी से अति भारी बारिश की चेतावनी जारी करते हुए मछुआरों को समुद्र में न जाने की सलाह दी है। अपर्णा खुंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
3: भारतीय तटरक्षक बल ने 22 जुलाई के मध्यरात्रि से चलाए गए 11 बचाव अभियानों के माध्यम से दमन, दादरा और नगर हवेली तथा दक्षिण गुजरात के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में फंसे 170 लोगों को बचाया है। वहीं सिक्किम के नामची जिले के फामतम गांव में आज भूस्खलन के कारण 2 लोगों के मारे जाने की आशंका है। नामची के SSP ने बताया कि बचाव अभियान चलाया जा रहा है। 2 घायलों को नामची जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। अधिक जानकारी की प्रतीक्षा है। जम्मू कश्मीर में खराब मौसम के कारण 6 दिनों तक स्थगित रहने के बाद वार्षिक श्री अमरनाथ यात्रा आज फिर से शुरू हो गई है। कश्मीर के संभागीय आयुक्त अंशुल गर्ग ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि बालतल और पहलगाम दोनों मार्गों से यात्रा फिर से शुरू कर दी गई है। यात्रियों को सुरक्षित तीर्थ यात्रा के लिए प्रशासन द्वारा जारी निर्देशों का सख्ती से पालन करने की सलाह दी गई है। इस बीच 6,269 तीर्थयात्रियों का एक नया जत्था आज सुबह जम्मू के भगवती नगर यात्री निवास से रवाना हुआ। जम्मू कश्मीर में तेज बारिश के कारण लगातार 6 दिन तक निरस्त रही श्री माता वैष्णो देवी यात्रा आज फिर शुरू हुई। इस मार्ग पर लगातार बारिश, भूस्खलन और अचानक बाढ़ आने के जोखिम के कारण यात्रा को निरस्त कर दिया गया था। तीर्थयात्रियों को अपनी यात्रा के दौरान श्राइन बोर्ड और सुरक्षा एजेंसियों के निर्देशों तथा सुरक्षा परामर्श का पालन करने और मौसम संबंधी जानकारी से अवगत रहने की सलाह दी गई है। मौसम विभाग ने आज गुजरात में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। वहीं कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, उड़ीसा और राजस्थान में भी इसी तरह की स्थिति रहने की संभावना है। अगले दो से तीन दिन के दौरान हरियाणा, चंडीगढ़ और उत्तर प्रदेश में भी तेज बारिश हो सकती है। वहीं असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, तटीय कर्नाटक, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, पंजाब, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक और उत्तराखंड में भी कुछ स्थानों पर तेज बारिश की संभावना है। दिल्ली में भी आज तेज वर्षा हो सकती है। ये समाचार हमारे न्यूज़ ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www

0: news.newsonair.gov.in पर उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। सरकार आज दोपहर नई दिल्ली में कांग्रेस जनता पार्टी सीजेपी के प्रतिनिधिमंडल के साथ तीसरे दौर की वार्ता करेगी। इस बैठक में परीक्षा प्रणाली में सुधार और प्रश्न पत्र लीक की घटनाओं को रोकने के उपायों पर प्रतिनिधिमंडल की मांगों पर चर्चा होगी। ये बैठक दोपहर 3:30 बजे कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब में आयोजित होगी। इससे पहले केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और डॉ जितेंद्र सिंह ने कल नई दिल्ली में सीजेपी प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की थी। बैठक के बाद मीडिया से बातचीत में श्री नड्डा ने कहा कि सरकार ने परीक्षा प्रणाली में सुधार संबंधी सीजेपी की मांगों को गंभीरता और धैर्यपूर्वक सुना है। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने परीक्षा प्रश्न पत्र लीक और उससे जुड़े अनियमितताओं के मामलों की सुनवाई के लिए 4 विशेष फास्ट ट्रैक अदालतों को नामित किया है। न्यायालय ने निर्देश दिया है कि आरोप पत्र दाखिल होने के 3 महीने के भीतर इन मामलों का निपटारा किया जाए। उच्च न्यायालय ने कहा है कि ये अदालतें राज्य और केंद्रीय जांच एजेंसियों द्वारा भेजे गए संबंधित मामलों की भी सुनवाई करेगी। इनका अधिकार क्षेत्र आसपास के जिलों तक विस्तारित रहेगा। न्यायालय ने कहा कि इस पहल का उद्देश्य परीक्षा प्रणाली में निष्पक्षता, पारदर्शिता और विश्वसनीयता सुनिश्चित करना तथा ऐसे मामलों में त्वरित न्याय उपलब्ध कराना है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि राज्य सरकार अब इस घोषणा को अमल में लाते हुए 4 प्रमुख शहरों में विशेष अदालतें स्थापित कर रही है। ये घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं के हित में शिक्षा और रोजगार से जुड़े मामलों के शीघ्र निपटारे के लिए की थी। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कल मध्य कोलकाता में कई वामपंथी संगठनों द्वारा नीट परीक्षा पेपर लीक के विरोध में आयोजित रैली के दौरान पत्रकारों पर हुए कथित हमले की कड़ी निंदा की है। उन्होंने कहा कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री ने आज विधानसभा में कहा कि इस घटना के संबंध में 7 मामले दर्ज किए जा चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेपर लीक मामले में सख्त कानून लाने को लेकर जारी किए गए अपने वीडियो संदेश पर मिली प्रतिक्रिया और सुझावों के लिए देश के युवाओं को धन्यवाद दिया है। श्री मोदी ने युवाओं के जबरदस्त समर्थन के लिए आभार व्यक्त किया।
1: थैंक यू फ्रेंड्स, मेरे जो वीडियो पोस्ट किया था उसको जिस प्रकार से आपने रिस्पॉन्ड किया, सकारात्मक सुझाव दिए, थैंक्स टू एवरीबॉडी। ये आपका प्यार बना रहेगा, हमारा नाता और अधिक सक्रियता से जुड़ता रहेगा।
0: वीडियो को अब तक 30 करोड़ 30 लाख से अधिक बार देखा जा चुका है। ये पहले 24 घंटों में सबसे अधिक देखा जाने वाला वीडियो है। प्रधानमंत्री ने कहा कि पेपर लीक जैसी घटनाओं पर रोक लगाने और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के लिए नया विधेयक संसद के मौजूदा सत्र में अगले सप्ताह पेश किया जाएगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पेपर लीक और परीक्षा में गड़बड़ी के मामलों में फास्ट ट्रैक अदालत बनाने और कड़ी सजा के लिए एक मसौदा विधेयक को भी मंजूरी दे दी है। संसद भवन परिसर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में इसे मंजूरी दी गई। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि संसद के बाहर मीडिया को दिए गए बयान के साथ एआई का दुरुपयोग कर छेड़छाड़ की गई और एक डीप फेक वीडियो तैयार कर उसे गलत सूचना फैलाने के उद्देश्य से प्रसारित किया गया। सोशल मीडिया पर साझा किए गए पोस्ट में श्री गोयल ने बताया कि इस मामले में आज सुबह चाणक्यपुरी पुलिस थाने में FIR दर्ज की गई है। उन्होंने कहा कि फर्जी वीडियो बनाने, प्रसारित करने या उसे बढ़ावा देने में शामिल सभी लोगों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। दिल्ली पुलिस ने कहा है कि नीट पेपर लीक मामले को लेकर चल रहे विरोध प्रदर्शनों के मद्देनजर वो सोशल मीडिया पर लगातार नजर रख रही है। आज नई दिल्ली में मीडिया को जानकारी देते हुए मध्य दिल्ली के पुलिस उपायुक्त रोहित राजवीर सिंह ने बताया कि फर्जी खबरें और एआई द्वारा निर्मित सामग्री फैलाने वाले 400 से अधिक सोशल मीडिया हैंडल की पहचान कर उन्हें ब्लॉक दिया गया है।
2: दिल्ली पुलिस ने लोगों से अपील की कि बिना पुष्टि वाले दावों पर बिल्कुल भी भरोसा ना करें। हमारी जांच में यह भी सामने आया कि पाकिस्तान से चलाए जा रहे कुछ सोशल मीडिया अकाउंट्स फेक कंटेंट फैला रहे हैं। दिल्ली पुलिस संबंधित एजेंसियों के एक साथ मिलकर ऐसे और अकाउंट्स की पहचान करने पर लगातार काम कर रही है। ऐसे 400 से अधिक हैंडल्स की अब तक पहचान कर ली गई है और उन्हें AI जनरेटेड कंटेंट, डीपफेक वीडियो, एडिटेड तस्वीरें और प्रदर्शन से जुड़ी अन्य झूठी सामग्री फैलाने के कारण ब्लॉक किया गया है।
0: और अभी समाचार मिला है कि नीट पेपर लीक मामले में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अपना इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना इस्तीफा सौंपा। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने कहा है कि संसद में बिताया गया हर दिन, हर घंटा, हर मिनट और हर सेकंड लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए समर्पित होना चाहिए। नई दिल्ली में आज राज्यसभा के नव निर्वाचित और मनोनीत सदस्यों के लिए आयोजित 2 दिवसीय ओरिएंटेशन और प्रशिक्षण कार्यक्रम के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि सदन में होने वाली बहस हमेशा किसी

0: सार्थक निर्णय तक पहुंचनी चाहिए। सरकार ने सोशल मीडिया पर चल रहे उस वीडियो का खंडन किया है जिसमें दावा किया जा रहा है कि प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल एनएस राजा सुब्रमणि ने कहा है कि नई दिल्ली के जंतर मंतर पर हो रहे प्रदर्शनों के कारण 30,000 सेना के जवानों ने इस्तीफा दे दिया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने स्पष्ट किया है कि यह वीडियो फर्जी और AI से तैयार किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल शाम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विकसित वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम 2026 के प्रतिभागियों से बातचीत करेंगे। इस अवसर पर सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करने वाले 400 से अधिक युवा प्रतिभागी प्रधानमंत्री से बातचीत करेंगे। पश्चिम बंगाल सरकार ने आज राज्य विधानसभा में नियंत्रक और महालेखा परीक्षक CAG की 28 लंबित रिपोर्टें पेश की हैं। इन लंबित रिपोर्ट को पेश करके पश्चिम बंगाल सरकार ने अपना किया गया वायदा पूरा किया। वित्त मंत्री स्वपन दासगुप्ता ने ये रिपोर्ट पेश की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज आषाढ़ी एकादशी के अवसर पर नागरिकों को शुभकामनाएं दी हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। भारत की स्क्वैश खिलाड़ी अनाहत सिंह ने इतिहास रचते हुए विश्व जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप के महिला सिंगल्स फाइनल में जगह बना ली है। उन्होंने आज कनाडा के ओंटारियो में खेले गए सेमीफाइनल में मिस्र की बार्ब सामेह को 3-1 से हराया। वहीं फाइनल में अनाहत का सामना आज मिस्र की रुकैया सलीम से होगा। ये मैच भारतीय समयानुसार रात करीब 10:30 बजे शुरू होने की उम्मीद है। अनाहत सिंह जोशना चिनप्पा के बाद विश्व जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने वाली भारतीय खिलाड़ी बन गई हैं। ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों में भारत ने अपना पहला पदक जीत लिया है। झंडू कुमार ने पैरा भारोत्तोलन की पुरुष हैवीवेट स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। उन्होंने 190 किलोग्राम भार उठाकर तीसरा स्थान हासिल किया। इस उपलब्धि के बाद उन्होंने खुशी व्यक्त करते हुए अपने कोच और प्रशिक्षकों का आभार व्यक्त किया।
1: बहुत अच्छा लग रहा है, पहला मेडल है हमारा। हमारे पीछे कोच हैं राजेंद्र सिंह और हमारा JP सर हैं, वो भी बहुत सहयोग किए हैं। आज उन्हीं सब बदौलत हमें आज मेडल प्राप्त हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि हम पे आज इतना प्रैक्टिस करवाए, प्यार दिए और भी आगे हम अच्छा करने की कोशिश करेंगे।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एथलीट झंडू कुमार को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कुमार के प्रदर्शन को शानदार बताते हुए कहा है कि ये उपलब्धि उनकी अदम्य शक्ति, अटूट दृढ़ संकल्प और वर्षों के अनुशासित प्रयासों का सशक्त उदाहरण है। क्रिकेट में भारत और जिम्बाब्वे के बीच 3 मैचों की T20 अंतर्राष्ट्रीय श्रृंखला का दूसरा मुकाबला आज हरारे में खेला जाएगा। ये मैच भारतीय समयानुसार 4:30 बजे शुरू होगा। आकाशवाणी कार्यक्रम पर्सन बिहाइंड द स्टोरी श्रृंखला के अंतर्गत हम करगिल युद्ध के जाबाज योद्धा और भारत के पहले ब्लेड रनर सेवानिवृत्त मेजर DP सिंह से बातचीत करेंगे। इस बातचीत को आज शाम 5:10 से 100.1 आकाशवाणी गोल्ड पर सुना जा सकता है। श्रोता कार्यक्रम को न्यूज ऑन AIR ऐप और न्यूज ऑन AIR के आधिकारिक YouTube चैनल पर भी सुन सकते हैं। कार्यक्रम का पुनः प्रसारण कल दोपहर 12:30 से किया जाएगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अपने पद से इस्तीफा दिया। सरकार और CGP के बीच परीक्षा प्रणाली में सुधार और पेपर लीक रोकने के उपायों पर आज तीसरे दौर की बातचीत। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने पेपर लीक और उससे जुड़ी अनियमितताओं के मामलों की सुनवाई के लिए 4 विशेष फास्ट ट्रैक अदालत गठित की। असम में बाढ़ की स्थिति गंभीर, मरने वालों की संख्या 61 हुई। 1,00,000 से अधिक लोगों ने राहत शिविरों में शरण ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हर संभव सहायता का आश्वासन। वर्षा प्रभावित गुजरात में बचाव और राहत कार्य जोरों पर, 40,000 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। जम्मू कश्मीर में खराब मौसम के कारण 6 दिन तक स्थगित रहने के बाद श्री अमरनाथ यात्रा और श्री माता वैष्णो देवी यात्रा फिर से शुरू। और खेलों में स्क्वैश में भारत के अनाहत सिंह विश्व जूनियर चैंपियनशिप के महिला सिंगल्स के फाइनल में पहुंचे। वहीं क्रिकेट में भारत और जिम्बाब्वे के बीच दूसरा मुकाबला आज हरारे में खेला जाएगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: ये आकाशवाणी गुवाहाटी केंद्र का प्रागज्योतिषपुर है। मीडियम वेव 289.9 मीटर, 1035 किलोहर्ट्ज और DRM फ्रीक्वेंसी 1026 किलोहर्ट्ज पर। समाचारों के बाद एक बार फिर आप सभी का इस प्रसारण में स्वागत करती हूं। मैं सीमा।

0: सैनी भाइयों, अब प्रस्तुत है इस प्रसारण का अंतिम कार्यक्रम नजराना। यह है इस कार्यक्रम का पहला गीत, किनारा फिल्म से किशोर कुमार की आवाज में।
1: किशोरदा, आपके साथ गुजारे लम्हे अभी तक न जहन से उतरे हैं न कान से। आपके चाहने वाले आज भी आपको ऐसे ही याद करते हैं जैसे कल ही तो मिले थे, कल ही तो आपको गाते सुना था, बोलते सुना था, हंसी मजाक करते देखा था। हर लम्हा अभी तक वैसे ही जाग रहा है, जाने क्या सोच कर नहीं गुजरा, एक पल रात भर नहीं गुजरा।

इसी गीत के साथ आज का नजराना कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। 3 बजे से रिले किया जाएगा FM रेनबो के कार्यक्रम। आज का सैनिक भाइयों का कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। कल फिर मुलाकात होगी दिन के 12:10 पर। तब तक के लिए मैं सीमा लेती हूँ इजाजत। जय हिंद।

0: समस्याओं के कारण, लक्षण, बचाव और आधुनिक उपचार के बारे में विस्तार से अपने विशेषज्ञ से। हमारे साथ हैं डॉक्टर विनय गोयल, चेयरमैन न्यूरोलॉजी मेदांता हॉस्पिटल। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में।
1: धन्यवाद शिल्पा जी इस प्रोग्राम में बुलाने के लिए।
0: आप हमारे इस प्रोग्राम को प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन AIR पे भी लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से सुन सकते हैं। तो श्रोताओं, जुड़े रहिए हमारे साथ, आज हम बात करेंगे ट्रीटमेंट ऑफ न्यूरोलॉजिकल डिजीजेस पर। तो डॉक्टर साहब, जैसा कि आज का हमारा टॉपिक है, तो सबसे पहले आप हमें यही बताइए कि न्यूरोलॉजिकल डिजीजेस क्या होती है और कौन कौन सी होती हैं?
1: देखिए, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स का मतलब होता है कि जो भी नर्वस सिस्टम से रिलेटेड है। तो नर्वस सिस्टम बनता है ब्रेन से, स्पाइनल कॉर्ड से, फिर जो उससे जो नसें निकलती हैं जो पूरी बॉडी को सप्लाई करती हैं वो नर्व्स होती हैं, वो सप्लाई करती हैं मसल्स को। तो ये स्ट्रक्चर मिलकर नर्वस सिस्टम बनाता है। तो जो ब्रेन से रिलेटेड बीमारियां होंगी, जैसे ब्रेन में अगर इन्फेक्शन हो गया, चोट लग गई या ब्लीडिंग हो गया या उसमें क्लॉट बन गया या हेरिडिटी कोई बीमारी है, तो उससे रिलेटेड ब्रेन से रिलेटेड बीमारी होंगी। अगर वो स्पाइनल कॉर्ड में हुआ तो स्पाइनल कॉर्ड की सबसे कॉमन तो होती है एक्सीडेंट में, जो हम सुनते हैं ना स्पाइनल कॉर्ड जो इंजरी हो गया और पैरापेलेप्सी, तो पैराप्लीजिया हो जाता है या क्वाड्रिप्लीजिया, मतलब चारों हाथ पैरों में लकवा हो जाता है। नर्व्स की जो बीमारी होती है जो हम कॉमनली सुनते हैं कि न्यूरोपैथी हो गया, तो जो नर्व का जब इन्वॉल्वमेंट होता है उसको हम न्यूरोपैथी कहते हैं। और मसल्स की जो बीमारी होती है जिसको बोलते हैं मायोपैथी। जनरली उसमें होता है, न्यूरोपैथी में होता है कि हाथ पैर में आप में आपको झंझनाहट हो रही है, हाथ पैरों में वीकनेस आ रही है, जो जनरली डिस्टली मतलब पंजे और हाथों से शुरू होगी और फिर ऊपर की तरफ जाएगी। मसल में उल्टा होता है, मसल में होता है कि आपको बैठ के खड़े होने में दिक्कत हो रही है, हाथ ऊपर उठाने में दिक्कत हो रही है। कुछ होती है जो मसल और नर्व के बीच का जो जंक्शन होता है उसको बोलते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। वो बीमारी ऐसी होती है जैसे मायसिनिया ग्रेविस। तो आप कोई रिपीटेडली एक्टिव, आप जैसे एक बार तो खड़े हो गए बैठ के, लेकिन जब पांचवीं बार खड़े होंगे तो आपको थोड़ा वीकनेस फील होगा। जब आप खाना खाएंगे, लगातार खाना खा रहे हैं, पहली रोटी खा ली, दूसरी तीसरी में दिक्कत ज्यादा बढ़ जाएगी। तो रिपीटेड एक्टिविटी के बाद आपकी मसल वीक हो जाती है। ये होता है क्लासिकल मायस्थीनिया, जो कि नर्व मसल के जंक्शन जो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन होते हैं उससे रिलेटेड जो बीमारियां होती है।
0: तो इसका मेन रीजन क्या है, जो न्यूरोलॉजिकल डिजीजेस होती हैं किस वजह से हो जाती हैं, क्या कारण है?
1: इसको हम एक तरीके से डिस्क्राइब नहीं कर सकते। जैसे हम ब्रेन से शुरू करें तो ब्रेन में जो कॉमन चीज होती है वो क्या होती है, लकवा हो सकता है, जो हम स्ट्रोक के नाम से जानते हैं या पैरालिसिस के नाम से जानते हैं। तो पैरालिसिस दो टाइप का होता है। एक तो होता है कि ब्रेन का बहाव जो है वहां पे किसी को ब्लड वेसल जो रुक जाए, तो उस एरिया में खून की सप्लाई बंद हो जाएगी, वो डैमेज हो जाएगा। तो अगर जो राइट साइड का ब्रेन अफेक्टेड है तो सिम्टम जो है वो लेफ्ट साइड में आते हैं, जिसको हम बोलते हैं कि हेमिप्लेजिया हो गया, तो हाथ या पैर उठना बंद हो जाएगा। अगर जो ब्रेन में हेमरेज हो गया है, तो डिपेंड करता है कि ब्रेन के किस हिस्से में हेमरेज हुआ है। तो हम जो तीन चार चीजें होती हैं जिससे हम बोलते हैं कि क्या क्या सिम्टम हो सकते हैं स्ट्रोक के, सबसे पहले तो अगर जो आपका हाथ अगर ऊपर उठ रहा है और नीचे उठाने में दिक्कत हो रही है, आवाज में अगर जो दिक्कत हो रही है, आपकी चाल में अचानक लड़खड़ाहट होने लगी है, सिर में बहुत तेज भयंकर ऐसा हेडेक हुआ है जो आपने पहले कभी नहीं देखा है, ये ऐसे सिम्टम आने लगे हैं, तो आपको सोचना चाहिए कि क्या आपको लकवा हुआ है। मैं आपको एग्जाम्पल दूं, किसी को राइट साइड में भी चेस्ट पेन होता है, हार्ट जबकि लेफ्ट साइड में होता है, तो उसके मन में दिमाग में आता है कि मेरे को हार्ट अटैक तो नहीं हो गया, और वो एकदम भाग के डॉक्टर के पास जाता है। लेकिन मैं आप जो कुछ सिम्टम बता रहा हूँ, किसी का एक हाथ चलना अचानक बंद हो गया, पैर चलना या पूरा एक साइड का हाथ का लकवा हो गया, लोग पहले क्या सोचते हैं, ये सो गया होगा, तो मालिश करते रहते हैं या लोकल डॉक्टर से कई बार बात कर लेते हैं, घरेलू इलाज करते हैं, वो प्रीशियस टाइम वेस्ट कर देते हैं। जबकि ऐसा मानना है कि अगर जो कोई ब्लड प्रेशर बंद हो गया, इसमें क्लॉट आ गया और आप विदिन 3 आवर्स अगर जो हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं, तो हम एक ड्रग दी होती है जिसको बोलते हैं क्लॉट बस्टर, वो दवा लगाने से वो क्लॉट को डिसॉल्व करने से 100% रिकवरी हो सकती है। तो ये एक बार एक एम्स की स्टडी में हमने देखा था कि क्यों लोग लेट पहुंचते हैं, जब हम बोल रहे हैं 3 घंटे में आइए, तो सबसे पहला तो कारण था कि मरीज ने आइडेंटिफाई नहीं किया कि लकवा है। हार्ट अटैक को तो एकदम आइडेंटिफाई करे जबकि गलत डायरेक्शन में, लेकिन ब्रेन अटैक को आइडेंटिफाई नहीं कर रहा, वो सोचा किसी कारण से होगा। दूसरा कारण था कि जो सबसे पहले जिस कॉन्टेक्ट लोकल फिजिशियन या जिससे बात करी, उनका ठीक हो जाएगा वो उस, अब तो खैर बहुत अवेयरनेस बढ़ गई है, पुरानी स्टडी है, तो वो सेकेंड फैक्टर था। तीसरा मेजर फैक्टर था ट्रांसपोर्ट। वो बड़े हॉस्पिटल पहुंचने के चक्कर में 2 घंटे ट्रैफिक में रहे, तो जो प्रीशियस टाइम हमारा 3 घंटे का था वो वेस्ट हो गया। तो आई वुड से कि आप सबसे पहले जो रीजनेबली अच्छा हॉस्पिटल है आपके वहां जाइए और डॉक्टर बताइए कि हमको लकवा हो गया। फोन से बता सकते हैं तो पहले ही बता दीजिए, जिससे वो डॉक्टर सीटी स्कैन या MRI करने के लिए तैयार रहेंगे, और सीटी स्कैन में जैसे ही या MRI भी पता चलेगा कि आपको ये क्लॉट वाला लकवा है, तो आपकी दवा वहीं शुरू हो जाएगी। और वहीं शुरू हो जाएगी तो विदिन 3, अब तो आजकल 4.5 घंटे तक भी हम दवा लगाते हैं, तो क्लॉट डिसॉल्व हो जाएगा, तो आपका लकवा पूरा ठीक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं।
0: तो कुछ ऐसा भी है कि वो घर पे कर सकते हो?

0: कि मतलब इमीडिएटली घर पे क्या ट्रीटमेंट कुछ दे सकते हैं कि इतना मील वाइज हॉस्पिटल पहुंचे?
1: नहीं, ये सवाल आपका ऐसा है कि जो लोग क्या फर्स्ट्रेट कर ले
0: exactly.
1: लेकिन क्या है कि ब्रेन में हेमरेज हुआ है या क्लॉट बन गया ये हमको पता नहीं होता। अगर हम वो दवा दे दें जो क्लॉट में काम करती है तो हेमरेज बढ़ा सकती है, तो ये ऐसा कुछ करना नहीं चाहिए। तो सबसे पहले एक सीटी स्कैन हमारा ही करते हैं जिससे एकदम पता चल जाता है कि ब्रेन में हेमरेज हो गया है या क्लॉट हो गया है, जिससे हम डिफरेंशिएट कर पाएंगे उसका इलाज आगे ले जाएंगे। तो एक तो बात करी हमने स्ट्रोक की, दूसरा होता है एपिलेप्सी कि मिर्गी के दौरे, तो मिर्गी भी ब्रेन से आती है। तो मिर्गी लोग समझते हैं कि सिर्फ बेहोश होकर गिरना ही मिर्गी है, ऐसा नहीं है। मिर्गी बहुत तरह की होती है। एक होती है जो क्लासिकली हम जानते हैं कि चारों हाथ पर अकड़ने लगते हैं, आंखें ऊपर चढ़ जाती हैं, मुंह से झाग आने लगता है, गर्दन एक तरफ टेढ़ी होती है, झटके मारता है, जो करीब 30 सेकंड से 2 मिनट तक होता है, फिर धीरे धीरे आदमी बेहोश हो जाता है, लंबी लंबी सांस लेता है, तो हम समझ जाते हैं इनको मिर्गी के दौरे पड़े। कभी कभी आदमी बेहोश नहीं होता है, सिर्फ हाथ में झटका आ रहा है लगातार, वो भी मिर्गी हो सकती है। कभी हो सकता है एक हाथ या एक पैर में सुनपन आ रहा है और चला जा रहा है, सुनपन आ रहा है और चला जा रहा है, वो भी मिर्गी हो सकती है। कई बार अचानक चेंज इन बिहेवियर जिसको हम साइकिक सीजर बोलते हैं, वो भी मिर्गी हो सकती है। तो ये डिपेंड करता है, इवन मिर्गी तो एज सिंपल एज ऐसी भी हो सकती है कि हालांकि लोग बड़े कंफ्यूज रहेंगे कि अगर आपके पेट में ऐसा लग रहा है कि अचानक घबराहट सी हो रही है पेट में या अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन आदमी फिर बेहोश जैसा हो रहा है, क्योंकि पेट में अच्छा नहीं लग रहा है तो हर आदमी को होता है
0: जी।
1: लेकिन उसके बाद आदमी बेहोश नहीं हो जाता या कंफ्यूज नहीं हो जाता, तो वो भी एक मिर्गी का लक्षण हो सकता है। तीसरा होता है इन्फेक्शन, ब्रेन में इन्फेक्शन जो हम कॉमनली जानते हैं, ब्रेन में मेनिंजाइटिस हो जाता है या वायरल इंसेफेलाइटिस हो जाता है। अब तीसरी जो नई चीज पिछले 10 साल में हम ज्यादा आइडेंटिफाई करने लगे हैं वो ऑटो इम्यून इंसेफेलाइटिस। वो क्या होता है कि जैसे नॉर्मली कोई भी बॉडी में अगर जो केमिकल या सब्सटेंस जाएगा उसके अगेंस्ट में एंटीबॉडी बन जाती है, इसमें ऑटो एंटीबॉडीज का मतलब होता है हमारे ब्रेन के कॉमन सेल्स के अगेंस्ट में एंटीबॉडी बनने लगती है जो नहीं बननी चाहिए, और वो उस ऑर्गन को डैमेज करने लगती है जो कि शरीर बॉडी के किसी भी पार्ट में हो सकती है, और जो ब्रेन में होगी तो उसको हम ऑटोइम्यून इंसेफेलाइटिस बोलते हैं। तो ये भी एक तरह की बीमारी हो सकती है। ट्यूमर एक और बात है, जैसे बॉडी में कहीं भी ट्यूमर हो सकता है ऐसे ब्रेन में भी कहीं भी ट्यूमर हो सकता है, वो ब्रेन की झिल्ली की वजह से हो सकता है, ब्रेन के मटेरियल की वजह से हो सकता है। तो कुछ ट्यूमर तो ऐसे होते हैं जो हम बोलते हैं इतने खतरनाक नहीं है, जैसे मेनिन्जियोमा होता है, वो जनरली स्लोली बढ़ते हैं, कुछ परसेंट वो मेलिग्नेंट हो सकते हैं, मतलब बहुत तेजी से बढ़ सकते हैं और प्रॉब्लम कर सकते हैं। एक होता है जिसको हम बोलते हैं, जो हम ग्लायोमा के नाम से जानते हैं, वो जो हेल्थ के बारे में पढ़ते हैं उस इस बात को अच्छी तरह से समझेंगे। तो जो ग्लायोमा ट्यूमर होता है उसमें ग्रेड होता है, जब ग्रेड 1 होता है तो हम मान के चलते हैं कि आदमी की 10 साल सर्वाइवल तो अच्छा होगा, ग्रेड 2 और ग्रेड 3 होते हैं तो मानते हैं 5 से 8 साल या 10 साल की सर्वाइवल अच्छा होगा। एक होता है जो ग्रेड 4 होता है, ग्रेड 4 ऐसा है कि एक तो वो दिखने में ऐसा होता है कि एक जगह नहीं होता, वो जैसे पानी बह जाता है उस तरह से ब्रेन के कैंसर वाले सेल ब्रेन के अंदर घुस जाते हैं और वो बहुत रैपिडली बढ़ता है। और कई बार हमने देखा कि जब तक हम उसके पहले सिम्टम से, उसका सबसे कॉमन सिम्टम होता है मिर्गी के दौरे पड़ने लगते हैं, तो कई बार 1-2 दौरे पड़ते हैं लोग इलाज कराने नहीं जाते। इसलिए मतलब कभी भी दौरा पड़े तो ब्रेन का एक सीटी स्कैन हमारे जरूर होना चाहिए, उससे एकदम पता चल जाएगा। तो प्रीशियस टाइम 2 महीने निकाल दिया।

0: जब तक आप, और उसका दूसरा बात है जो मैंने देखा है कि हमारे पुलिस ऑफिसर्स वीडियो बनाते हैं, हेलमेट पहनते हैं लेकिन उसको हुक नहीं लगाते हैं।
1: जी बिल्कुल, हमें प्रिकॉशन जरूर लेना चाहिए। अगर कभी भी हम बाइक या कुछ भी ऐसे राइड करें तो हेलमेट जरूर पहनना चाहिए। रेडियो डॉक्टर में आज हम बात कर रहे हैं ट्रीटमेंट ऑफ न्यूरोलॉजिकल डिजीजेस पर। बातें हम और भी करेंगे डॉक्टर साहब से, लेकिन उससे पहले सुनते हैं एक प्यारा सा गीत।

0: डॉक्टर, में आज हम बात कर रहे हैं ट्रीटमेंट ऑफ न्यूरोलॉजिकल डिजीजेस पर। हमारे पास एक मैसेज है, ये है, लिखते हैं, आई एम सागर फ्रॉम विजयपुरा कर्नाटका। आई एम 26 इयर्स ओल्ड। आई फॉरगॉट मेनी थिंग्स, इवन स्मॉल थिंग्स विच वर टोल्ड अ मिनट एगो। आई फॉरगेट मेनी थिंग्स लाइक स्विचिंग ऑफ व्हीकल आफ्टर पार्किंग, टर्निंग ऑफ गैस स्टोव एक्सेट्रा। इज इट सीरियस? व्हाट कैन बी डन?
1: ये जो सागर, 26 साल के सागर साहब ने जो सवाल पूछा है, ये जनता का सवाल है ये तो, क्योंकि ये बड़ा कॉमन हो रहा है। अभी क्या हो रहा है कि हर आदमी मल्टीटास्किंग कर रहा है। आदमी मोटरसाइकिल पे भी चला रहा है तो मोबाइल भी कान में लगा हुआ है और दूसरे काम भी कर रहा है। तो जब भी हम मल्टीटास्किंग करते हैं तो आपकी, जैसे मैं उसको इस तरह समझाता हूँ, हमारी रैम होती है, क्या 8 GB में रैम है, 16 GB रैम है, उसकी एक कैपेसिटी आप कितना काम कर सकते हो। लेकिन हम उसके ऊपर 20 ऐप खोल के बैठ गए, जब हम 20 ऐप खोल के बैठ जाएंगे तो रैम स्लो हो जाएगी। ये कुछ कुछ ऐसा ही हमारे साथ हो रहा है। जब हम मल्टीटास्क, एक तरफ तो आप सोच रहे हैं ऑफिस के बारे में,
0: काम कुछ कर रहे हैं, सोच कुछ और रहे हैं,
1: कुछ ऑफिस में काम कर रहे हैं, बॉस ने टारगेट दे रखा है वो भी चल रहा है, घर में वाइफ ने एजेंडा दे रखा
0: है, उसके बाद क्या करना है,
1: उसके बाद क्या करना है। तो जब आप मल्टीपल चीजें सोच रहे हो तो

0: उसके बीच में कोई आपको ये बता के चला गया कि ये फोन नंबर पे बात कर लेना, तो आप दो मिनट बाद सोचेंगे ये कौन सा फोन नंबर था। तो ये हमारी मेमोरी की दिक्कत नहीं है, ये हमारे वर्किंग स्टाइल की दिक्कत है। तो इनको सागर साहब को भी ये कहूंगा कि जब भी कोई इम्पोर्टेंट बात है थोड़ा सा उसके ऊपर कंसंट्रेशन करें। जब भी कह रहे जो गाड़ी जो ऑफ करना भूल गए, क्योंकि आप जब उतरे तो आपको सोचते हुए उतर गए तो ध्यान नहीं रहेगा गाड़ी की ऑफ करनी थी, तो अटेंशन उस टाइम कितना आपका है उसकी वजह से। उसके लिए मैं कुछ हद तक आज के एनवायरमेंट को भी मैं ब्लेम करता हूं, वो भी मैंने एक रेडियो प्रोग्राम में और भी कहीं कहा था कि आज से पहले हम टीवी देखते थे, आधा घंटे का प्रोग्राम देखते थे, सीरियल देखते थे पौन घंटे का देखते थे, आज क्या देखते हैं 15 सेकंड की रील। कोई प्रोग्राम अगर जो 2 मिनट का अगर जो हो तो हम देखते नहीं, उसको फॉरवर्ड करते, तो हमारा अटेंशन स्पान इतना छोटा होता जा रहा है। जो चाहिए हमको फास्ट चाहिए, अभी चाहिए, 1 सेकंड में चाहिए। कोई बात भी कर रहा है तो लंबी बात करने वाला कोई लाइक नहीं कर रहा है। तो जब आप सब कुछ शॉर्ट शॉर्ट शॉर्ट करे जा रहे हैं तो वो आपके माइंड में घुस ही नहीं पा रही है वो बात। यही बात हो रहा है कि वो रजिस्टर नहीं हो रही है। आपको हियरिंग ठीक है, आपने बात सुनी भी, आपको याद है, लेकिन क्या सुनी वो, क्योंकि रजिस्टर नहीं हुई वो। तो वो जब तक रजिस्टर नहीं होगी तो मेमोरी में नहीं जाएगी वो, तो आपको रिकॉल नहीं कर पाएंगे। तो ये कोई सीरियस बात नहीं है, बड़ी आम कंप्लेन है। तो पहले तो अपने आप को थोड़ा सा लाइफ स्टाइल चेंज कर लें, मन को शांत रखें, इम्पोर्टेंट चीजों पे थोड़ा सा तवज्जो ज्यादा दें, जिससे कि वो आप चीजों भूल ना जाएं और आपके जहन में ध्यान रहेगा।
1: एक और मैसेज है हमारे पास, ये लिखते हैं, प्रणाम मैम, प्रणाम सर, माय फादर हैज इस्केमिक स्ट्रोक ऑन 23rd Jan 2026, नाउ ही हैज लिटिल बिट फ्रोजन लेफ्ट शोल्डर, स्लो वॉकिंग इश्यूज, व्हाट कैन बी डन, प्लीज टेल।
0: जैसे जनवरी में मतलब 5-6 महीने हो चुके हैं, जैसे कि हमने पहले बात करी कि लकवा मतलब एक तरफ जो है एक हाथ या पैर नहीं चलता है। अभी डिपेंड करता है कितना सीवियर पावर, जैसे इनकी बातों से लग रहा है कि बहुत अच्छा खासा डेफिसिट रहा होगा। जब भी लकवा हो जाता है तो 2 बातों का ध्यान रखना जरूरी है। पहले तो जिस कारण से लकवा हुआ उसके लिए इलाज करें। इस्केमिक स्ट्रोक में जनरली हम खून पतला करने की दवाई देते हैं, तो वो रेगुलर लेनी है। अब ये क्या हो रहा है, ये उस लकवे का कॉम्प्लिकेशन है, क्योंकि हाथ चल नहीं रहा था और एडिक्वेट एक्सरसाइज नहीं होगी तो कोई भी जॉइंट है वो फ्रीज हो जाएगा, जिसको हम फ्रोजन शोल्डर बोलते हैं। यही हाथ में होता है, यही पैर में होता है। पैर में एक और चीज होती है कि पैर में स्टिफनेस बहुत आ जाती है, हाथ में भी स्टिफनेस बहुत आ जाती है। अपने न्यूरोलॉजिस्ट से डिस्कस करिए कि क्या इस स्टिफनेस को कम करने के लिए दवाई इंजेक्शन लगा सकते हैं। एक बोटुलिनम टॉक्सिन इंजेक्शन आता है, जो मसल बहुत स्टिफ होती है उसको लगा के उसको थोड़ा सा सॉफ्ट कर देते हैं, तो आदमी का चलना और हाथ का पोस्चर बेटर हो जाता है।
1: एक कॉलर हमारे साथ लाइन पर, हेलो।
2: हाँ, रघुवीर जी बोल रहे हैं उत्तराखंड।
0: हाँ जी नमस्कार।
1: हाँ जी नमस्कार, बताइए आपका क्या प्रश्न है।
2: जैसे एक्सरसाइज करते समय गर्दन को हल्का सा मोड़ते हैं ना, तो कट की आवाज आती है गर्दन को मोड़ते समय। दूसरी बात यह है कि मेरा आंख का ऑपरेशन हो चुका है
0: जी,
2: तो क्या वो नस से, दिमाग के नस से, क्या आंख से, आंख के नस से कुछ इफेक्ट पड़ा होगा?
0: नहीं, आंख का किस चीज का ऑपरेशन हुआ आपका?
2: आंख का ऑपरेशन
0: कैटरेक्ट का ना? नहीं, कैटरेक्ट तो जो लेंस होता है वो ओपेक हो जाता है, लेंस ट्रांसपेरेंट होता है, ओपेक हो जाता है, उसको इंस्ट्रूमेंट से निकाल के दूसरा लेंस डालते हैं, बड़ा सिंपल सा है। तो इसमें 99.9% कोई कॉम्प्लिकेशन होने के चांसेस नहीं है। और मैंने जो आपने सवाल पूछा उससे मुझे याद आ रहा है कि एक पेशेंट का ऑपरेशन हुआ, 2 दिन बाद उसको ब्रेन हेमरेज हो गया। उसका कारण ये था कि क्योंकि ऑपरेशन करने जाए उनको एंग्जाइटी होती है, टेंशन होती है, तो उनका ब्लड प्रेशर बहुत हाई हो गया। ऑपरेशन हुआ तब तक तो सब कुछ ठीक था, उस टेंशन में उनका बीपी बढ़ गया, उनको ब्रेन हेमरेज हो गया। तो ये आंख की वजह से नहीं हुआ, ऑपरेशन की वजह से नहीं हुआ। तो आपका ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज है या और दूसरी स्थिति को आप कंट्रोल कर लें। रही बात गर्दन में कटकट की, तो कटकट जो मसल्स और टेंडन जो बोन से टकराते हैं वो कटकट की आवाज आती है। तो ये कोई बीमारी नहीं है, ये बड़ा नॉर्मल सा फिनोमेना है। लेकिन अगर जो आवाज आती है तो उसको बार बार करके उस हिस्से को आप मतलब उसको फ्रिक्शन करने की जरूरत नहीं है। नॉर्मल एक्सरसाइज करिए और अपने फिजियोथेरेपिस्ट से समझ लीजिए कि कहीं एक्सरसाइज आप गलत तो नहीं कर रहे हैं। दूसरी बात श्रोताओं को बताऊं, क्योंकि इंसान ने जो सवाल पूछा उससे रिलेटेड ही है, कुछ लोगों की आदत होती है गर्दन में झटका मारने की, ऐसे हाथ से पकड़ गर्दन एक तरफ मोड़ते हैं फिर दूसरी तरफ मोड़ते हैं या रोटेट करते हैं। ये कभी भी करना नहीं चाहिए। उसका कारण ये है, स्पेशली जब बाल कटवाने जाते हैं तो जो बार्बर लोग होते हैं उस सिर के मालिश के साथ साथ गर्दन में झटका लगाते हैं, वो अच्छा लगता है जिसको लगा रहे हैं। लेकिन उसका जो सबसे सीरियस कॉम्प्लिकेशन मैंने देखा है कि हमारे गर्दन में दोनों तरफ जो बड़ी बड़ी 2 नसें होती हैं, 4 नसें होती हैं, उनमें से एक नस कभी कभी फट जाती है उसकी वजह से। और कभी कभी इमीडिएट लकवा नहीं होता है, वो फट जाती है, उसमें जब थ्रोम्बोस बनता है अगले 1 या 2 दिन या 1 हफ्ते में फिर जाके लकवा होता है। तो ऐसी बातों को अवॉइड करना चाहिए और ये इस तरह की प्रैक्टिस नहीं करनी चाहिए। एक और बात मैं बहुत कॉमनली देखता हूँ, बच्चे जो है कान में मोबाइल लगा के गर्दन और कंधा मोड़ के और मोटरसाइकिल चलाते रहते हैं। उसके लिए मैं आपको एक ऐसा इंसिडेंस बताता हूँ जिससे शायद हमारे श्रोतागण समझ जाएंगे ये कितना सीरियस हो सकता है। एक यंग लड़का था, वो अपने किसी परिवार वाले से रात को

0: 12 बजे से सुबह 4 बजे तक फोन पे रात में लेटे लेटे ऐसे गर्दन मोड़ के और कंधे पे मोबाइल रख के उसने बात करी और सो गया। फिर सुबह जब उठा तो उसको लेफ्ट साइड में पूरा लकवा हो गया था। क्यों? कि जब वो इस पोस्चर में रहा तो उस मोबाइल की पोस्चर की वजह से उसकी राइट साइड की नस दब गई, जो उसको उस टाइम महसूस नहीं हुई, और वो हल्की सी उसमें क्रैक आ गया, उसमें क्लॉट बन गया रात में, और सुबह लकवा हो गया। तो ये पोस्चर भी कई बार कितना खतरनाक हो सकता है, तो इसका भी हमको ध्यान रखना चाहिए।
1: जी, आपने स्ट्रोक की बात करी थी, तो स्ट्रोक क्या है और इसके शुरुआती लक्षण क्या होते हैं या इंडिकेटर्स क्या हैं?
0: स्ट्रोक की हमने बात करी थी। जैसे हमने बताया कि स्ट्रोक दो तरीके से हो सकता है। एक तो या तो ब्रेन के एक हिस्से में ब्लड सप्लाई बंद हो गया, तो किस हिस्से में ब्लड सप्लाई बने उससे डिपेंड करेगा, तो उसके या वह दूसरा कि वो नस फट गई, जो मैंने बताया कि ब्लड प्रेशर हाई होने की वजह से नस फट गई। ऐसी स्थिति में चार पांच चीजें को सिम्टम जो होते हैं, पहला होता है कि आपको एक राइट साइड में या लेफ्ट साइड में हाथ या पैर कम चलने लगे अचानक। दूसरा होता है कि आपकी आवाज या तो बंद हो जाए या लड़खड़ा जाए या आपको लगे आवाज ठीक नहीं है। तीसरा होता है कि जब आप चलते हैं तो आपका चलने का बैलेंस खराब होने लगे अचानक। तो आपको सोचना है क्या ये लकवा है। तो ऐसा हम बोलते हैं कि अगर ऐसा आपको डाउट होता है तो आपको इमीडिएटली हॉस्पिटल पहुंचना चाहिए, जिसके बारे में हमने बात करी कि विद इन 3 आवर्स आप पहुंच जाएंगे तो चांसेस है कि उसको ठीक करने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे।
1: कई बार होता है कुछ ऐसे इंडिकेटर्स होते हैं, हम सोचते हैं ऐसे ही हो रहा होगा, हम इतना ध्यान नहीं देते।
0: यही एक प्रॉब्लम है। मैंने जैसे कि पहले बताया प्रोग्राम में कि राइट साइड में चेस्ट पेन होगा तो हम सोचते हैं हार्ट अटैक,
1: लेकिन कई बार लेफ्ट में भी होता है या वैसे भी होता है, हम सोचते हैं अच्छा गैस का हो रहा होगा।
0: जी जी।
1: तो हम उसमें पानी लेने लगेंगे, कुछ लेने लगेंगे, लेकिन हम ये रियलाइज नहीं कर पाते कि हार्ट के में भी प्रॉब्लम की वजह से ये हो सकता है।
0: उसमें सबसे
1: इम्पोर्टेंट भी कुछ इंडिकेटर्स हैं।
0: उसमें सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर एज है। अगर 25 साल के यंग, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ कि 25 साल में हार्ट अटैक नहीं होता है, पर यंग एज में अगर जो ऐसा सिम्टम हो रहा है तो शायद चांसेस हार्ट अटैक के कम होंगे। लेकिन उम्र दराज अगर जो किसी को हो रहा है तो सबसे सावधान है कि अस्पताल नियरेस्ट हॉस्पिटल में जाके एक ECG कर लें, जो कि बता देगा कि मेजर हार्ट अटैक तो नहीं है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि पहले ECG में नहीं दिखता है, तो लेकिन वो डॉक्टर देख के समझ जाएगा कि ये सिम्टम ठीक नहीं लग रहा है, तो उससे बचाव हो जाएगा।
1: एक और कॉलर है हमारे साथ लाइन पर। हेलो।
2: हाँ जी मैम, नमस्ते डॉक्टर साहब। नमस्ते मैडम।
1: नमस्ते जी, आपका नाम, आप कहाँ से कॉल कर रहे हैं?
2: जी मैम, मेरा नाम राजकुमार यादव है, मैं उत्तर प्रदेश अम्बेडकर नगर डिस्ट्रिक्ट से बोल रहा हूँ मैम।
1: जी बताइए क्या प्रश्न है आपका राजकुमार जी?
2: जी मैम, मेरा भांजा उम्र उसकी 30 वर्ष है, और अभी आज तत्काल घटना, इसके पहले भी ऐसा हो चुका है कि वो अचानक जो है जैसे कहीं पे जाएगा तो इसको एकदम अचेतन अवस्था में आ जाएगा, मुझे कहाँ जाना है, मेरा क्या नाम है, मतलब कुछ भी नहीं बता पाया, कहीं भी चला जाएगा मैम। घर वाले पूरा खोजते हैं, परेशान हो जाते हैं, तो 24 घंटे के बाद पता चला, 2 दिन बाद वो कहीं पे जब उसको वो चेतन अवस्था में आता है तो बताता है कि हाँ मेरा घर यहाँ पर है, मेरे पापा का नाम ये है, मेरा मोबाइल नंबर ये है, मेरे घर पे कॉल कर दीजिए, बता दीजिए। सब लोग पहुँचते हैं, उसको वहाँ से रिसीव करके ले आते हैं, तो मैम हमें कहाँ दिखाना चाहिए, क्या दिक्कत है?
0: तो उनकी मानसिक स्थिति तो वैसे ठीक है ना?
2: जी मानसिक स्थिति
0: ठीक
2: है सर, मानसिक स्थिति ठीक है, पूरा नॉर्मल आदमियों की तरह व्यवहार करते हैं, खाना पीना मतलब व्यवसाय हर चीजें करते हैं, लेकिन ऐसी घटना जो सर बता रहा हूँ ये 5-6 दफा हो चुकी है, उम्र 30 साल है।
0: देखिए उम्र कितनी उनकी?
2: 30 वर्ष।
0: देखिए आपकी बातों से लग रहा है इनको मिर्गी के दौरे पड़ते हैं, जो हम समझते हैं ना। तो मिर्गी के दौरे में, एक तो मिर्गी का दौरा ऐसा होता है जिसमें आदमी के हाथ पे रकड़ जाते हैं, मुंह टेढ़ा हो जाता है, आंखें ऊपर चढ़ जाती हैं, खून से झाग आता है और आदमी बेहोश होकर गिर जाता है, और 2 से 5 मिनट में होश आ जाता है। कई बार क्या होता है, ये मिर्गी के दौरे ब्रेन में लगातार चलते हैं। जब ये मिर्गी के दौरे पर लगातार चलते हैं तो जब थोड़ी देर बाद होश आता है, 10-15 मिनट आधा घंटे बाद, तो उसको ये सब बातें याद नहीं रहेंगी, क्योंकि वो मिर्गी के इतने दूर होने से एक तरह से ब्रेन का फंक्शन रुक जाता है, तो वो कुछ टाइम तक याद नहीं कर पाएगा मैं कहाँ हूँ, कहाँ आया था, क्या हुआ था। तो लोग जवाब पूछेंगे तो लोग समझ जाएंगे ये तो जो है कुछ गड़बड़ाती है, सही जवाब नहीं दे रहा, तो उसको मिसट्रीट भी करते हैं कई बार। लेकिन थोड़ी देर बाद, आधा घंटे बाद, 1 घंटे बाद उसको याद आ जाएगा कि मैं यहाँ पे हूँ और मेरा घर ये है, मेरा एड्रेस है, जैसा कि आपके बेटे के साथ होता है। तो आप किसी भी अच्छे फिजिशियन को दिखाइए, या अगर हो सके तो न्यूरोलॉजिस्ट को दिखाइए, और उनको ये सवाल भी पूछ लीजिए कि रेडियो पर प्रोग्राम में डॉक्टर साहब ने बताया था कि क्या इसको मिर्गी के दौरे तो नहीं है, तो वो उसकी जांच करके उसका जरूर इलाज कर सकते हैं।
1: सर मिर्गी से लेके काफी मिथ्स भी हैं, और इमीडिएटली हमें फर्स्ट एड क्या देना चाहिए इसके बारे में हम आपसे जानेंगे, लेकिन उससे पहले लेते हैं एक प्यारा सा गीत।

0: आप सुन रहे हैं विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर।
1: कहीं दूर जब दिन ढल जाए, कुछ गीत ऐसे होते हैं हम जब भी सुनते हैं मन को सुकून सा महसूस होता है। रेडियो डॉक्टर में आज हम बात कर रहे हैं तांत्रिका संबंधी विकार पर। डॉक्टर साहब, जैसे कि आप अभी बात कर रहे थे मिर्गी के दौरों पर, तो उससे जुड़े मिथ्स भी हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे। लेकिन फिलहाल एक मैसेज है हमारे पास, ये लिखते हैं, सर आई एम विशाल सिंह, मुझे ब्रेन ट्यूमर ग्लियोमा हुआ था। सर्जरी के बाद 10 केमो हुए हैं, MRI में किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं शो करता, बट मेरा दौरा आना कम नहीं हुआ। सर मेरा लाइफस्टाइल ठीक है, आगे कैसे करना है प्लीज गाइड करें।
2: देखिए, ग्लियोमा के हमने बारे में थोड़ी सी बात भी करी थी, आपकी बातों से लग रहा है कि इनको ग्लियोमा का सर्जरी अच्छा हो गया है, कीमोथेरेपी जो हम स्टैंडर्ड देते हैं वो भी मिल गया है और MRI में कोई चेंजेस अब नहीं है, तो ये अच्छी बात है। रही बात कि इनको दौरे पड़ रहे हैं, ब्रेन में कोई भी नुक्स पड़ जाए वो ग्लियोमा टिश्यू की वजह से हो सकता है, ऑपरेशन के स्कार की वजह से हो सकता है, चोट की वजह से हो सकता है, तो दौरे आना जो है वो एक अलग बात है। तो इनसे आपसे ये अनुरोध है कि आप अपने डॉक्टर को जाके बताएं कि आपको दौरे आए तो आपकी दवा की मात्रा बढ़ानी पड़ेगी। कभी कभी आपकी दवा की मात्रा कम होने की वजह से दौरे आ सकते हैं, या एक या दो या तीन दवा भी देनी पड़ सकती है,

0: इसमें इतनी चिंता की बात मुझे अभी नहीं लग रही है। अगर जो आप डॉक्टर से डिस्कस करेंगे तो आपकी दवा की मात्रा बढ़ाकर या जरूर पड़ने पर एक या दो और दवा ऐड कर आपके दौरों को कंट्रोल कर सकते हैं। फिर भी ऐसा कभी ऐसी स्थिति होती है कि चार दवा देने के बावजूद बहुत दौरे पड़ रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में न्यूरोसर्जन दोबारा सोचते हैं कि जिस हिस्से से दौरे पड़ रहे हैं तो ईजी करके या वीडियो ईजी करके उस हिस्से को रिकॉर्ड कर लेते हैं कि कहां से दौरे पड़ रहे हैं, तो उस टिश्यू को भी निकाल के हम ऑपरेशन करके भी उसको ठीक कर सकते हैं। तो ये पहले तो मुझे लगता है हमको दवा की मात्रा बढ़ा के ही एक बार ट्राई करना पड़ेगा।
1: एक कॉलर है हमारे साथ लाइन पर। हेलो।
2: हेलो, नमस्कार गुप्ता मैम।
1: नमस्कार जी, आपका नाम, आप कहाँ से कॉल कर रहे हैं?
2: डॉक्टर साहब को भी नमस्ते, मैं उत्तराखंड से बोल रहा हूँ, रघुवीर सिंह ठाकुर
1: जी। बताइए क्या प्रश्न है आपका?
2: मेरा प्रश्न ये है कि जैसे नींद में झटके आते हैं ना किसी किसी में, जैसे हमारी फैमिली का भी है, तो जैसे एकदम सोते जैसे नींद आ जाती है तो हाथ एकदम झटका जैसे करंट लग गया हो, तो कभी कभी होता था सर, ये कैसे क्यों होता होगा सर, बताएंगे डॉक्टर
0: जी। देखिए नींद में जनरली या तो छोटे बच्चों में ऐसा फिनोमेना ज्यादा होता है कि नींद में झटके आते हैं, जब आप स्ट्रेसफुल स्लीप होगी आपकी तो ऐसे झटके आ सकते हैं। तो बोलते हैं इसको बोलते हैं स्लीप हाइजीन, कि आप जो है जब भी सोने जाएं तो आपका एनवायरनमेंट ऐसा हो कि लाइट कम हो या अंधेरा हो, रूम का टेम्परेचर ऐसा एम्बियंट हो कि आपको ठंड ना लगे या सर्दी ना लगे, आप एडिक्वेट कपड़े पहन के सो रहे हैं, पोस्चर आपका ठीक हो, बिस्तर नीट एंड क्लीन हो, तो ये स्लीप हाइजीन जब भी आपका अच्छा होगा तो ठीक रहेगा। दूसरा मन की स्थिति, आप स्ट्रेसफुल हैं और कुछ सोच रहे हैं, बहुत गंभीर बारे में सोच रहे हैं, तो आपको ऐसे झटके आ सकते हैं। तीसरी बात, कुछ एक दो तरह के झटके भी होते हैं। एक होते हैं जब हम सोने जाते हैं तो शुरुआत में जैसे ही हल्की नींद आई एक झटका आ जाता है, वो स्लीप ऑनसेट जो होते हैं जर्क। एक होते हैं जब सुबह जगने वाले होते हैं, तो उस टाइम भी ऐसे यही सेम फिनोमेना हो सकता है। तो आप अपने डॉक्टर से डिस्कस करिए, अगर जब बहुत ज्यादा झटके आ रहे हैं तो छोटी सी एक दवा देके उन झटकों को हम कंट्रोल कर सकते हैं। और लेकिन दूसरी बात और भी है, कभी कभी ये झटके दूसरी बीमारी ब्रेन के होने के कारण भी होते हैं, तो जब वो डॉक्टर साहब से बात करेंगे जरूर पड़ेगी तो सीटी स्कैन या एमआरआई या ईईजी करेंगे, तो उसे ये पता चल जाएगा कि एक तो ये एपिलेप्सी के दौरे नहीं है और क्या दूसरी बीमारी के कारण ऐसे झटके तो नहीं आ रहे। तो झटके तो बड़े सिंपल चीज है, लेकिन वो बीमारी ब्रेन में कुछ और है जिसकी वजह से झटके आ रहे हैं। तो एक बार अपने डॉक्टर साहब से बात करके इस बात को क्लियर कर लीजिए।
1: एक और कॉलर है हमारे साथ लाइन पर। हेलो।
3: हेलो, नमस्कार आप दोनों को।
1: नमस्कार जी, आपका नाम, आप कहाँ से कॉल कर रही हैं?
3: मैं सपना बात कर रही हूँ, दिल्ली से।
1: जी बताइए क्या प्रश्न है आपका?
3: हाँ जी, मुझे डॉक्टर साहब से पूछना था कि मुझे करीबन 6-7 साल पहले से पैर के नीचे में दर्द होता था, कौन से वहाँ पर, उसके कारण से फिर मुझे ऐसा लगा मुझे पूरी टांग में दर्द होने लगा और मैंने काफी उसको ट्रीटमेंट लिया, विटामिन B12 भी मैं खाती रहती हूँ, मल्टी विटामिन भी मैंने काफी लिए, मगर मेरी टांग के दर्द की कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हुई। और अभी लेटेस्ट मुझे फ्रोजन शोल्डर पहले एक बाजू में था और अभी तो मुझे कुछ अजीब सा दूसरी बाजू में भी है, इन द सेंस कि मैं जैसे प्लेट पकड़ के खड़ी होती हूँ थोड़ी देर तक, खड़ी मतलब बैठ के जब भी मैं कुछ खा रही हूँ प्लेट अगर मैंने पकड़ी हुई है तो बाजू को सीधा करना बहुत मुश्किल हो जाता है, अकड़ सी जाती
0: है। मैडम आपको डायबिटीज है?
3: नहीं, डायबिटीज
0: फैमिली में डायबिटीज है,
3: टाइप 2 था मेरे पेरेंट्स को।
0: तो आप अपनी ब्लड शुगर रेगुलर चेक करें जरूर जरूर से, क्योंकि कभी ऐसे दिखा है जिन लोगों की डायबिटीज की टेंडेंसी हो फैमिली में, वो आगे जाके डायबिटीज होने वाली हो, उनको भी फ्रोजन शोल्डर हो सकता है। तो जो शोल्डर की बात करें उसका तो सबसे अच्छा इलाज है कि डॉक्टर से बात करके एक्सरसाइज सीखिए, सिखाई करिए और रेगुलर जब आप एक्सरसाइज करेंगे तो 3 से 6 महीने एक्सरसाइज करने के बाद आपका फ्रोजन शोल्डर अच्छा होगा, 2-5 दिन में उससे आराम नहीं आएगा, एक बात। दूसरी बात, जो आपने पैर में कॉर्न बताया वो तो आपको स्किन स्पेशलिस्ट को या फिर सर्जन को दिखा के देखना पड़ेगा कि बहुत ज्यादा कुछ कॉर्न के पैच आते हैं अलग अलग, वो लगा सकते हैं, या फिर बहुत डीप हो तो उसको सर्जिकली पैरों से निकालना पड़ता है। आपने एक जो इम्पोर्टेंट बात बताई कि आपके पैरों में दर्द होता है, पैरों में दर्द जो होता है एक बीमारी होती है जिसको बोलते हैं रेस्टलेस लेग सिंड्रोम। ये क्लासिकली ऐसा होता है कि जब हम रात को सोने जाते हैं तब पैरों में दर्द होता है, लेकिन कुछ लोगों को ये दर्द दिन में भी होने लगता है और कुछ लोगों को तो सारा दिन रहता है, लेकिन रात के टाइम पे ये ज्यादा तकलीफ देता है। रात को मान लो थोड़ी देर सो गए फिर उठे फिर नींद नहीं आएगी क्योंकि पैरों में दर्द हो रहा है। ये बड़ी ऐसी अजीब सी बीमारी है जिसका कोई टेस्ट नहीं है जिसको हम करके बता दें कि ये RLS है। ये आपके डॉक्टर, कोई भी अच्छा डॉक्टर आपको देखेगा तो एक मिनट में आपके सिम्टम्स उनके समझ जाएगा। उसकी पहचान ये है कि अगर जो आप पैर दबाएं, कोई आपके पैर दबा दे तो आपको अच्छा लगने लग गया। जब मैं ये कह रहा हूं तो आप कहेंगे हमारे घर में नानी दादी मामी, मतलब कुछ लोगों को आदत होती है कि रात को सोने से पहले पैर दबाते हैं तभी उनको नींद आती है, ये वही RLS है उनको भी, और ये फैमिली में रन करता है तो समझ आ जाता है कि आपके परिवार में किसी को बीमारी थी तो वो आपको भी है। दूसरी बात, जिस दिन आप बहुत ज्यादा थक जाएंगे उस दिन ऐसा होगा, तो हो सके तो सोने से पहले पैरों को गर्म पानी में, मतलब शॉवर चला के गर्म पानी से वो कर लें, या फुट मसाजर जो आते हैं मार्केट में 10 मिनट वो कर लें, या जो क्या बोलते हैं बहुत सारे आसन होते हैं जिसमें पैर को मोड़कर हम बैठते हैं, जैसे हम नमाज पढ़ते हैं जो आसन क्या होता है उसको मेरे को नाम ध्यान नहीं आ रहा है, लेकिन जो वो जो पॉस्चर है उसमें अगर जो बैठेंगे आप तो उससे जो काफ मसल्स हैं वो प्रेस हो जाएंगी, उससे भी एकदम आराम मिलता है। तो कुछ ऐसी छोटी छोटी बातें करने से, और आपके डॉक्टर को एक बार दिखाएं तो उसके लिए कुछ जांच भी करते हैं कि आपका कई बार आयरन लेवल कम हो तब भी ऐसा होता है। आपने बोला B12 तो ठीक है, लेकिन आयरन की भी जांच करा लें। और डॉक्टर साहब तो बोलिए क्या RLS बोलते हैं रेस्टलेस लेग सिंड्रोम, कि क्या ये वो बीमारी तो नहीं है? अगर जो ऐसी बीमारी है तो उसकी एक छोटी सी दवा देते हैं जो खाने के एक घंटे पहले लेने से आपको इसमें तकलीफ में आराम मिल जाएगा।
1: डॉक्टर साहब जैसे कि अभी अपने टेस्ट की बात करी, तो क्या कुछ ऐसे टेस्ट हैं जिससे कि हम न्यूरोलॉजिकल समस्याओं के बारे में पहले ही पता लगा सके?
0: देखिए ये सवाल तो आपने ऐसा पूछ लिया है जैसे कि रामबाण दवा जैसा, कि कोई एक ऐसा टेस्ट हो जाए जिससे हम सारी बीमारी पता चले, तो अनफॉर्चुनेटली ऐसा कोई टेस्ट नहीं है। ये डिपेंड करता है कि जैसे ब्रेन का है तो CT स्कैन करते हैं, MRI करते हैं, EEG करते हैं, जिससे कॉमनली सारी बीमारियों के, और बहुत सारे एडवांस पेट स्कैन आ गया है। पेट स्कैन में अलग अलग एब्डोपाए अलग अलग टाइप के स्कैन आ गए हैं। जब हम स्पाइनल कॉर्ड की बात करते हैं तो स्पाइनल कॉर्ड का सबसे आसान तरीका तो जनरली MRI करके उससे पता चल जाता है। जब हम न्यूरोपैथी की बात करें तो न्यूरोपैथी के लिए नर्व कंडक्शन स्टडी बोलते हैं, उसमें साथ में EMG करने की जरूरत है या नहीं वो अलग बात है, तो उससे पता चल जाता है। मायोपैथी होता है तो उसमें EMG करके हम देखते हैं कि मसल की जो है किस टाइप का मसल इन्वॉल्वमेंट है, उससे वो पता चल जाता है, या जरूर पड़ने पर एक स्किन से इंसिजन लगा के मसल का टुकड़ा लेके भी हम जांच करते हैं। तो ये तो है हमारे कॉमन टेस्ट। बीच में अपने बात करी थी एपिलेप्सी की, एपिलेप्सी के लिए MRI करते हैं, आजकल इतनी सारी एंटीबॉडी आ गई वो हम चेक करके देखते हैं, तो उससे भी पता चलता
1: है। एपिलेप्सी से लेकर कई बार लोगों के उसमें मिथ भी है कि अगर किसी को ये अटैक हुआ है, मिर्गी का दौरा पड़ा है, तो जुराब सुंगा दो या चम्मच डाल दो कुछ ऐसा, तो क्या करना चाहिए, फर्स्ट एड क्या देना चाहिए?
0: आई थिंक ये सवाल तो हमको पहले भी डिस्कस कर लेना चाहिए था पब्लिक के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि एपिलेप्सी पहले बात तो ये समझना चाहिए कि एकदम जानलेवा नहीं होती है आपको, लेकिन भयानक जरूर दिखती है। तो जिसको पहली बार होती है उसके परिवार वाले भी डर जाते हैं, देखने वाले भी डरते हैं। तो जब किसी को भी अगर जो एपिलेप्सी का दौरा पड़ रहा है तो 3-4 बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहले तो उसको देखिए उसका सांस बराबर आ रहा है तो कपड़े ढीले कर दें। दूसरा उसको 90 डिग्री करवट दिला दें, दोनों हाथ पर पकड़ के एक तरफ करवट दिला दें, और 2 से 5 मिनट में वो दौरा अपने आप ठीक हो जाएगा। जस्ट ये वॉच करना है कि ही इज ब्रीदिंग वेल। तीसरी बात बड़ी कॉमन जो आपने बोला कि लोग क्या करते हैं, जूता सुंघाते हैं, ये सब करने का कोई फायदा नहीं है। आई थिंक जब तक आप जूता डलाते हो या मोजा उतारते हो तब तक वो दौरा ठीक ही हो जाता है, तो लोग समझते हैं कि मोजा सुंघाने से ठीक हो गया। लेकिन जो आपने बात बताई कि मुंह में चम्मच डालना या उंगली डालना, ये बड़ा खतरनाक है। क्या होता है कि कभी कभी ऐसी स्थिति में जब दौरा शुरू होता है तो दांत भिजते हैं, उसके बीच में जीभ आ जाती है और वो जीभ कट जाती है, तो लोगों को लग रहा है उस जीभ को बचाने के लिए वो चम्मच डाल देते हैं। होता क्या, वो जबड़ा इतना जोर से टूटता है कि जीभ तो बचे ना बचे उनके दांत जरूर टूट जाते हैं। ऐसे ही कुछ लोग अपनी उंगली डाल देते हैं, तो मैंने ऐसे केसेस देखे हैं जिसमें उंगली लिटरली उनकी कट जाती है, क्योंकि जबड़े का फोर्स बहुत स्ट्रांग होता है। तो ऐसा करने की जरूरत नहीं है। अगर जो किसी की जीभ कटनी है तो वो, और जब तक आप कोई भी उपाय करते हैं तब तक वो कट चुकी होती है, और वो जो आप देखते हैं आपको देखने में डर लगता है, लेकिन जैसा मैंने बताया 2 मिनट करवट दिला के देखिए कि सांस आ रहा है, और गर्दन को थोड़ा नीचे की तरफ कर दें तो मुंह में जो भी लार बनी है या सलाइवा आ रहा है वो निकल जाएगा, वो लंग में नहीं जाएगा, और देखिए कि 2 से 5 मिनट में होश आ जाएगा। एक बार अगर जो 2 से 5 मिनट में होश नहीं आता तो जरूर हॉस्पिटल जाइए। कभी कभी क्या होता है, पेशेंट को दौरा पड़ा, बेहोश है, दोबारा दौरा पड़ना शुरू हो गया, तो ये ऐसी स्थिति है कि जब आपको हॉस्पिटल इमीडिएटली जरूर जाना चाहिए। तीसरी बात, उसके हाथ पैरों को मोड़ने की कोशिश ना करें। कभी कभी क्या होता है, दौरे में एक आदमी का हाथ मुड़ रहा है, मैंने ऐसा देखा है, 2 दोस्त जा रहे थे, एक को दौरा पड़ा, उसका हाथ मुड़ा, उसने सोचा हाथ मुड़ गया, उसको पूरा घुमा के दूसरे डायरेक्शन में मोड़ दिया, उसका पूरा शोल्डर तोड़ दिया उसका, तो उसको मिर्गी से इतना नुकसान नहीं हुआ जिसके उसके दोस्त की मदद करने से नुकसान हो गया। तो प्लीज उसके शरीर को छोड़ दीजिए, चोट ना लगे, आसपास ऐसी चीजें हो जिससे चोट लगती है उसका बचाव कर लीजिए, और अपने आप मरीज को होश में आ जाएगा, फिर अस्पताल ले जाइए।
1: डॉक्टर साहब इससे पहले आप बात कर रहे थे, हम डायबिटीज की भी बात कर रहे थे, तो जो BP या डायबिटिक पेशेंट्स हैं तो उनको न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स क्या होती हैं?
0: देखिए डायबिटीज और ब्लड प्रेशर ऐसी बीमारियां हैं, पहली बात तो एक बार किसी को डायबिटीज या ब्लड प्रेशर है तो मान के चलिए आपको जिंदगी भर ये बीमारी रहेगी, वो बीमारी कितनी सीवियर होगी वो उम्र के साथ में दवाओं के ट्रीटमेंट के हिसाब से। कुछ लोग सोचते हैं कि बीपी की दवा खाई तो मैं ठीक हो गया, ऐसा नहीं है। आपकी बीपी की दवा की मात्रा बढ़ घट सकती है। जनरली समर्स में पसीना ज्यादा आता है तो बीपी अच्छा कंट्रोल होता है तो लोग दवा बंद कर देते हैं, ऐसा ना करें। अपने डॉक्टर से बात करके अपनी दवा की मात्रा कम कर लें और विंटर आए तो अपनी दवा की मात्रा दोबारा बढ़ा लें। रही बात कॉम्प्लिकेशन की, तो उससे ब्रेन पे असर पड़ता है। ब्रेन पे क्या असर पड़ता है? ब्लड प्रेशर हाई है तो स्ट्रोक हो सकता है। जिनको डायबिटीज और ब्लड प्रेशर दोनों, उनको स्ट्रोक होने का चांसेस ज्यादा हो सकते हैं। स्ट्रोक हो सकता है तो मिर्गी के द्वारा भी हो सकते हैं। न्यूरोपैथी हो सकता है डायबिटीज वगैरह अच्छी तरह का कंट्रोल है। डायबिटीज में अगर जो और ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं तो हार्ट का इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, आपको हार्ट अटैक हो सकता है। तो ये भी तो बॉडी के ढेर सारे ऑर्गन आपके अनकंट्रोल डायबिटीज और ब्लड प्रेशर की वजह से हो सकते हैं, और जो कि कंप्लीटली प्रिवेंटेबल है। अगर जो समय से मैं आपको बताऊंगा, जो 100 मरीज जो अस्पताल में आते हैं जो लकवा लेके आते हैं, तो मेरे ख्याल से 50 मरीज वो होते हैं जिन्होंने अभी रिसेंटली दवा खाना बंद कर दिया है, ये सोच के कि उनका ब्लड प्रेशर ठीक है, लेकिन वो तरीका बिल्कुल गलत है।
1: कई बार होता है ना कि डॉक्टर हमें 2 दिन की दवाई दे रहे हैं, 3 दिन की दवाई दे रहे हैं, 2 दिन बाद हमें ठीक सा महसूस हो रहा है तो हम खुद ही छोड़ देते हैं, तो वो सही है या गलत है और कितना गलत है?
0: दो बातें, एक तो होता है कि 2-3 दिन में खाने के बाद अच्छा लग रहा है, इसका एक ही मतलब है कि आपको दवा सूट कर रही है, आपके लिए दवा इफेक्टिव है, तो दवा बंद ना करें। दूसरी होती है मैं 3 दवा खा रहा था अभी मैं सब कुछ ठीक, तो ऐसा करता हूं 2 कर देता हूं, ये भी गलत तरीका है। स्पेशली जो पार्किंसन के मरीज होते हैं जिनको हम लियोडोपा नाम की दवा देते हैं, तो उनको, अगर मेरे श्रोता जो पार्किंसन के हैं वो इस बात को अच्छी तरह समझते हैं।
1: हमें मालूम है कि आपकी पार्किंसन में एक्सपर्टाइज है, तो उसके बारे में भी हमारे श्रोताओं को बता दीजिए,
0: इसीलिए मैं पार्किंसन के बारे में बात कर रहा हूं। तो अगर जो डॉक्टर ने आपको 3 दवा लिखी है तो, और जिस समय से लिखी है उसी समय पे आप 3 दवा खाएं, क्या होता है 3 दवा खाने के बाद आप अच्छा महसूस करते हैं, तो आपको लग रहा है 3 क्यों खाऊं, अब मैं 2 खाऊंगा। तो उसका एग्जांपल ये है कि अगर जो आपको 100 किलोमीटर जाना है तो आपको मान लो 10 लीटर गाड़ी में पेट्रोल भराना है, तो आप 5 लीटर भरा के काम नहीं चला सकते। और बॉडी की रिक्वायरमेंट 3 गोली की है, तो ये लिवोडोपा तो गाड़ी का पेट्रोल है पार्किंसन के लिए, तो आपको उतनी ही दवा खानी पड़ेगी और समय से खानी पड़ेगी, तभी आपका पार्किंसन अच्छा कंट्रोल रहेगा।
1: एक कॉलर है हमारे साथ लाइन पर। हेलो।
4: हेलो,
1: नमस्कार जी, आपका नाम, आप कहाँ से कॉल कर रहे हैं?
4: जी नमस्कार, आप राम, मेरा नाम राम मिलन है
1: जी, बताइए क्या प्रश्न है आपका?
4: अभिनंदन जी, दिल्ली से मैं बोल रहा हूँ। मैं ये जो अभी आप लोग चर्चा डॉक्टर साहब कर रहे थे दौरा और मिर्गी के बारे में
1: जी,
4: तो इसके उपचार और इलाज के बारे में मैडम जी मैं जानना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे भांजे को ऐसा होता है ना।
1: अच्छा ठीक है, बताइए
4: इसके विषय। हाँ, थोड़ा सा चर्चा करिए और बताइए आप लोग जो हो सके तो।
0: हमने सारी बात अभी बहुत विस्तार में बताई है, फिर भी एक लाइन में ही बता देता हूँ कि जब भी मिर्गी के दौरे होते हैं तो पहले ये जानना जरूरी है कि असली में मिर्गी के दौरे हैं या नकली मिर्गी के दौरे हैं। तो पहले ये जानना जरूरी है कि ये मिर्गी के दौरे असली हैं या नकली है, वो डॉक्टर आपकी जांच करके बता देगा। दूसरा, मिर्गी के दौरे जब भी होते हैं उसमें ज्यादातर 60% मरीजों को एक दवा देने से मिर्गी के दौरे कंट्रोल हो जाते हैं, लेकिन होता क्या है कि लोग दवा बंद कर देते हैं। दोबारा दौरा पड़ने का सबसे कॉमन कारण है कि आप दवा बंद कर देते हैं बगैर डॉक्टर से पूछे। जब भी एक मिर्गी का दौरा होता है तो हम ऐसा मानते हैं कि 6 महीने से 3 साल कम से कम दवा देते हैं। किसको 6 महीने देना है, किसको 3 साल देना है, ये आपका डॉक्टर आपके बीमारी के प्रोफाइल के हिसाब से देख के बताएंगे आपको।
1: डॉक्टर साहब, जैसे कि आज हम नसों के ऊपर बात करें, तो नसों की कमजोरी या न्यूरोपैथी, इसका मुख्य कारण क्या है, किस वजह से हो जाती है ये?
0: जैसे हमने शुरुआत में डिस्कस किया था कि ये पार्ट ऑफ नर्वस सिस्टम है, तो जैसे हमारे घर में बिजली की वायरिंग है, उस तरह से पूरे शरीर में वायरिंग है जिसको हम नसें बोलते हैं या नर्व्स बोलते हैं, और इनका काम जो है ब्रेन के सिग्नल को मसल तक, स्किन तक, सब्जी के सारे ऑर्गन तक पहुंचाना है। तो इसकी कोई भी बीमारी तो उसको हम बोलते हैं न्यूरोपैथी। अगर आप पूछे कि क्या कॉमन कारण है, तो डायबिटीज सबसे कॉमन कारण है। अगर 100 मरीज देखूंगा जिनको न्यूरोपैथी है तो उसमें से शायद 70% लोगों को डायबिटीज होगा। ये वो लोग होंगे जिनको लॉन्ग स्टैंडिंग डायबिटीज होगा, जिनकी डायबिटीज अच्छा कंट्रोल नहीं हुई होगी। कभी कभी जिन लोगों को कैंसर की वजह से कीमोथेरेपी देते हैं उनकी वजह से भी ये बीमारी होती है। एक होती है बीमारी जब आपने न्यूरोपैथी की बात, उसको बोलते हैं कार्पल टनल सिंड्रोम। कार्पल टनल सिंड्रोम क्या होता है? हाथ में दर्द होता है। कब होता है? ज्यादातर रात में या शाम को या काम करने के बाद, जो गृहणियां जो खाना बनाती हैं या जहां पे हाथ में रिपीटेडली फ्लेक्शन मतलब मूवमेंट हो रहा है उसके बाद वो दर्द होता है। किसी भी को भी हाथ में दर्द होता है उनको डॉक्टर से जाकर पूछना चाहिए कि क्या मेरे को कार्पल टनल सिंड्रोम तो नहीं है। कार्पल टनल सिंड्रोम होता है तो नर्व कंडक्शन करके उसी जांच करके हम कंफर्म कर सकते हैं और जरूरत के हिसाब से इंजेक्शन लगाकर या दवा देकर उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। एक तो ये हो गया। दूसरा होता है कभी कभी कुछ ड्रग्स होती हैं जो लंबे टाइम तक लेने के बाद, जैसे टीबी की कुछ दवाइयों से होता है और लीवर में अगर जो एप्सिस होता है उसकी दवा लेने से होता है, उनके कारण भी न्यूरोपैथी हो सकता है। अनकॉमन होता है जैसे वेस्कुलाइज बोलते हैं, मतलब इन्फ्लेमेशन हो जाता है नसों के अंदर, उससे भी होता है। एक जो बड़ी अचानक होने वाली बीमारी होती है जो बोलते हैं एक्यूट डिमाइलेटिंग डिसऑर्डर्स होते हैं, जिसमें आदमी बिल्कुल ठीक था, आज सुबह उठा तो उसको लगा पैरों में थोड़ी कमजोरी सी लग रही है, उठने में दिक्कत है, शाम तक वो दिक्कत बढ़ गई, कल तक इतनी हो गई कि अब वो उठ भी नहीं पा रहा है। आप सोचिए 24-48 घंटे में आदमी बेड बाउंड हो गया, ऐसा भी हो सकता है, जो कि डिमाइलेटिंग डिसऑर्डर है, जो पब्लिक जो हो सकता है समझ पाए इस बात को कि उसको बोलते हैं गिलन-बारे सिंड्रोम हो गया, जीबीएस हो गया, जीबीएस हो गया, बड़ा कॉमन वर्ड है ये। तो उस बीमारी में आपको समय से अस्पताल जाना चाहिए और समय पर इलाज शुरू करने से उस बीमारी को अच्छी तरह से कंट्रोल कर सकते हैं। कभी कभी मरीज देर से आते हैं तो उनके रेस्पिरेटरी इन्वायरमेंट भी जाता है तो उनको वेंटिलेटर पर डालना पड़ता है। किसी भी मरीज को इस बीमारी में अगर जो पहले हफ्ते के अंदर अंदर वेंटिलेटर की रिक्वायरमेंट आ गई है तो इसका मतलब बीमारी बहुत ज्यादा थी, उसकी रिकवरी स्लो होगी और कभी महीनों जाके टाइम लगेगा जब वो रिकवरी होगी।
1: तो डॉक्टर साहब, जैसे कि आपने अभी इलाज की बात करी तो क्या कुछ लेटेस्ट एडवांसमेंट है इस फील्ड में?
0: हाँ, जैसे मैं एग्जाम्पल लेता हूँ पार्किंसन, क्योंकि मेरा एक्सपर्टीज है उस पार्किंसन में। एडवांसमेंट क्या है, दो तीन चीजें हैं। एक तो दवाइयां बहुत नई नई आ गई हैं, तो दवाओं की तो एक बात करेंगे। जब पार्किंसन बहुत एडवांस हो जाता है तो दवा की मात्रा बढ़ानी पड़ती है, लेकिन उसी दवा का साइड इफेक्ट होने लगता है। तो कैच 22 सिचुएशन ये है कि हमको दवा बढ़ानी है लेकिन दवा बढ़ाने से साइड इफेक्ट हो रहा है। ऐसी स्थिति में हम ब्रेन का सर्जरी करते हैं, उसको बोलते हैं डीबीएस, डीप ब्रेन स्टिमुलेशन। जैसे हम हार्ट में पेसमेकर डालते हैं, ऐसे ब्रेन के अंदर पेसमेकर डाल देते हैं और बाहर से उसको प्रोग्रामर से उसको एडजस्ट करके उसकी फ्रीक्वेंसी और बहुत सारे पैरामीटर सेट करके हम उसको पेशेंट को ठीक करते हैं। उसका एडवांटेज ये होता है कि जब हम डीबीएस सर्जरी करते हैं तो उसकी दवा की रिक्वायरमेंट 80% तक कम हो जाती है। जब दवा की रिक्वायरमेंट 80% तक कम हो जाती है तो दवा से रिलेटेड सारे कॉम्प्लिकेशन से आप बच जाते हैं। जब मैं ये बात कर रहा हूं तो मैं और भी एडवांसमेंट जो बोले कि अब ये अपने आपने सुना होगा, एक अल्ट्रासाउंड से भी ब्रेन के अंदर सर्जरी कर रहे हैं। वो हर मरीज के लिए नहीं है, पहली बात तो ये सुन लीजिए। एक स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर्स होते हैं जिनको डॉक्टर देख के डिसाइड करके बता सकता है कि इस मरीज को ऐसा सर्जरी करने का फायदा हो सकता है। उन्हीं मरीज में हम डीबीएस भी कर सकते हैं, एक तो ये एडवांसमेंट है। दूसरे इन्वेस्टिगेशन में आजकल जैसे अलग अलग टाइप के पेट स्कैन आ गए हैं, जैसे पार्किंसन में डोपामिन लेवल कितना है ब्रेन का, वो हम जांच कर सकते हैं। दूसरा अब जो नया आने वाला है, जो भी इंडिया में अनफॉर्चुनेटली नहीं आया है, वो है ब्रेन के अंदर एमाइलॉयड कितना है वो देख सकते हैं। जैसे डिमेंशिया की आज हमने इतनी बात नहीं करी है, लेकिन डिमेंशिया भी एक ऐसा बीमारी है। तो डिमेंशिया में बहुत सारी बीमारियां होती हैं जिसको हम डिमेंशिया एज ए ग्रुप बोलते हैं, कि आदमी को मेमोरी उसकी कम होती जा रही है। तो कॉमन जो डिजेनरेटिव होता है जो कि उम्र के साथ बढ़ता जाता है, वो होता है जिसमें एमाइलॉयड डिपॉजिट होने लगता है। तो हम एमाइलॉयड पैट करते हैं जिससे पता चल जाता है। उसके लिए आपने बहुत सुना होगा कि आजकल ब्लड सैंपल भी ले रहे हैं, तो ब्लड सैंपल में पर्टिकुलर टाइप का एमाइलॉयड का प्रोटीन का कितना रेशियो है वो देख के भी वो जज कर सकते हैं। और दवा की बात करें तो उसके लिए कुछ नई अभी बहुत एडवांस दवाइयां आई हैं जो कि अल्जाइमर्स के लिए ऐसी दवाइयां हैं जिनको हम दें तो उनसे ऐसा मानते हैं कि उन मरीजों को फायदा हो सकता है।
1: दवाइयों के अलावा अगर हम फिजियोथेरेपी और रिहैबिलिटेशन की बात करें तो उसका क्या रोल रहता है?
0: देखिए, रिहैबिलिटेशन जो है ना वो ऐसा है कि अगर तो जब हम चाय बनाते हैं तो एक तो चाय आप छोड़ दीजिए उबल जाएगी, आपने देखा चाय वाला उसको बीच बीच में हिलाता भी रहता है तो वो चाय का टेस्ट बदल रहा है। ये कुछ कुछ ऐसा ही है। जिनको वीकनेस आई है, चाहे वो लकवे के साथ हो, न्यूरोपैथी की वजह से हो, मायोपैथी की वजह से हो, तो अगर जो आप रिहेबिलिटेशन एक्सरसाइज बराबर करते हैं तो उसी बीमारी की रिकवरी जो है बहुत ज्यादा अच्छी होती है। कुछ ऐसी बीमारियां होती है जो आज हम इतने डिस्कस नहीं पा रहे, जैसे मस्कुलर डिस्ट्रॉफी होती है। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी इन जनरल आर प्रोग्रेसिव, और जब वो प्रोग्रेसिव है तो आपको इतनी अच्छी एक्सरसाइज करनी है कि आपकी मसल की पावर बनी रहे और बीमारी से आप आगे निकल जाए। ऐसी एक बीमारी होती है जिसको हम बोलते हैं मोटर न्यूरॉन डिजीज, उसमें भी मसल्स आपकी वीक होने लगती हैं, तो उसमें भी वो प्रोग्रेसिव होती है। तो अगर जो आप खूब एक्सरसाइज करके अपनी मसल की पावर को मेंटेन कर लेंगे तो यहाँ ये रिहेबिलिटेशन का बहुत बड़ा रोल होता है। सेम लकवा होने के बाद अगर जो आप एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो आपकी रिकवरी अच्छी नहीं होगी। एक और भी जो बात आज हमारे शायद समय की व्यवस्था के कारण नहीं हो पाई कि मन की स्थिति। मैं कई बार पेशेंट्स को बोलता हूँ खुश रहो। अब मरीज बोलते खुश रहो क्या बीमारी है, मतलब खुश रहने का क्या मतलब है,
1: कैसे खुश
0: रहे? कैसे खुश रहेगा? तो ये जो खुश रहो वाला जो तरीका है वो आप खुद डिसाइड करते हो कि आपको किस चीज में खुशी मिलती है। जैसे आपने मेरी चॉइस के गाने लगाए तो मुझे बड़ी खुशी हो रही है, तो मुझे अच्छा लगा मेरे गाने सुन के।
1: आप हमारे शो में आए, हमें भी खुशी हुई।
0: जी ऐसे कोई आते हैं जो स्पिरिचुअल, उनको भगवान के भजन में बड़ा मजा आता है, वो उसमें खुशी ढूंढते हैं। प्लेयर जो होते हैं उनको खेल के बड़ा मजा आता है। जिन लोगों को दौड़ने की आदत पड़ जाती है, वो जब तक 5-10 किलोमीटर दौड़ के नहीं आए उनकी उनको खुशी नहीं मिलती है। तो हर आदमी की खुशी अलग है, वो हर आदमी अपनी खुशी अलग जगह ढूंढता है।
1: लेकिन अगर कोई मरीज है, किसी बीमारी से जूझ रहा है, तो वो उसके साथ अपना जो डेली लाइफस्टाइल है वो कैसे फॉलो करे, अपनी डेली रूटीन कैसे जिए, क्योंकि वो कई बार उस चीज में चला जाता है कि हाँ इस बीमारी हो रही है।
0: ये तो बहुत कॉमन बात है। उसके लिए मैं मरीजों को एक बात बताता हूँ कि भगवान न करे किसी की टांग टूट जाए, तो अब दो तरीके हैं। या तो अपनी टांग को देख देख कर रोज परेशान हो, जो कि कई बार लोग करते हैं। दूसरा है उसमें बढ़िया सा कलर वाला प्लास्टर लगाओ, दोस्तों को बुलाओ, उस पर ऑटोग्राफ लो, पता है 3 महीने में ठीक हो जाएगी। तो ऐसी स्थिति में अपने आप को स्ट्रांग रखना और पॉजिटिव रखना, उन्हीं को मैं बोलता हूँ कि खुश रहिए तो आप अच्छे रहेंगे।
1: तो डॉक्टर साहब, आज आपने काफी हमें जानकारी दी कि ट्रीटमेंट ऑफ न्यूरोलॉजिकल डिजीजेस के बारे में। तो जाते जाते आप क्या संदेश हमारे श्रोताओं को देंगे? लेकिन उससे पहले एक मैसेज आया है, मैं मैसेज जरूर लूंगी शॉर्ट में, बेशक उनको हम मैसेज दे दें। वो लिखते हैं, शिल्पा मैम और डॉक्टर साहब को गुड आफ्टरनून। डॉक्टर साहब, आजकल मिडल एज में ही लकवे की प्रॉब्लम हो रही है, इसका क्या रीजन है, पर्यावरण या खान पान? कृपया बताएं। नरदेव सिंह चौहान, कोटद्वार, उत्तराखंड से। शॉर्ट में
0: नरदेव सिंह जी, आपने जो सवाल पूछा है वो बड़ा मिलियन डॉलर सवाल है, क्योंकि ये आपकी नहीं हमारी भी बड़ी समस्या है। 30 साल का यंग लड़का, 22 साल का यंग लड़का, उसके 2-3 कारण है। एक तो ब्लड प्रेशर बहुत यंग एज में होने लगा है, डायबिटीज यंग एज में होने लगा है, खान पान इतना खराब है, स्कूल में 50% बच्चे ओवरवेट हो रहे हैं, तो ये कारण है। तीसरा है कि हम हेल्थ चेकअप नहीं कराते, स्मोकिंग इज ए इम्पोर्टेंट कॉज, और रेगुलर चेक करने के बाद में जो है पॉल्यूशन एक दूसरा कारण है। अभी मैं देख रहा था जब 400 वो होता है तो हम 10 सिगरेट के बराबर, 40 सिगरेट के बराबर पॉल्यूशन है, तो पॉल्यूशन भी एक इम्पोर्टेंट कारण है।
1: तो डॉक्टर साहब, जाते जाते शॉर्ट में मैसेज देना चाहेंगे हमारे श्रोताओं को कि जिससे वो स्वस्थ रहें और खुश रहें?
0: खुश रहें वो तो हमने बता दिया। एक हमेशा खान पान का ध्यान रखना है कि स्वस्थ खाएं, रेगुलर एक्सरसाइज करें, मन की स्थिति को अच्छा रखें, और अगर भगवान न करे कोई ऐसी बीमारी हुई है तो उसको समझ के उससे आगे निकल जाए
1: और शांति से उसका सामना करें। तो श्रोताओं, आज हमने जाना कि न्यूरोलॉजिकल रोगों के लक्षणों को समय रहते पहचानना और उचित उपचार लेना कितना आवश्यक है। सही जानकारी, नियमित जांच और स्वस्थ जीवन शैली अपनाकर हम इन समस्याओं से काफी हद तक बचाव कर सकते हैं। आज कार्यक्रम में हमारे साथ रहे डॉक्टर विनय गोयल, चेयरमैन न्यूरोलॉजी मेदांता हॉस्पिटल। डॉक्टर साहब, आप हमारे कार्यक्रम में आए और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे साथ साझा की, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया।
0: धन्यवाद शिल्पा जी।
1: दोस्तों, आपको हमारा आज का कार्यक्रम कैसा लगा हमें जरूर मेल कीजिएगा। हमारा मेल आईडी है healthairdelhi@gmail.com। इसी के साथ मैं शिल्पा गुप्ता आपसे लेती हूँ इजाजत, फिर रूबरू होंगे एक नए विषय के साथ। स्वस्थ रहें, सजग रहें, मुस्कुराते रहें। नमस्कार।
5: अभी आप आकाशवाणी दिल्ली से विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर सुन रहे थे। कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता थी शालिनी मित्तल। ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
6: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात।
7: हिमालय की गोद से लेकर
8: अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक,
7: साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर
8: राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक,
7: नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक,
8: खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है
7: तो सुनना ना भूलें
8: रेनबो डेस्टिनेशंस
7: हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे रेनबो पर।

विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।

0: कहानियाँ हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात, ट्रेंडों की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।
3: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात।

0: कहानियाँ हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: सुनिए सोमवार से शुक्रवार दोपहर 2:30 बजे NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग FM रेनबो दिल्ली पर।
3: मन की परतें खोल, जरा बिंदास बोल, आपका हमारा संवाद हर महीने तीसरे शुक्रवार 1 से 2 बजे 102.6 रेनबो पर। बिंदास बोल। दिल के तराने, गाने नए पुराने, नॉनस्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।
4: अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
5: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
6: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती, धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
5: म्यूजिक मस्ती।

नमस्कार, एफएम रेनबो पर पेश हैं अभी तक के मुख्य समाचार। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नीट पेपर लीक मामले में इस्तीफा दिया। सरकार और सीजेपी के बीच परीक्षा प्रणाली में सुधार और पेपर लीक रोकने के उपायों पर आज तीसरे दौर की बातचीत। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने पेपर लीक और उससे जुड़ी अनियमितताओं के मामलों की सुनवाई के लिए 4 विशेष फास्ट ट्रैक अदालत गठित की। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा, संसद में बिताया गया हर दिन, हर घंटा, हर मिनट और हर सेकंड लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए समर्पित होना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल शाम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विकसित वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम 2026 के प्रतिभागियों से बातचीत करेंगे। असम में बाढ़ की स्थिति गंभीर, मरने वालों की संख्या 61 हुई। 1 लाख से अधिक लोगों ने राहत शिविरों में शरण ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का

आकाशवाणी का FM रेनबो सुन रहे हैं आप, दिल से दिल तक। आइए चलते हैं, आप सुनते हैं हमारा अगला कार्यक्रम, स्पॉन्सर प्रोग्राम लम्हे।

Hi dear friends, welcome to Lamhe program with me, your RJ Chetan. Today I am talking about gentle parenting. क्या होती है gentle parenting? क्यों हो रही इतनी popular? आजकल के digital दौर में बच्चों के परवरिश करना भी एक challenge बन गया है. ऐसे में भी अब gentle parenting काफी चर्चे में है. इसे celebrities भी अपना रहे हैं. चलिए आज के लम्हे प्रोग्राम में हम जानेंगे कि जेंटल पेरेंटिंग क्या है, इसे कैसे अपनाएं और इसके फायदे क्या होते हैं. आज के दौर में जब टेक्नोलॉजी, सोशल मीडिया और भागदौड़ भरी जिंदगी ने बच्चों की परवरिश को भी मुश्किल बना दिया है, तब माता पिता के सामने सबसे बड़ा सवाल यही होता है कि कैसे बने अच्छे पेरेंट्स, बच्चों को डिसिप्लिन कैसे करें लेकिन बिना डांटे या मारे, कैसे उनके साथ ऐसे रिश्ते बनाएं जहां वो खुलकर बात कर सके और साथ ही जिम्मेदार भी बने. इसी सवाल के जवाब में एक नया ट्रेंड सामने आया है जो है जेंटल पेरेंटिंग. कई मशहूर सेलिब्रिटी पेरेंट्स भी इस स्टाइल को अपना रहे हैं, लेकिन क्या ये सिर्फ एक फैशन है या ट्रेंड है? वाकई में बच्चों के बेहतर परवरिश का रास्ता है या आइए विस्तार से समझते हैं कि जेंटल पेरेंटिंग होती क्या है.

और क्यों ये स्टाइल इतनी पॉपुलर होता जा रहा है, आज के लम्हे प्रोग्राम में आपके आरजे चेतन से। ये एक ऐसी परवरिश जिसमें बच्चों के साथ सख्ती नहीं बल्कि समझदारी, संवेदनाशीलता और सम्मान से पेश आया जाता है। ये तरीका कहता है कि बच्चों की गलतियों पर गुस्सा करने के बजाय उन्हें समझाया जाए, उनकी फीलिंग्स को सुना जाए और उन्हें इमोशनल तौर से सेफ माहौल दिया जाए। इस पेरेंटिंग स्टाइल में बच्चों को कंट्रोल नहीं किया जाता है बल्कि उसके व्यवहार को समझकर और उसकी फीलिंग्स को एक्सेप्ट करते हुए गाइडेंस दी जाती है। अगर बच्चा जिद कर रहा है या गुस्से में है तो उस पर चिल्लाने के बजाय उसकी फीलिंग्स को पहचाना जाता है, जैसे मुझे पता है तुम गुस्से में हो क्योंकि तुम्हें अभी वो खिलौना चाहिए था, चलो मिलकर कोई हल निकालते हैं। तो दोस्तों, क्या आप कभी सोचे कि जेंटल पेरेंटिंग क्यों हो रहा है इतना पॉपुलर? इमोशनल कनेक्शन को बढ़ावा देती है ये जेंटल पेरेंटिंग। बच्चे खुद को माता पिता के करीब महसूस करते हैं जिसे रिश्ते में गहराई आती है और बच्चे भी ज्यादा विश्वास के साथ कम्युनिकेट करते हैं। सेल्फ कॉन्फिडेंस और सेल्फ कंट्रोल सिखाती है। जब बच्चों को उसकी बात कहने का मौका मिलता है तो वो सेल्फ डिपेंडेंट और कॉन्फिडेंट बनता है। उसे पता होता है कि उसकी बात मानी गई है या नहीं, कम से कम सुनी जरूर जाएगी। डर के बजाय समझ से नियम सिखाते हैं। ट्रेडिशनल सख्त पेरेंटिंग में बच्चे अक्सर डर से सही व्यवहार करते हैं, लेकिन जेंटल पेरेंटिंग में वो खुद समझते हैं कि कौन सा व्यवहार क्यों गलत है। मेंटल हेल्थ के लिए बेहतर है ये जेंटल पेरेंटिंग। ये स्टाइल बच्चों के मेंटल हेल्थ को बेहतर बनाने में मदद करती है। इसकी मदद से उन्हें कम तनाव होता है और इमोशनल रूप से वे ज्यादा स्थिर होते हैं। क्या जेंटल पेरेंटिंग का मतलब है कि बच्चों को कुछ भी करने दिया जाए? बिल्कुल नहीं। जेंटल पेरेंटिंग में भी रूल और ब्रांडिंग होती है, लेकिन उनका पालन साझा या डर से नहीं, समझ और सहयोग से करवाया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर, अगर बच्चा खाने से मना कर रहा है तो उसे डांटने के बजाय ये कहना, मुझे पता है अभी तुम्हारा मन नहीं है लेकिन खाना जरूरी है ताकि तुम हेल्थी रहो, चलो चलो साथ बैठकर खाते हैं। बच्चों के बात ध्यान से सुने, भले ही वो छोटी सी बात क्यों न हो। तुम गलत हो कहने के बजाय पूछो, तुम ऐसा क्यों महसूस कर रहे हो। गलत व्यवहार पर गुस्से के बजाय ऑप्शन दे, ऐसा नहीं ऐसा करके देखो। जो व्यवहार आप उनसे चाहते हैं पहले खुद अपनाएं। दोस्तों, बच्चों की परवरिश करने के लिए पेरेंट्स तरह तरह के तरीकों को अपनाते हैं। ऐसा भी नहीं है कि हर बच्चे के लिए एक ही तरह का पेरेंटिंग स्टाइल कारगर हो। कई बार एक ही बच्चे पर अलग अलग पेरेंटिंग तकनीक अपनानी पड़ती है। ये पूरी तरह से परिस्थिति पर निर्भर करता है। पहले के समय पर पेरेंटिंग का तरीका बिल्कुल अलग हुआ करता है, लेकिन अब ज्यादातर पेरेंट्स जेंटल पेरेंटिंग स्टाइल को अपना रहे हैं। आइए आज के लम्हे प्रोग्राम में इसे सुनेंगे आपके आरजे चेतन से। पारंपरिक पेरेंटिंग स्टाइल में जब बच्चा कुछ अच्छा करता है या अच्छा व्यवहार दिखाता है तो उसे शाबाशी और गिफ्ट दिए जाते हैं, लेकिन अगर बच्चा कुछ बुरा करता है तो उसे डांट दिया जाता है और कुछ मामले में बच्चों की पिटाई तक हो जाती है। हालांकि जेंटल पेरेंटिंग स्टाइल बिल्कुल अलग है। इस पेरेंटिंग स्टाइल में पेरेंट्स अपने बच्चों के भावनात्मक जरूरतों और स्वास्थ्य पर ध्यान देते हैं। इसमें बच्चे के लिए सुरक्षित और अच्छा माहौल बनाने पर जोर दिया जाता है। इस तरह के पेरेंटिंग स्टाइल को फॉलो करने वाले पेरेंट्स बच्चों को सख्त सजा नहीं देते हैं बल्कि बच्चों को उसकी भावनाओं को समझकर ठीक तरह से व्यवहार करना सिखाया जाता है। जब आप अपने बच्चों की जरूरत और भावनाओं को सुनते हैं और सहानुभूति और समझ के साथ जवाब देते हैं तो आप उन्हें उसी तरीके से बातचीत करना सिखा रहे होते हैं। जेंटल किंग आपके बच्चों को हेल्थी और सही तरीके से अपनी भावनाओं को पहचाने और व्यक्त करने में मदद करती है। ये एक जरूरी लाइफ स्किल है। जेंटल पेरेंटिंग एक दयालु दृष्टिकोण है जो बच्चे के भावनात्मक, शारीरिक और मनोवैज्ञानिक जरूरतों को समझने और उनका पालन पोषण करने पर केंद्रित है। इसके मूल में यह माता पिता और बच्चों के बीच सहानुभूति, सम्मान
और सकारात्मक संचार पर जोर देता है। इस पालन पोषण दर्शन का उद्देश्य बच्चों को एक सहायक, अहिंसक और समझदार माहौल में बड़ा करना है। सौम्य पालन पोषण बच्चों को उनके अपने विचारों, भावनाओं और अद्वितीय व्यक्तित्व वाले व्यक्तियों के रूप में पहचानता है। ये उनकी स्वच्छता को महत्व देता है और उनकी उम्र और समझ के अनुरूप निर्णय लेने की प्रक्रिया में उन्हें शामिल करने का प्रयास करता है। चिल्लाना, पिटाई या टाइम आउट जैसे दंडात्मक उपायों का सहारा लेने के बजाय सौम्य पालन पोषण सकारात्मक अनुशासन रणनीतियों पर ध्यान केंद्रित करता है। इसमें स्पष्ट सीमाएं निर्धारित करना, पुनर्निर्देशन का उपयोग करना और तार्किक परिणामों को नियोजित करना शामिल हो सकता है, जो शर्म या डर पैदा करने के बजाय मार्गदर्शन करता है। सौम्य पालन पोषण करने वाले माता पिता अपने बच्चे के दृष्टिकोण के साथ सहानुभूति रखने का प्रयास करते हैं। व्यवहार और जरूरतों के पीछे अंतर्निहित कारणों को समझकर माता पिता अधिक प्रभावी ढंग से और दयालु पूर्वक प्रतिक्रिया दे सकते हैं। सुसंगत नियम और सीमाएं स्थापित करने से बच्चों को सुरक्षा और पूर्वानुमान की भावना मिलती है। हालांकि ये सीमाएं बच्चों के व्यक्तित्व और विकासात्मक अवस्था को ध्यान में रखते हुए सहानुभूति और लचीलेपन के साथ निर्धारित की जाती है। सौम्य पालन पोषण माता पिता को बाल विकास, प्रभावी संचार और उम्र उपयुक्त अपेक्षाओं के बारे में लगातार शिक्षित करने के लिए प्रोत्साहित करता है। ये सहयोगात्मक समस्या समाधान को भी बढ़ावा देता है और माता पिता को संघर्ष या मुद्दे के समाधान खोजने में बच्चों को शामिल करने के लिए प्रोत्साहित करता है। तो दोस्तों, ये एक नया टर्म है, ट्रेंडिंग है, जेंटल पेरेंटिंग। दैट वाज ऑल अबाउट जेंटल पेरेंटिंग इन टुडेस लम्हे प्रोग्राम। आज के लिए बस इतना ही, अगले प्रोग्राम में फिर मिलेंगे। तब तक आप चेतन को दीजिए इजाजत, नमस्कार। Call or messages on 0951522703 9, that's 0951522703 9, or write to us at feedbackamc1@gmail.com, that's feedbackamc1@gmail.com. You can also follow us at our social media handle spice.lamhe.vanilla, that's spice.lamhe.vanilla. This program is produced and sponsored by Adventist Media Center.

0: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
1: जी हाँ, आकाशवाणी का FM रेनबो सुन रहे हैं आप दिल से दिल तक, और प्रोग्राम शुरू हो चुका है जिसका नाम है अल्फा जैन। और अल्फा जैन के आज के इस खास प्रोग्राम में हम बात करेंगे लेट्स डिटॉक्स की। दोस्तों, इस प्रोग्राम में मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार, और इस प्रोग्राम की अगर हम बात करें तो ये एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें कुछ चीजें जो जिंदगी में कई बार हमें लगता है कि हमारी जो प्रगति है उस राह में रुकावट बन रही है, हम उनको दूर करने की कोशिश करते हैं। हमारे मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर रखने की दिशा में जो हमारे प्रयास हैं उनको भी हम याद करते हैं, उनको अपनी जिंदगी में उतारने की कोशिश करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस प्रोग्राम की एक छोटे से सवाल के साथ। सवाल यह है कि क्या आपने कभी किसी काम की शुरुआत सिर्फ इसलिए टाल दी क्योंकि लगा कि अभी मैं पूरी तरह तैयार नहीं हूं? शायद एक यूट्यूब चैनल शुरू करना था, कोई परीक्षा देनी थी, गिटार सीखना था, या फिर किसी को अपने मन की बात कहनी थी। हम अक्सर सोचते हैं कि पहले सब कुछ परफेक्ट हो जाए फिर शुरुआत करेंगे, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि जिंदगी में ज्यादातर लोग असफल इसलिए नहीं होते कि उनमें क्षमता नहीं होती, बल्कि इसलिए होते हैं कि वे शुरुआत ही नहीं कर पाते। परफेक्शन का इंतजार करते करते कई सपने कैलेंडर के पन्नों में कहीं खो जाते हैं। इसलिए हम आपसे कहेंगे कि परफेक्शन नहीं, प्रोग्रेस जरूरी है, और प्रोग्रेस के लिए हमारा शुरुआत करना बहुत जरूरी है। तो हम भी अपने इस प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं, आपका स्वागत है इस गीत के साथ।

दोस्तों, किसी भी बड़ी मंजिल की शुरुआत एक पहले कदम से होती है। और अगर हम इतिहास में भी निगाह डालें तो बहुत सारे ऐसे प्रसंग, बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो हमें इस तरफ सोचने की एक कहिए कि सीख देती हैं, एक हौसला देती हैं। अब अगर हम अपने भारत के बारे में देखें तो अगर कुछ खास जगहों के बारे में आपको कहें कि बताइए कौन सी जगह आपको बहुत अच्छी लगती है, उनके नाम बताइए, तो बहुत सारे ऐसे नाम होंगे जो आपकी उंगलियों पर होंगे कि हाँ, ये तो कमाल की जगह है। और ऐसी ही एक जगह है आगरा में जिसे देखने लोग जाते हैं, ताजमहल। ताजमहल आज दुनिया की सबसे खूबसूरत इमारतों में से एक के तौर पर गिना जाता है। लेकिन वो एक दिन में नहीं बना, लगभग 22 साल तक हजारों कारीगर हर दिन उसमें थोड़ा थोड़ा काम करते रहे। किसी ने संगमरमर तराशा, किसी ने नक्काशी की, किसी ने गुंबद बनाया। अगर हर कारीगर ये सोचता है कि जब तक पूरी इमारत परफेक्ट नहीं दिखेगी तब तक मेरा काम शुरू नहीं होगा, तो शायद ताजमहल कभी नहीं बन पाता। ये जो बनना है ना किसी चीज का, उसमें जरूरी होता है कि हम निरंतर लगातार करते रहें किसी काम को। प्रोसेस बहुत जरूरी है, क्योंकि एक एथलीट जब वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाता है तो हमें तो लगता है कि वाह क्या बात है, कमाल। लेकिन उसके पीछे की जो मेहनत होती है, हर दिन ट्रेनिंग करना, कैसा भी मौसम हो, कितनी भी व्यस्तता हो, ट्रेनिंग के लिए समय निकालना और लगातार अपने आप को अगली चुनौती के लिए तैयार करना, ये बहुत जरूरी है। और हर महान रचना छोटे छोटे अधूरे दिनों को जोड़कर पूरी होती है। तो हमारा आज का छोटा प्रयास आने वाले कल की एक बड़ी बुलंदी का रास्ता बनाता है।

आकाशवाणी का FM रेनबो सुन रहे हैं आप दिल से दिल तक। प्रोग्राम है अल्फाजन और आज हम लेट्स डिटॉक्स में बात कर रहे हैं। परफेक्शन नहीं, प्रोग्रेस जरूरी है, क्योंकि जिंदगी में हम जो भी चीज हासिल करना चाहते हैं उसके लिए जरूरी है हमारा पहला कदम बढ़ाना। और जब हम कदम बढ़ाते हैं तो धीरे धीरे आगे बढ़ते जाते हैं। आज की दुनिया में अगर हम अपने आसपास देखें तो ये सच हमें साफ तौर पर दिखाई देता है। मोबाइल फोन हम सभी लोगों के हाथ में है, इंटरनेट का इस्तेमाल हम सभी लोग करते हैं। लगातार कुछ कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो बहुत से लोग देखते हैं, उनमें से है एक रील देखना या यूट्यूब देखना। तो जब भी हम इनकी तह में जाते हैं, तो जब भी कोई स्टार्टअप सफल होता है ना, तो उसके पीछे की एक बड़ी कहानी होती है, या फिर यूं कहें कि कोई क्रिएटर जब लाखों लोगों तक पहुंचता है तो हमें उसका आज दिखाई देता है। लेकिन शायद ही कोई उन शुरुआती वीडियो को देखता है जिनमें उनका कैमरा हिल रहा था, आवाज साफ नहीं आ रही थी, या मुश्किल से कुछ 100 लोग ही उन्हें देख रहे थे। जो लोग आज प्रेरणा बन गए हैं उन्होंने शुरुआत परफेक्ट होकर नहीं बल्कि लगातार खुद को बेहतर करते हुए की। और ये फर्क सिर्फ इतना था कि उन्होंने अपनी पहली कोशिश को आखिरी फैसला नहीं माना, और अगर कुछ कमियां थी तो उन कमियों को दूर करने के लिए लगातार प्रयास किया और आगे बढ़ते रहे।

0: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
1: पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: सागर की गहराइयों से पर्वतों के शिखर तक, सरहद की हद से दुश्मनों के खात्मे तक, ये हैं भारत के सोल्जर्स। इन सोल्जर्स के अदम्य साहस को आकाशवाणी करता है सलाम। इन्हीं की विजय गाथा को लेकर आए हैं कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स में, हर गुरुवार शाम 4 से 5 रेनबो पर।
2: रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात, रेनबो की सौगात। हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।
3: अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
1: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
4: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती,
5: आज की रात मजा,
4: धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
1: म्यूजिक मस्ती।
6: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
7: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर,
1: म्यूजिक मस्ती।
8: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
9: आकाशवाणी का FM रेनबो सुन रहे हैं आप दिल से दिल तक। प्रोग्राम का नाम है अल्फाजन और इसमें आज हम बात कर रहे हैं लेट्स डिटॉक्स की। और हमने आपसे कहा है कि परफेक्शन नहीं, प्रोग्रेस जरूरी है जिंदगी में। और इस बात को लेकर कई और भी बातें हैं हमारे पास जो कहीं ना कहीं हमें ये बताती हैं कि हमारा जो पहला कदम है किसी चीज को लेकर, ये हम सोचे कि अभी थोड़ा और तैयारी कर लें, थोड़ा और आगे बढ़ें। तैयारियां कई बार हम जब सफर करते हैं ना, तो सफर के दौरान भी बहुत सारी चीजें होती है। सफर एक जगह से दूसरी जगह जाना नहीं, बल्कि किसी मंजिल की तरफ चलने का जो हमारा एक पूरा प्रयास होता है, हम उसकी बात कर रहे हैं। और अगर हम देखें तो इस पूरी कोशिश में कई बार हम अपने ऊपर थोड़ा दबाव ज्यादा बना लेते हैं। कॉलेज में है तो सबसे अच्छा CV चाहिए, नौकरी में है तो सबसे जल्दी प्रमोशन चाहिए, सोशल मीडिया पर है तो हर पोस्ट बेहतरीन होनी चाहिए। धीरे धीरे हम अपने काम से ज्यादा उसकी इमेज को लेकर परेशान रहने लगते हैं और यहीं पर प्रोग्रेस जो है वो थोड़ा पीछे रह जाती है। क्योंकि जो व्यक्ति हर कदम पर परफेक्ट दिखना चाहता है ना, वो अक्सर अगला कदम उठाने से डरता है। जापान की एक सोच है काइजेन, इसका मतलब है हर दिन थोड़ा सा बेहतर होना, बस एक छोटा सुधार। यही सोच वहां की कंपनियों से लेकर स्कूलों तक अपनाई जाती है। सोचिए अगर कोई रोज जो है सिर्फ एक नया शब्द सीख ले, रोज 10 मिनट पढ़ ले या रोज 1% बेहतर बनने की कोशिश करें, तो 1 साल बाद बदलाव कितना बड़ा होगा। बड़ी छलांगे हमेशा दिखाई देती हैं, लेकिन जिंदगी को बदलने वाला असर अक्सर छोटे कदमों का होता है।

0: सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: सुनिए सोमवार से शुक्रवार दोपहर 2:30 बजे एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग एफएम रेनबो दिल्ली पर।
2: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं एफएम रेनबो।

आकाशवाणी एफएम रेनबो सुन रहे हैं आप दिल से दिल तक, और प्रोग्राम का नाम है अल्फाजन में हम बात कर रहे हैं लेट्स डिटॉक्स। और लेट्स डिटॉक्स हम क्या कह रहे हैं आपके लिए कि परफेक्शन नहीं, प्रोग्रेस जरूरी है, और प्रोग्रेस के लिए जो प्रोसेस होता है उसको फॉलो करना भी बहुत जरूरी होता है, क्योंकि कई बार हम अगर प्रोसेस को सही से करते हैं ना, उसको अपनी जिंदगी में सही से उतारते हैं, तो फिर हमारे लिए सफलता बस थोड़ी दूर का रास्ता होती है, यानी कि सफलता जल्दी से जल्दी हम तक पहुंचती है। तो अगली बार जब भी लगे कि अभी सब कुछ तैयार नहीं है, तो खुद से बस एक सवाल पूछिए कि क्या मुझे सचमुच परफेक्ट होना है या सिर्फ कल से थोड़ा बेहतर। क्योंकि गौर कीजिए, साइकिल चलाना, तैरना, नई भाषा सीखना या कोई म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट बजाना, इनमें से कोई भी कौशल पहली कोशिश में नहीं आता। हम गिरते रहे, संभलते रहे, और फिर एक दिन वही काम हमें सहज लगने लगा। तो प्रोग्रेस का भी यही स्वभाव है, वो शोर नहीं करती लेकिन समय के साथ पहचान बन जाती है, और वो पहचान अपने साथ कामयाबी को लेकर आती है।

आकाशवाणी का एफएम रेनबो सुन रहे हैं आप दिल से दिल तक। और लेट्स डिटॉक्स में आज हम बात कर रहे हैं कि परफेक्शन नहीं, प्रोग्रेस बहुत जरूरी है। और प्रोग्रेस जब हम करते हैं, किसी प्रोसेस को फॉलो करते हैं, तो फिर धीरे धीरे सफलता हम तक पहुंचती जाती है। और ये एक प्रोसेस है कि हम आप तक ये प्रोग्राम लेकर आते हैं, इसके बाद अगला प्रोग्राम होगा और उसके बाद उससे अगला प्रोग्राम होगा। तो इस प्रोसेस को समझते हैं और इस प्रोग्रेस को आगे बढ़ाते हैं, यानी कि आप बता देते हैं कि आप आने वाले कुछ घंटों में कौन कौन से प्रोग्राम सुनने वाले हैं। तो आपसे थोड़ी देर बाद यानी कि 5 बजे से होगा प्रोग्राम जिसका नाम है सिटी लाइट्स। और सिटी लाइट्स प्रोग्राम में शहर के तमाम हलचलों, तमाम गतिविधियों को आप सुन पाएंगे, जान पाएंगे दीपांशी अरोड़ा के साथ। और 6 बजे से होगा कार्यक्रम जिसका नाम है मैसेज मसाला मिक्स। चांद मुखर्जी इस प्रोग्राम को लेकर आप तक पहुंचेंगी। और उसके बाद 7 बजे से आप सुन पाएंगे हमारा वेस्टर्न म्यूजिक का प्रोग्राम सैटरडे सिजलर्स। और 8 बजे से होगा प्रोग्राम जिसका नाम है म्यूजिक मस्ती। और इस प्रोग्राम को भी लेकर आप तक पहुंचेंगी चांद मुखर्जी। और जो 7 बजे हमने आपको बताया वेस्टर्न म्यूजिक का हमारा प्रोग्राम सैटरडे सिजलर्स, उसे लेकर आप तक पहुंचेंगे आशीष अब्राहम। तो ये अगले कुछ घंटों में आप प्रोग्राम सुनने वाले हैं, लेकिन इस प्रोग्राम में अभी भी कई गीत हैं जो आप तक पहुंचने वाले हैं। और उनमें से एक गीत है ये वाला।

दोस्तों कहते हैं कि जिंदगी में सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता और सीधे पॉइंट पर हम आते हैं कि जिंदगी हमें परफेक्ट होने का जो इनाम दे ना दे लेकिन आगे बढ़ते रहने के मौके देती रहती है। इसलिए अपने अधूरेपन से लड़ने की नहीं उसे अपना साथी बनाने की जरूरत है, क्योंकि जो लोग हर दिन थोड़ा सा बेहतर बनने का साहस रखते हैं वही एक दिन दूसरों को देखकर नहीं बल्कि खुद को देखकर मुस्कुराते हैं। और यही है आज का हमारा लेट्स डिटॉक्स। परफेक्शन का बोझ उतारिए, प्रोग्रेस की आदत अपनाइए और जिंदगी में आगे बढ़ते जाइए। इसी बात के साथ राजेश को दीजिए आप अनुमति, चलते चलते ये गीत आपके लिए। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना इस्तीफा सौंप दिया है। श्री प्रधान ने कहा कि पिछले 10 दिनों से छात्रों के विरोध प्रदर्शन के बाद उत्पन्न स्थिति से वे व्यथित हैं और ये उनके लिए व्यक्तिगत प्रतिष्ठा का विषय नहीं है। उन्होंने कहा कि जंतर मंतर और पूरे देश में वर्तमान स्थिति का राष्ट्र विरोधी ताकतें लाभ न उठा सके और किसी भी छात्र का भविष्य कानूनी पेचीदगियों में न उलझे, इसलिए उन्होंने प्रधानमंत्री को इस्तीफा सौंप का निर्णय लिया है। श्री प्रधान ने कहा कि नीट यूजी परीक्षा में अनियमितताओं के बाद सरकार ने जांच सीबीआई को सौंप दी और परीक्षा रद्द कर दी। उन्होंने कहा कि सरकार ने अगले वर्ष से इस परीक्षा को कंप्यूटर आधारित परीक्षा मोड में आयोजित करने का निर्णय लिया है। इस बीच सरकार और कॉकरोच जनता पार्टी सीजेपी के प्रतिनिधिमंडल के बीच नई दिल्ली में तीसरे दौर की वार्ता जारी है। इसमें परीक्षा प्रणाली में सुधार और प्रश्न पत्र लीक की घटनाओं को रोकने के उपायों पर प्रतिनिधिमंडल की मांगों पर चर्चा हो रही है। भाजपा ने संसद में नीट पेपर लीक मुद्दे पर चर्चा से कांग्रेस के पीछे हटने का आरोप लगाया है। नई दिल्ली में पार्टी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने ये बात कही।
1: कांग्रेस पार्टी से स्पष्ट रूप से पूछना चाहता हूं कि सोमवार को संसद के वर्तमान सत्र का दूसरा सप्ताह प्रारंभ होगा, आप इस समस्या पर और आपके द्वारा जो भी विषय रखे गए जब

0: समर्पण का प्रमाण है। उन्होंने श्री धर्मेंद्र प्रधान को उनके अथक सेवा, सुधारों के प्रति प्रतिबद्धता और मजबूत देश के निर्माण में योगदान के लिए धन्यवाद दिया। श्री रिजिजू ने देश के शिक्षा तंत्र को सुदृढ़ करने और लाखों युवा विद्यार्थियों को हर निर्णय के केंद्र में रखने के लिए श्री प्रधान के ईमानदार प्रयासों की सराहना की। दिल्ली पुलिस ने लोगों को नई दिल्ली क्षेत्र की ओर जाने से बचने की सलाह दी है, क्योंकि पूरे जिले में भारी भीड़ और यातायात जाम देखा जा रहा है। पुलिस ने यात्रियों को निर्देश दिया है कि वे देरी से बचने और सुगम यात्रा सुनिश्चित करने के लिए वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करें। इस बीच दिल्ली मेट्रो ने राजीव चौक, मंडी हाउस और केंद्रीय सचिवालय मेट्रो स्टेशनों के प्रवेश द्वार खोल दिए हैं। प्राचीन बौद्ध स्थल सारनाथ को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने इसे भारत की सांस्कृतिक विरासत के लिए ऐतिहासिक क्षण बताया है। श्री शेखावत ने कहा कि सारनाथ शांति, ज्ञान और करुणा का शाश्वत प्रतीक है। कानून और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने नई दिल्ली में सिंगापुर के कानून मंत्री एडविन टोंग एससी के साथ द्विपक्षीय बैठक की। श्री मेघवाल ने दोनों देशों के कानूनी सहयोग को मजबूत करने, वैकल्पिक विवाद समाधान को बढ़ावा देने और संस्थागत तथा न्यायिक सहयोग को बढ़ाने पर चर्चा की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने रोमानिया में भारतीय समुदाय के योगदान की सराहना करते हुए उन्हें दोनों देशों के बीच बढ़ती साझेदारी का एक महत्वपूर्ण स्तंभ बताया। बुखारेस्ट में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि प्रवासी भारतीय अपनी मातृभूमि से गहराई से जुड़े हुए हैं और अपनी उपलब्धियों तथा समर्पण से हर भारतीय को गौरवान्वित करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सवेरे 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश और विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के पूरे नेटवर्क, एआईआर न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। हरारे में भारत और जिम्बाब्वे के बीच दूसरे टी20 क्रिकेट मैच में ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 7 ओवर में 2 विकेट पर 61 रन बना लिए हैं। 3 मैचों की श्रृंखला में भारत 1-0 से आगे है। अनहत सिंह ने इतिहास रचते हुए विश्व जूनियर स्कॉश चैंपियनशिप के महिला सिंगल्स के फाइनल में जगह बना ली है। फाइनल में अनहत का सामना आज मिस्र की रुकैया सलेम से होगा। अनहत जोशना चिनप्पा के बाद विश्व जूनियर स्कॉश चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने वाली दूसरी भारतीय खिलाड़ी बन गई है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Valsa Williams. Union Education Minister Dharmendra Pradhan has resigned and tendered his resignation to Prime Minister Narendra Modi today. In a social media post, Mr. Pradhan said he was pained by the prevailing situation following students' protest during the past 10 days, saying it is not a matter of prestige for him. He said that considering the situation at Jantar Mantar in New Delhi and across the country with the aim of preventing anti-national forces from exploiting it, as well as ensuring that not a single student's future gets entangled in legal complexities, he decided to tender his resignation to the Prime Minister. Mr. Pradhan also expressed his gratitude to the Prime Minister for his guidance, trust and constant support. He said that service to the nation is the highest priority of his life and he will remain forever dedicated to it. Mr. Pradhan said that following the irregularities in the NEET UG examination 2026, the government handed over the investigation to the CBI and cancelled the exam. The government also announced a fresh date for a re-examination. He added that the government decided to conduct the examination in computer-based test CBT mode from next year. The BJP has accused the Congress of shying away from the discussion on NEET paper leak issue in Parliament. Addressing media in New Delhi, BJP MP and spokesperson Sudhanshu Trivedi sought to know from leader of the opposition in the Lok Sabha, Rahul Gandhi, whether his party will take part in the discussion on the issue when the proceedings of the House resume on Monday. He alleged that there are some elements whose only intention is to take political mileage and not to address students' concerns. The third round of discussions between the government and CJP delegation is underway in New Delhi. Union ministers JP Nadda and Dr. Jitendra Singh are holding

0: এয়া আকাশবাণী গুৱাহাটীৰ প্ৰাগজ্যোতিষপুৰ। প্ৰিয় শ্ৰোতা, খন্তেক পাছতে হিন্দী আৰু ইংৰাজীত বাতৰি দিল্লী কেন্দ্ৰৰ পৰা ৰিলে কৰি শুনোৱা হ'ব।
1: নমস্কাৰ, আকাশবাণী সমাচাৰ কে সাথ মে বিশাল শর্মা। कॉकरोच जनता पार्टी सीजेपी ने तत्काल प्रभाव से आंदोलन वापस लेने की घोषणा की है। सीजेपी ने कहा कि हमारी सभी तीन मांगे मान ली गई हैं, इसलिए अब जंतर मंतर से लोग शांतिपूर्वक वापस लौट जाएं। नई दिल्ली में सरकार और सीजेपी के प्रतिनिधिमंडल के बीच तीसरे दौर की वार्ता के बाद सीजेपी प्रवक्ता सौरभ दास ने इसकी घोषणा की।
2: तमाम मांगे जो हमारी थी वो मान ली गई है, तो हम इमीडिएट इफेक्ट से प्रोटेस्टर्स से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप विड्रॉ करें, पीसफुली अपने घर वापस जाएं और आगे की जो भी हमारी रणनीति होगी या बातचीत होगी उससे हम आपको अवगत कराएंगे।
1: केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने बताया कि सरकार प्रदर्शनकारियों पर दर्ज सभी मामले वापस लेगी।
3: सबसे पहली बात तो ये है कि कोई भी एक्शन FIR न हो और अगर है तो वो विड्रॉ हो और उसको विड्रॉ करने की बात कोई भी एक्शन नहीं होगा, इस बात को सरकार ने स्वीकारा है जो प्रोटेस्टर्स के साथ प्रोटेस्ट के दौरान हुआ है। उसी तरीके से फ्यूचर में भी जो ऑर्गेनाइजर्स हैं और प्रोटेस्टर्स हैं उनका इस एक्टिविटी के लिए कोई भी उन पर आगे केस नहीं होगा, इस बात को हम लोगों ने माना है।
1: श्री नड्डा ने कहा कि परीक्षा प्रणाली में सुधार के लिए दिए गए सीजेपी के सुझावों पर विचार किया जाएगा।
3: हम एजुकेशन के एग्जामिनेशन के रिफॉर्म्स के लिए जो आपका चार्टर है उस पर हम गहन चिंतन भी करेंगे और आपके डेलीगेशन के साथ बातचीत करके जो कुछ भी हम डेलिब्रेट कर सकेंगे वो हम करने का प्रयास करेंगे।
1: इससे पहले शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना इस्तीफा सौंप दिया। श्री प्रधान ने कहा कि पिछले 10 दिनों से छात्रों के विरोध प्रदर्शन के बाद उत्पन्न स्थिति से वे व्यथित हैं और ये उनके लिए व्यक्तिगत प्रतिष्ठा का विषय नहीं है। उन्होंने कहा कि जंतर मंतर और पूरे देश में वर्तमान स्थिति का राष्ट्र विरोधी ताकतें लाभ न उठा सके, इसलिए उन्होंने प्रधानमंत्री को इस्तीफा सौंपने का निर्णय लिया है। श्री प्रधान ने कहा कि नीट यूजी परीक्षा में अनियमितताओं के बाद सरकार ने जांच सीबीआई को सौंप दी और परीक्षा रद्द कर दी थी। भारतीय जनता पार्टी ने संसद में नीट पेपर लीक मुद्दे पर

0: संसद की चर्चा में भाग लेंगे अथवा पुनः चर्चा से भागेंगे।
1: श्री त्रिवेदी ने आरोप लगाया कि कुछ लोगों का एकमात्र उद्देश्य राजनीतिक लाभ उठाना है, न कि छात्रों की चिंताओं का समाधान करना। दिल्ली पुलिस ने लोगों को नई दिल्ली क्षेत्र की ओर जाने से बचने की सलाह दी है, क्योंकि पूरे जिले में भारी भीड़ और यातायात जाम देखा जा रहा है। पुलिस ने यात्रियों को निर्देश दिया है कि वे देरी से बचने और सुगम यात्रा सुनिश्चित करने के लिए वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करें। इस बीच दिल्ली मेट्रो ने राजीव चौक, मंडी हाउस, जनपथ और केंद्रीय सचिवालय मेट्रो स्टेशनों के प्रवेश द्वार खोल दिए हैं। प्राचीन बौद्ध स्थल सारनाथ को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने इसे भारत की सांस्कृतिक विरासत के लिए एक ऐतिहासिक क्षण बताया है। श्री शेखावत ने कहा कि सारनाथ शांति, ज्ञान और करुणा का शाश्वत प्रतीक है। उन्होंने कहा कि यह मानवता के लिए भारतीय सभ्यता के गहन आध्यात्मिक और दार्शनिक योगदान को दर्शाता है। कानून और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने नई दिल्ली में सिंगापुर के कानून मंत्री एडविन टोंग एससी के साथ द्विपक्षीय बैठक की। श्री मेघवाल ने दोनों देशों के कानूनी सहयोग को मजबूत करने, वैकल्पिक विवाद समाधान को बढ़ावा देने और संस्थागत तथा न्यायिक सहयोग को बढ़ाने पर चर्चा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सवेरे 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश और विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के पूरे नेटवर्क, एआईआर न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। हरारे में भारत और जिम्बाब्वे के बीच दूसरे टी20 क्रिकेट मैच में ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 19 ओवर में 4 विकेट पर 210 रन बना लिए हैं। 3 मैचों की श्रृंखला में भारत 1-0 से आगे है। अनाहत सिंह ने विश्व जूनियर स्क्वाश चैंपियनशिप के महिला सिंगल्स के फाइनल में जगह बना ली है। फाइनल में उनका सामना आज मिस्र की रुकैया सलीम से होगा। अनाहत सिंह जोशना चिनप्पा के बाद इस प्रतियोगिता के फाइनल में पहुंचने वाली दूसरी भारतीय खिलाड़ी बन गई हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय वल्सा विलियम्स। The CJP has withdrawn its agitation after the government agreed to its demands. Union ministers JP Nadda and Dr. Jitendra Singh today held the third round of discussion with the CJP delegation, focusing on its demands for reforms in the examination system and measures to prevent paper leaks. Later, in a joint press conference with the CJP delegation in New Delhi, Mr. Nadda said during the meeting the government agreed to the demands of the CJP that no action should be taken against the protesters and no FIRs should be filed against them.
3: सबसे पहली बात तो ये है कि कोई भी एक्शन FIR न हो, और अगर है तो वो विड्रॉ हो, और उसको विड्रॉ करने की बात कोई भी एक्शन नहीं होगा। इस बात को सरकार ने स्वीकारा है जो प्रोटेस्टर्स के साथ प्रोटेस्ट के दौरान हुआ है। उसी तरीके से फ्यूचर में भी जो ऑर्गेनाइजर्स है और प्रोटेस्टर्स है उनका इस एक्टिविटी के लिए कोई भी उन पर आगे केस नहीं होगा, इस बात को हम लोगों ने माना है।
2: CJP's chief spokesperson Saurav Das announced to withdraw the agitation in good faith, expressing hope that the agreed upon terms will be executed within the agreed upon timelines. Earlier today, Union Education Minister Dharmendra Pradhan resigned and tendered his resignation to Prime Minister Narendra Modi. In a social media post, Mr. Pradhan said he was pained by the prevailing situation during the past 10 days following students' protest. He said it was not a matter of prestige for him. He said he had taken into account the situation at Jantar Mantar in New Delhi as well as the situation across the country. Mr. Pradhan said that service to the nation is the highest priority of his life and he will remain forever dedicated to it. Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath launched a sharp attack on the Congress and the Samajwadi Party, saying that the paper leak mafia is the legacy of these very parties. He asserted that there are only two places for those who play with the future of students: jail or hell. The Chief Minister was addressing a public gathering today after inaugurating and laying the foundation stone of 125 development projects worth more than 489 crore rupees for the Fatehpur Sadar and Ayasha Assembly constituencies. The Delhi Metro Rail Corporation has informed that entry gates for Rajiv Chowk, Mandi House, Janpath and Central Secretariat Metro stations

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबंधित प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात।

0: এলেকা হিচাপে ঘোষণা কৰা হৈছে। এই সন্দৰ্ভত জিলা আয়ুক্ত প্ৰদীপ টিমুঙে এইদৰে কয়।
1: গোৱালপাৰা জিলাত এটা সবতকৈ মহত্বপূৰ্ণ আৰু ডাঙৰ ৱাটাৰ বডি এইটো হ'ল উৰ্পদ বিল। উৰ্পদ বিলৰ চাৰিওফালে আমাৰ এছচি কমিউনিটিখিনি বসবাস কৰে আৰু উৰ্পদ বিলত মাছ ধৰে, মাছ তেওঁলোকৰ জীৱিকাও মানে উপাৰ্জন কৰে। কিন্তু পৰৱৰ্তী সময়ত লাহে লাহে দেখা গৈছে যে উৰ্পদ বিলৰ পানী সোমোৱা ৰাস্তাখিনি সকলোফালে বন্ধ কৰি ৰাখিছে, যাৰ কাৰণে দিনে দিনে উৰ্পদ বিলৰ পানীটো নাইকিয়া হৈ গৈছে আৰু মাছবোৰ নাইকিয়া হৈ গৈছে আৰু মানে সংকুচিত হৈ আছে। সেইকাৰণে মানে আমি দেখিলোঁ ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টকো আমি কথা পাতিলোঁ, চাৰ্কল অফিচাৰ আমি গোটেইখিনিবিলাক আমি ডিছকাছ কৰিলোঁ, দেখিলোঁ যে ইয়াতে দুই তিনিটামান আমাৰ যি নদী আছে এই নদীৰ মানে আউটলেটবিলাক আমি খুলি দিব লাগিব, চলে উৰ্পদ বিলত পানী সোমাব লাগিব। পানীখিনি যেতিয়া উৰ্পদ বিলত সোমায় সেই সোমোৱাৰ ৰাস্তাটো এতিয়া বান্ধ এটা বনাই দিছে, বান্ধৰ লগত ওপৰত পেভাৰ্ছ ব্লক বনাইছে, ধুনীয়া হৈছে, ভাল কথা হ'ব লাগে, সেইটো হ'ব লাগে। কিন্তু লগতে আমি উৰ্পদ বিলত পানী সোমোৱা ৰাস্তাটো আমি খোলা ৰাখিব লাগে।
0: ভাৰত আৰু জিম্বাবৱেৰ মাজৰ তিনিখনীয়া টি টুৱেণ্টি ক্ৰিকেট শৃংখলাৰ দ্বিতীয়খন খেলত ভাৰতে জিম্বাবৱেক জয়ৰ বাবে 220 ৰাণৰ লক্ষ্য নিৰ্ধাৰণ কৰি দিছে। ভাৰতে প্ৰথমে বেটিঙৰ আমন্ত্ৰণ লাভ কৰি 20 অভাৰত 5টা উইকেট হেৰুৱাই 119 ৰাণ সংগ্ৰহ কৰে। প্ৰত্যুত্তৰত জিম্বাবৱে বাতৰি যুগুতোৱাৰ পৰলৈ 6 অভাৰত 3টা উইকেট হেৰুৱাই 48 ৰাণ সংগ্ৰহ কৰি খেলি আছে। বাতৰি শেষ কৰাৰ পূৰ্বে প্ৰধান বাতৰিকেইটা পুনৰ এবাৰ। ৰাজ্যৰ সাম্প্ৰতিক বানত 7,51,000ৰো অধিক লোক ক্ষতিৰ সন্মুখীন, উদ্ধাৰ আৰু সাহায্য অভিযান অব্যাহত। ক্ষতিগ্ৰস্ত শিক্ষাৰ্থীসকলক বিনামূলীয়া পাঠ্যপুথিৰ পুনৰ যোগানৰ বাবে শিক্ষামন্ত্ৰীৰ অসম ৰাজ্যিক পাঠ্যপুথি প্ৰণয়ন আৰু প্ৰকাশন নিগম লিমিটেডক নিৰ্দেশ। বানৰ পাছত ৰাজ্যত কৃষিখণ্ডক পুনৰ শক্তিশালী কৰি তোলাৰ লক্ষ্যৰে কৃষি আন্তঃগাঁথনি পুঁজি আঁচনিৰ অধীনত চৰকাৰৰ বিশেষ ব্যৱস্থা। কেন্দ্ৰীয় শিক্ষামন্ত্ৰী ধৰ্মেন্দ্ৰ প্ৰধানৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোডীৰ ওচৰত পদত্যাগ পত্ৰ দাখিল। আৰু হাৰাৰেত ভাৰত আৰু জিম্বাবৱেৰ মাজত তিনিখনীয়া টি টুৱেণ্টি ক্ৰিকেট শৃংখলাৰ দ্বিতীয়খন খেল। এতিয়াৰ আঞ্চলিক বাতৰি ইমানেই, পৰৱৰ্তী বাতৰি 7:10 শুনিবলৈ পাব।
2: নমস্কাৰ, আকাশবাণী সমাচাৰ কে সাথ মই মুকেশ কুমাৰ। कॉकरोच जनता पार्टी सीजेपी ने सरकार द्वारा मांगों को स्वीकार किए जाने के बाद आंदोलन को तत्काल प्रभाव से समाप्त करने की घोषणा की है। केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा और जितेंद्र सिंह के साथ सीजेपी प्रतिनिधिमंडल की तीसरे दौर की वार्ता के बाद पार्टी प्रवक्ता आशुतोष रांका ने ये घोषणा की।
3: तमाम मांगे जो हमारी थी वो मान ली गई है, तो हम इमीडिएट इफेक्ट से प्रोटेस्टर्स से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप विड्रॉ करें, पीसफुली अपने घर वापस जाएं और आगे की जो भी हमारी रणनीति होगी या बातचीत होगी उससे हम आपको अवगत कराएंगे।
2: श्री नड्डा ने कहा कि सरकार ने प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करने की मांग स्वीकार कर ली है।
4: सबसे पहली बात तो ये है कि कोई भी एक्शन FIR न हो और अगर है तो वो विड्रॉ हो और उसको विड्रॉ करने की बात कोई भी एक्शन नहीं होगा, इस बात को सरकार ने स्वीकारा है जो प्रोटेस्टर्स के साथ प्रोटेस्ट के दौरान हुआ है। उसी तरीके से फ्यूचर में भी जो ऑर्गेनाइजर्स है और प्रोटेस्टर्स है उनका इस एक्टिविटी के लिए कोई भी उन पर आगे केस नहीं होगा, इस बात को हम लोगों ने माना है।
2: श्री नड्डा ने कहा कि परीक्षा प्रणाली में सुधार के लिए दिए गए CGPA के सुझावों पर विचार किया जाएगा।
4: हम एजुकेशन के एग्जामिनेशन के रिफॉर्म्स के लिए जो आपका चार्टर है उस पर हम गहन चिंतन भी करेंगे और आपके डेलीगेशन के साथ बातचीत करके जो कुछ भी हम डेलिबरेट कर सकेंगे वो हम करने का प्रयास करेंगे।
2: आत्महत्या करने वाले छात्रों के परिवारों को मुआवजे के मुद्दे पर श्री नड्डा ने कहा कि सरकार को पूरी सहानुभूति है और सरकार नियमों के अनुसार अधिकतम मुआवजा सुनिश्चित करेगी। इससे पहले शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना इस्तीफा सौंप दिया। श्री प्रधान ने कहा कि पिछले 10 दिन से छात्रों के विरोध प्रदर्शन के बाद उत्पन्न स्थिति से व्यथित हैं। उन्होंने कहा कि ये उनके लिए व्यक्तिगत प्रतिष्ठा का विषय नहीं है। श्री प्रधान ने कहा कि जंतर मंतर और पूरे देश में वर्तमान स्थिति का राष्ट्र विरोधी ताकतें लाभ न उठा सकें, इसलिए उन्होंने प्रधानमंत्री को अपना इस्तीफा सौंपने का निर्णय लिया। श्री प्रधान ने कहा कि नीट UG परीक्षा में अनियमितताओं के बाद सरकार ने जांच CBI को सौंप दी और परीक्षा रद्द कर दी। भारतीय जनता पार्टी ने संसद में नीट पेपर लीक मुद्दे पर चर्चा से कांग्रेस के पीछे हटने का आरोप लगाया है। नई दिल्ली में पार्टी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने आरोप लगाया है कि कुछ लोगों का एकमात्र उद्देश्य राजनीतिक लाभ उठाना है, न कि छात्रों की चिंताओं का समाधान करना। दिल्ली पुलिस

0: जुड़ने के लिए प्रेरित होंगे। प्रधानमंत्री कल सवेरे 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क, आकाशवाणी समाचार वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मोल्दोवा, उत्तरी मैसिडोनिया और रोमानिया की यात्रा पूरी करने के बाद नई दिल्ली के लिए रवाना हो गई हैं। यात्रा के अंतिम चरण में उन्होंने रोमानिया के राष्ट्रपति निकोसियर डैन के साथ व्यापार, निवेश, रक्षा, डिजिटल प्रौद्योगिकी, शिक्षा, नवीकरणीय ऊर्जा और संस्कृति सहित विभिन्न क्षेत्रों में व्यापक चर्चा की। हरारे में दूसरे T20 क्रिकेट मैच में भारत ने जिम्बाब्वे को 220 रन का लक्ष्य दिया है। ईशान किशन ने 81 और तिलक वर्मा ने नाबाद 60 रन की शानदार पारी खेली। ताजा समाचार मिलने तक जिम्बाब्वे ने 7वें ओवर में 4 विकेट पर 49 रन बना लिए थे। अनाहत सिंह विश्व जूनियर स्क्वाश चैंपियनशिप के महिला सिंगल्स फाइनल में पहुंच गई हैं। फाइनल में उनका सामना आज मिस्र की रुकैया सलीम से होगा। अनाहत सिंह जोशना चिनप्पा के बाद इस प्रतियोगिता के फाइनल में पहुंचने वाली दूसरी भारतीय हैं। मौसम विभाग ने आज गुजरात में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा और राजस्थान में भी इसी तरह की स्थिति रहने की संभावना है। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Saira Mujtaba. The CJP has withdrawn its agitation after the government agreed to its demands. Union Ministers JP Nadda and Dr. Jitendra Singh today held the third round of discussion with the CJP delegation, focusing on its demands for reforms in the examination system and measures to prevent paper leaks. Later, in a joint press conference with the CJP delegation in New Delhi, Mr. Nadda said that during the meeting, the government agreed to the demands of CJP that no action should be taken against the protesters and no FIRs should be filed against them.
2: सबसे पहली बात तो ये है कि कोई भी एक्शन FIR न हो और अगर है तो वो विड्रॉ हो और उसको विड्रॉ करने की बात कोई भी एक्शन नहीं होगा। इस बात को सरकार ने स्वीकारा है जो प्रोटेस्टर्स के साथ प्रोटेस्ट के दौरान हुआ है। उसी तरीके से फ्यूचर में भी जो ऑर्गेनाइजर्स हैं और प्रोटेस्टर्स हैं उनका इस एक्टिविटी के लिए कोई भी उन पर आगे केस नहीं होगा, इस बात को हम लोगों ने माना है।
1: CJP's chief spokesperson Saurabh Das announced to withdraw the agitation in good faith, expressing hope that the agreed-upon terms will be executed within the agreed-upon timelines. Earlier today, Union Education Minister Dharmendra Pradhan resigned and tendered his resignation to Prime Minister Narendra Modi. In a social media post, Mr. Pradhan said he was pained by the prevailing situation during the past 10 days following students' protests. He said it was not a matter of prestige for him. He said he had taken into account the situation at Jantar Mantar in New Delhi as well as the situation across the country. Mr. Pradhan said that service to the nation is the highest priority of his life and he will remain forever dedicated to it. All stations of the Delhi Metro network are now open for passenger services. Earlier, Delhi Metro Rail Corporation had closed 18 metro stations due to security reasons. The stations included Lok Kalyan Marg, Rajiv Chowk, Patel Chowk, Ramkrishna Ashram Marg, Barakhamba Road, Supreme Court, Seva Tirth, Janpath, Mandi House, Central Secretariat, ITO, Delhi Gate, Indraprastha, Khan Market, Jor Bagh, Shivaji Stadium, Jhandewala and New Delhi. Prime Minister Narendra Modi will share his thoughts with the people of the country and abroad in the Mann Ki Baat program on Akashvani tomorrow at 11 a.m. It will be the 136th episode of the monthly radio program. The program will be broadcast across the entire Akashvani and Doordarshan network, the AIR News website and the News on AIR mobile app. President Draupadi Murmu has concluded her state visit to Romania and departed for New Delhi this afternoon. Romania was the final leg of the president's three-nation state visit, which also included Moldova and North Macedonia. In Romania, the president held wide-ranging discussions with her Romanian counterpart, President Nicos Ciordan, aimed at strengthening bilateral cooperation across trade, investment, defense, digital technology, education, renewable energy and culture. President Draupadi Murmu has expressed grief over the loss of lives and devastation caused by the floods in Assam. Sharing condolences to the bereaved families, the President in a

la verdad. Vale, no, ahí la tú lo gallo. Mita, mita, se ganó.

0: ভজনৰ অনুষ্ঠানটিৰ ইমানতে অন্ত পৰিল। এয়া আকাশবাণী গুৱাহাটীৰ প্ৰাগজ্যোতিষপুৰ। এতিয়া 8:45 পৰা সমাচাৰ সন্ধিয়া, 9:00 News@9 আৰু 9:15 পৰা স্পটলাইট দিল্লী কেন্দ্ৰৰ পৰা ৰিলে কৰি শুনোৱা হ'ব।
1: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया। कांग्रेस जनता पार्टी ने केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और डॉक्टर जितेंद्र सिंह के साथ बातचीत और सरकार द्वारा मांगों को स्वीकार किए जाने के बाद विरोध प्रदर्शन तत्काल प्रभाव से समाप्त किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 3 देशों मोल्दोवा, उत्तरी मैसेडोनिया और रोमानिया की यात्रा पूरी कर स्वदेश रवाना। उत्तर प्रदेश में सारनाथ के प्राचीन बौद्ध स्थल को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। और हरारे में भारत ने दूसरे T20 क्रिकेट मैच में मेजबान जिम्बाब्वे को 90 रन से हराया। अब समाचार विस्तार से। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना इस्तीफा सौंप दिया। श्री प्रधान ने कहा कि पिछले 10 दिनों से छात्रों के विरोध प्रदर्शन के बाद उत्पन्न स्थिति से वे व्यथित हैं। उन्होंने कहा कि ये उनके लिए व्यक्तिगत प्रतिष्ठा का विषय नहीं है। श्री प्रधान ने कहा कि जंतर मंतर और पूरे देश में वर्तमान स्थिति का राष्ट्र विरोधी ताकतें लाभ न उठा सकें, इसलिए उन्होंने प्रधानमंत्री को इस्तीफा सौंपने का निर्णय लिया है। श्री प्रधान ने कहा कि नीट यूजी परीक्षा में अनियमितताओं के बाद सरकार ने जांच सीबीआई को सौंप दी और परीक्षा रद्द कर दी। इस बीच राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने श्री प्रधान का मंत्रिपरिषद से इस्तीफा तत्काल प्रभाव से स्वीकार कर लिया है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी नए शिक्षा मंत्री होंगे। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण और नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री श्री जोशी को शिक्षा मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का 10 साल का सफर सार्वजनिक जीवन और विद्यार्थी कल्याण के प्रति आजीवन समर्पण का प्रमाण है। श्री रिजिजू ने देश के शिक्षा तंत्र को सुदृढ़ करने और लाखों युवा विद्यार्थियों को हर निर्णय के केंद्र में रखने के लिए श्री प्रधान के ईमानदार प्रयासों की सराहना की। भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा कि श्री प्रधान ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के सफल कार्यान्वयन और अन्य पहलों के माध्यम से भारत की शिक्षा व्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। कांग्रेस जनता पार्टी सीजेपी ने सरकार द्वारा मांगों को स्वीकार किए जाने के बाद आंदोलन को तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दिया है। केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा और जितेंद्र सिंह के साथ प्रतिनिधिमंडल की तीसरे दौर की वार्ता के बाद सीजेपी प्रवक्ता आशुतोष रांका ने लोगों से शांतिपूर्वक घर लौटने की अपील की।
1: तमाम मांगे जो हमारी थी वो मान ली गई है, तो हम इमीडिएट इफेक्ट से प्रोटेस्टर्स से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप विड्रॉ करें, पीसफुली अपने घर वापस जाएं और आगे की जो भी हमारी रणनीति होगी या बातचीत होगी उससे हम आपको अवगत कराएंगे।
0: श्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा कि सरकार ने प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करने की मांग स्वीकार कर ली है।
2: सबसे पहली बात तो ये है कि कोई भी एक्शन FIR न हो और अगर है तो वो विड्रॉ हो और उसको विड्रॉ करने की बात कोई भी एक्शन नहीं होगा, इस बात को सरकार ने स्वीकारा है जो प्रोटेस्टर्स के साथ प्रोटेस्ट के दौरान हुआ है। उसी तरीके से फ्यूचर में भी जो ऑर्गेनाइजर्स हैं और प्रोटेस्टर्स हैं उनका इस एक्टिविटी के लिए कोई भी उन पर आगे केस नहीं होगा, इस बात को हम लोगों ने माना है।
0: नीट यूजी पेपर लीक के बाद आत्महत्या करने वाले छात्रों के परिवारों को मुआवजे के मुद्दे पर श्री नड्डा ने कहा कि सरकार नियमों तथा विनियमों के अनुरूप अधिकतम मुआवजा सुनिश्चित करेगी।
2: कंपनसेशन के बारे में सरकार ने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा है, जान किसी बच्चे की जाए और उसके प्रति हम भी सहानुभूति रखते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी अत्यंत सहानुभूति के साथ कहा है कि ऑनरेबल कंपनसेशन अकॉर्डिंग टू द रूल्स एंड रेगुलेशंस व्हाटएवर मैक्सिमम विल बी पॉसिबल दैट विल बी गिवन टू देम।
0: परीक्षा सुधारों पर सीजेपी के 5 सूत्री प्रस्ताव पर श्री नड्डा ने कहा कि सरकार इस प्रस्ताव पर गंभीरता से विचार करेगी। भारतीय जनता पार्टी ने संसद में नीट पेपर लीक मुद्दे पर चर्चा से कांग्रेस के पीछे हटने का आरोप लगाया है। नई दिल्ली में पार्टी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने यह बात कही।
3: कांग्रेस पार्टी से स्पष्ट रूप से पूछना चाहता हूं कि सोमवार को संसद के वर्तमान सत्र का दूसरा सप्ताह प्रारंभ होगा, आप इस समस्या पर और आपके द्वारा जो भी विषय रखे गए जब सरकार संसद में चर्चा करने के लिए तैयार है तो आप सोमवार से संसद की चर्चा में भाग लेंगे अथवा पुनः चर्चा से भागेंगे।
0: श्री त्रिवेदी ने आरोप लगाया कि कुछ लोगों का एकमात्र उद्देश्य राजनीतिक लाभ उठाना है, न कि छात्रों की चिंताओं का समाधान करना। लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने सरकार से देश की शिक्षा व्यवस्था में सुधार लाने के लिए ठोस कदम उठाने की मांग की है। नई दिल्ली में उन्होंने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को छात्रों की जीत बताया। महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा टीईटी पेपर लीक मामले के मुख्य आरोपी विजेंद्र कुमार गुप्ता और उसके सहयोगी इंद्रजीत विनय कुमार सिंह को भिवंडी की एक अदालत ने 30 जुलाई तक पुलिस हिरासत में भेज दिया है। दोनों को बिहार के समस्तीपुर से गिरफ्तार किया गया था। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की आलोचना करते हुए कहा कि पेपर लीक माफिया इन्हीं पार्टियों की देन है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार पेपर लीक माफिया के खिलाफ सख्त कानून ला रही है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सवेरे 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क, आकाशवाणी समाचार वेबसाइट और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी क्षेत्रीय भाषाओं में भी इस कार्यक्रम का प्रसारण करेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मोल्दोवा, उत्तरी मैसेडोनिया और रोमानिया की यात्रा पूरी करने के बाद नई दिल्ली के लिए रवाना हो गई हैं। यात्रा के अंतिम चरण में उन्होंने रोमानिया के राष्ट्रपति निकोशो डान के साथ व्यापार, निवेश, रक्षा, डिजिटल प्रौद्योगिकी, शिक्षा, नवीकरणीय ऊर्जा और संस्कृति सहित विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के उद्देश्य से व्यापक चर्चा की। बुखारेस्ट में उन्होंने भारतीय समुदाय के सदस्यों के साथ बातचीत की। राष्ट्रपति ने भारतीय समुदाय को दोनों देशों के बीच बढ़ती साझेदारी का एक महत्वपूर्ण स्तंभ बताया।
4: भारतीय प्रवासी समुदाय एकजुट होकर रोमानिया में भारत की सांस्कृतिक विरासत को जीवंत बनाए। भारतीय आईटी इंजीनियरिंग स्कॉलर्स, रिसर्चर्स, हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स तथा विद्यार्थियों की नई पीढ़ी अब रोमानिया को अपना घर बना रहे हैं। रोमानिया की अर्थव्यवस्था और समाज में अपना योगदान तथा यहाँ भारतीय संस्कृति और मूल्यों के प्रसार के लिए आपके प्रयास आपको भारत का सच्चा प्रतिनिधि बनाते हैं।
0: विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने नई दिल्ली में सिंगापुर के कानून मंत्री एडविन टोंग एससी के साथ द्विपक्षीय बैठक की। श्री मेघवाल ने दोनों देशों के बीच कानूनी सहयोग मजबूत करने, वैकल्पिक विवाद समाधान को बढ़ावा देने और संस्थागत तथा न्यायिक सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की। सरकार नियमित संवाद और रचनात्मक परामर्श के माध्यम से कर्मचारी संगठनों के साथ जुड़ने के लिए प्रतिबद्ध है। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने नई दिल्ली में भारतीय मजदूर संघ से संबद्ध भारतीय डाक कर्मचारी संघ के 12 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल के साथ बातचीत के दौरान ये बात कही। डॉ. सिंह ने बताया कि लगभग 3 दशकों से लंबित कई पुरानी सेवा संबंधी शिकायतों का समाधान पारदर्शी और कर्मचारी केंद्रित संचालन के माध्यम से किया गया है। रसायन और उर्वरक मंत्री जेपी नड्डा ने आज नई दिल्ली में लघु उद्योग भारती फार्मा कॉन्क्लेव 2026 का उद्घाटन किया। श्री नड्डा ने कहा कि भारत का फार्मास्यूटिकल सेक्टर राष्ट्र निर्माण का एक प्रमुख स्तंभ है, जो नवाचार को बढ़ावा देता है, रोजगार सृजित करता है और सस्ती स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित करता है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। उत्तर प्रदेश के सारनाथ को यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे प्रत्येक भारतीय के लिए गर्व का क्षण बताया है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि सारनाथ भारत की शाश्वत आध्यात्मिक और दार्शनिक विरासत का प्रतीक है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इससे दुनिया भर के लोग सारनाथ आने और भगवान बुद्ध के आदर्शों से जुड़ने के लिए प्रेरित होंगे। संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि सारनाथ मानवता के लिए भारतीय सभ्यता के गहन आध्यात्मिक और दार्शनिक योगदान को दर्शाता है। ओडिशा के पवित्र नगर पुरी में ग्रैंड रोड पर भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा की भव्य रथ यात्रा देश विदेश से आए श्रद्धालुओं के आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
5: पुरी में ग्रांड रोड पर अपने शानदार रथों पर विराजमान भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा आज पवित्र सुना वे स्वर्ण वेश में

0: हैं। उन्होंने बेहद खूबसूरती से बने मुकुट, हार, बाजूबंद, झुमके और अन्य पारंपरिक आभूषण पहने हैं। सालाना रथ यात्रा की सबसे भव्य रस्मों में से एक इस पवित्र स्वर्ण वेश के दर्शन के लिए आम लोगों को आधी रात तक का समय मिलने का उम्मीद है, जिससे लाखों भक्त इन तीनों पवित्र देव रूपियों की दिव्य भव्यता के दर्शन कर सकेंगे। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार।
1: लद्दाख में 27वें करगिल विजय दिवस समारोह का पहला दिन आज शाम द्रास स्थित करगिल युद्ध स्मारक पर आयोजित शौर्य संध्या समारोह के साथ संपन्न हुआ। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्रास पहुंचे और समारोह में शामिल हुए। समारोह के दौरान रक्षा मंत्री ने करगिल शहीदों के परिजनों को श्रद्धांजलि अर्पित कर ऑपरेशन विजय के वीर योद्धाओं के सर्वोच्च बलिदान को नमन किया। आकाशवाणी कल करगिल विजय दिवस के अवसर पर पर्सन बिहाइंड द स्टोरी श्रृंखला के अंतर्गत करगिल युद्ध के वयोवृद्ध और भारत के पहले ब्लेड रनर मेजर डीपी सिंह से बातचीत प्रसारित करेगा। कार्यक्रम का प्रसारण कल दोपहर 12:30 बजे 100.1 आकाशवाणी गोल्ड पर होगा। आप इसे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और न्यूज ऑन एआईआर के आधिकारिक यूट्यूब चैनल पर भी सुन सकते हैं। भारत की पहली हाइड्रोजन चालित रेलगाड़ी ने 1200 किलोमीटर से अधिक की दूरी तय की है। इससे 3000 लीटर से अधिक डीजल की खपत कम हुई है। इस रेलगाड़ी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 17 जुलाई को जींद और सोनीपत के बीच रवाना किया था। ये परियोजना भारतीय रेलवे के नेतृत्व में एक स्वदेशी पहल है। राजस्व खुफिया निदेशालय ने सोने की तस्करी करने वाले गिरोह के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 27 किलो से अधिक विदेशी सोना जब्त किया है और 12 लोगों को गिरफ्तार किया है। इस सप्ताह देशभर में खुफिया जानकारी के आधार पर कई अभियान चलाए गए। मौसम विभाग ने मध्य महाराष्ट्र और ओडिशा में कल अत्यधिक वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। छत्तीसगढ़, गुजरात, कोंकण और गोवा में भी अगले दो दिन के दौरान तेज बारिश की संभावना है। तटीय आंध्र प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, उत्तराखंड, पश्चिमी राजस्थान और उत्तर पूर्वी क्षेत्र में कल तेज वर्षा होने की आशंका है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, आंध्र प्रदेश, उत्तरी आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारिककाल में सोमवार तक बिजली चमकने और तेज हवाओं के साथ बारिश का पूर्वानुमान है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने असम में बाढ़ से हुई जानमाल की हानि और तबाही पर गहरा दुख व्यक्त किया है। राष्ट्रपति ने इस आपदा से प्रभावित सभी लोगों की सुरक्षा और बचाव, राहत और पुनर्वास कार्यों में लगे सभी कर्मियों के कुशल मंगल की कामना की। उन्होंने आश्वासन दिया कि पूरा देश असम के लोगों के साथ एकजुटता से खड़ा है। और अब बात खेलों की। हरारे में दूसरे T20 क्रिकेट मैच में भारत ने जिम्बाब्वे को 90 रन से हरा दिया है। 220 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए जिम्बाब्वे की टीम 18वें ओवर में 129 रन पर सिमट गई। ईशान किशन ने शानदार 81 रन की पारी खेली और उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। तीन मैचों की श्रृंखला में भारत ने 2-0 की बढ़त बना ली है। अनाहत सिंह ने इतिहास रचते हुए विश्व जूनियर स्क्वाश चैंपियनशिप के महिला सिंगल्स के फाइनल में जगह बना ली है। फाइनल में उनका सामना आज रात मिस्र की रुकैया सलीम से होगा। अनाहत सिंह जोशना चिनप्पा के बाद इस प्रतियोगिता के फाइनल में पहुंचने वाली दूसरी भारतीय खिलाड़ी बन गई हैं। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया। कॉकरोच जनता पार्टी ने केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और डॉक्टर जितेंद्र सिंह के साथ बातचीत और सरकार द्वारा मांगों को स्वीकार किए जाने के बाद विरोध प्रदर्शन तत्काल प्रभाव से समाप्त किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू तीन देशों मोल्दोवा, उत्तरी मैसेडोनिया और रोमानिया की यात्रा पूरी कर स्वदेश रवाना। उत्तर प्रदेश में सारनाथ के प्राचीन बौद्ध स्थल को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। और हरारे में भारत ने दूसरे T20 क्रिकेट मैच में मेजबान जिम्बाब्वे को 90 रन से हराया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

airnsdtalks@gmail.com or WhatsApp on 928-909-4044. Spotlight.

वंदे मातरम।